भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवां रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 के लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योग आसन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें, योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं, फल सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुने योग करने के लिए, हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें, तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है। इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो की उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए, और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है, जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है, और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपके मॉर्निंग जॉ कार्ज अदनान और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम और ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फिलहाल आज का अगर आप डे देखेंगे तो भाई आज है सैटरडे और आज की तारीख देखेंगे तो तारीख तो सीधे सीधे आज 20 तारीख है। वैसे ये तारीख अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों ये तो खैर आप बाद में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिन की शुरुआत चूँकि होती ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए दिन की शुरुआत को हम मिस नहीं कर सकते और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हम ज़रा सा भी इस बात को ऐसे नहीं मान सकते कि अरे कोई नहीं जैसा भी हुआ हो होने दो ना। शुरुआत तो भाई बेहतर होगी और जब शुरुआत बेहतर होती है तो सफ़र जो है वो आसान हो जाता है और कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है वो मिल पाती है जिस डायरेक्शन में हमको जाना होता है। सो चलिए ये सब कुछ होने वाला है इस थॉट ऑफ द डे के बाद। क्यों? क्योंकि थॉट ऑफ द डे हमारे जो लाइफ के थॉट्स हैं उनको चेंज करता है और चूंकि कहते हैं कि थॉट से ही सब कुछ बनता है, मंजिलें भी थॉट से ही मिलती है और जो हमारा फेल्योर होता है उसकी वजह भी थॉट होती है और जो रिग्रेट होता है उसकी वजह भी थॉट ही होता है। यानी देखा जाए तो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा थॉट से ही एसोसिएटेड है। सो भाई इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हम थॉट ऑफ द डे पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। सो वैसे आज तो है सैटरडे और सैटरडे है सो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल होने ही वाला है। क्या ख्याल है, क्या हो सकता है स्पेशल में? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताने वाले कि भाई क्या स्पेशल होने वाला है जो आपके दिन को और भी ज़्यादा अलग बनाने वाला है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता करने के लिए तो हम हैं आपको बताने के लिए। सो फिलहाल चलिए चलते हैं ये जानने के लिए कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गुंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

छोटी छोटी सी बातें और छोटे छोटे से ये थॉट्स ऐसा लगता है लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। जैसे कि आज का थॉट क्या कहता है, आज का थॉट कह रहा है कि आपको आज ही अपनी पूरी जिंदगी का फैसला करने की जरूरत नहीं है। आपको आज ही अपनी पूरी जिंदगी का फैसला करने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगला कदम उठाने का जो है वो साहस यानी अगला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए जो आपको पहले से ही सही लगता है। जी हाँ, तो कहते नहीं कि आज ही तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा, ऐसा है वैसा है इसमें सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आज ही फैसला नहीं करना है कि पूरी लाइफ कैसे जाने वाली है। आपका जस्ट जो नेक्स्ट मूव है, अगला जो स्टेप है, अगला कदम जो है वो उठाने की जरूरत है, उसको हिम्मत चाहिए उसके लिए बस। और बाकी का जो आपको सही पहले से लगता है वही आप करिए, बाकी का तो खुद बखुद सही हो जाएगा। सो ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का, जो कि सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट है। हम क्यों इतना ज़्यादा डर जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि ये फैसला हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला होगा या ये बदल देगा पूरी लाइफ हमारी। इस तरह की बातें हमारे ख्यालों में आया जाया करती है एंड हम कई बार सोच करके इसलिए बैठे रहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा फैसला है, इसको ज़रा और समझ ले, इसको ज़रा और सोच ले। इस चक्कर में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। हालांकि हमारे पास सबसे बेहतरीन तरीका होता है हमारा नेक्स्ट मूव, यानी हमारा जो अगला कदम है उसको समझने की बस ज़रूरत होती है। अगर उसको समझ में आ गया हमें तो हम चीज़ों को बहुत ईजीली कर सकते हैं और कर ही लेते हैं। सो आज का सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगा। और अगर आप भी परेशान हैं और लाइफ में पूरी तरह आप सोच रहे हैं चेंजेस हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप बस अपने नेक्स्ट मूव पर ध्यान रखिए, यानी अगला कदम बस आप बढ़ाइए हिम्मत के साथ। बाकी की चिंता आप फिलहाल छोड़ दिए, आज ही आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं हो रहा है, डोंट वरी। सो इसलिए बस आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके बाद चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। खैर, थॉट तो बड़ा ही प्यारा है, बट अब आपको कितना ज़्यादा प्यारा लगा, आप खुद कितना इस बात से सहमत हैं, ये तो आप खुद ही बता सकते हैं। फिलहाल चलिए आपको ले चलते हैं एक छोटे से शॉर्ट से म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, और उसके बाद जब वापस आएंगे सो आने के बाद हम बताने वाले हैं कुछ और ख़ास और नई बातें जो कि आपके लिए ही मौजूद हैं। सो यस, चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: आज जो हम लाइब्रेरी देखते हैं वो हमेशा से क्या ऐसी ही थी या कुछ और भी बातें थी? चलिए, वैसे हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में जिसको कहा जाता है भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी। मोबाइल लाइब्रेरी का मतलब ये है जो चलती फिरती लाइब्रेरी हो। सो आखिर क्या स्वरूप रहा होगा जब भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी आई होगी? आखिर किस चीज़ पर उसको रख करके चलायमान किया गया होगा? कैसे लोगों तक पहुंची होगी और क्या है इसकी कहानी? आइए आपको बताते हैं भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

कैन यू इमेजिन किस चीज पर आखिर रखकर चलती होगी पहली लाइब्रेरी? भारत की मोबाइल। सो भाई मोबाइल लाइब्रेरी मतलब जो लाइब्रेरी चल फिर सकती हो। आप सोचेंगे लाइब्रेरी लाइब्रेरी है, कोई इंसान थोड़ी ना चल फिर पाएगा। हाँ हाँ चलती है, लाइब्रेरीज भी चलती है। सो भाई पहली जो भारत की मोबाइल लाइब्रेरी थी वो दरअसल एक बैलगाड़ी पर चलती थी। अब पहले तो बैलगाड़ी ही चलती थी, अब ये तो खैर हम सभी को पता है। सो जब मोबाइल और आने जाने के ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे तब भी भारत के कोने कोने पहुँच जाया करती थी किताबें। जी हाँ, दरअसल कई साल पहले जब ना ऐप्स थे ना ही मोबाइल था तब भी भारत में खुद लोगों तक पहुँचती थी लाइब्रेरी। ये काम किसी तकनीकी से नहीं बल्कि एक बहुत ही साधारण पहिए वाली बैलगाड़ी से होता था। और इसी तरह भारत ने धीरे धीरे अशिक्षा के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की। इसकी शुरुआत हुई 1931 में तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी के पास। पुस्तकालय के जनक कहे जाने वाले एस आर रंगनाथन से प्रेरणा लेकर के एक बैलगाड़ी में किताबें भरी गई और उसे मेलावसल गांव भेजा गया। यहीं से गांव तक ज्ञान पहुंचाने की ये अनोखी शुरुआत मानी जाती है। इस बैलगाड़ी में सिर्फ कहानियां नहीं, खेती बागवानी और छोटे उद्योगों से जुड़ी किताबें भी थीं। कुछ वक्त बाद इसमें एक ग्रामोफोन भी जोड़ा गया जिससे लोग अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे बल्कि साथ में म्यूज़िक सुनते थे और मिलकर सीखने लगे थे। सो ये बैलगाड़ी करीब 100 गांव तक जाती थी। लोग किताब लेते थे, पढ़ते थे और अगली जो यात्रा होती थी उसमें वापस कर देते थे। कई गांव के लिए यही एक ज़रिया था बस लाइब्रेरी का। ज़रा सोचिए क्या ज़बरदस्त फैसिनेटिंग लगता है सुनने के बाद ही कि भाई जब ये बैलगाड़ी 100 गांव तक जाती थी और लोग इससे किताबें ले लिया करते थे जो उनको पढ़नी हुआ करती थी, और जब अगली बार निकलती थी यही बैलगाड़ी तो उसको वापस कर दिया करते थे। सो कई गांव जो है इसीलिए एकमात्र उनके पास ज़रिया था किताबें पहुंचाने का, यही बैलगाड़ी से लाइब्रेरी जो चलती थी। 1950 का दशक आया और इस दशक में ये जो थॉट था ये दिल्ली तक पहुँच गया। 1951 की बात है जब शुरू हुई दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरी ने मोबाइल लाइब्रेरी बसों की शुरुआत की। जी हाँ, अब बैलगाड़ी से जब दिल्ली पहुंचा मामला 1950 के दौर में, और उसके बाद 51 जब आया तो फिर इसी मोबाइल लाइब्रेरी को जो है दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ बस में शिफ्ट कर दिया गया, यानी बस से फिर चलने लगा। और इसकी शुरुआत आज भी दिल्ली में चलती फिरती लाइब्रेरी के रूप में आप देख सकते हैं कि हाँ कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज है जो बसेस पे आज भी चलती है। सो राजस्थान में रेगिस्तान जैसे जो कठिन इलाके हैं वहाँ तक भी किताबें पहुँचाने के लिए ऊंट गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी वहाँ ज्ञान जो था वो ऊंट की पीठ पर सवार होकर के पहुँचा था। सो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके अपनाए गए। पश्चिम बंगाल और केरल में नावों पर लाइब्रेरी चली, तमिलनाडु में साइकिल लाइब्रेरी गांव-गांव पहुंची, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी और वैन से किताबें पहुंची, और कोलकाता में पुरानी ट्रामों को भी लाइब्रेरी बना दिया गया। सो आज हमारे हाथों में हज़ारों किताबें चूँकि हमें मोबाइल में ही मिल जाती है, लेकिन कभी पूरा गांव एक बैलगाड़ी की आवाज़ का इंतज़ार करता था जो उनके लिए ज्ञान लेकर आती थी। और भारत की पहली होम डिलीवरी कोई सामान नहीं था बल्कि किताबें और शिक्षा थी। कितना ज़बरदस्त लगता है ना सुनने के बाद कि वो भी ज़माना था जैसे डाकिया आया करता था तो उसका इंतज़ार करते थे कि भाई ख़त में क्या मिल सकता है। उसी तरह जब सोचिए कोई और साधन नहीं था, किताबें हुआ करती थी और किताबें भी जब आती थी बैलगाड़ी पर तो लोगों को इंतज़ार होता था कि ये बैलगाड़ी हमारे गाँव आई है और हम अब किताबें पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया उसमें सिर्फ कहानियाँ ही नहीं होती थी बल्कि छोटे जो लघु उद्योग हुआ करते थे उस वक्त के, और इसके अलावा ऐसी कई सारी ज्ञान की बातें हुआ करती थी उन किताबों में, और ये किताबें पहुंचती थी बैलगाड़ी से घर घर तक। अब जहाँ जैसा ज्योग्राफिकल एरिया था, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, बंदरगाह ज़्यादा है, वहाँ पर नाव से हुआ। जैसा कि हमने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया कि भाई पश्चिम बंगाल और केरल दो ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी थी उसको नाव में शिफ्ट किया
और नाव में बैठ करके लोग जाते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। इसके अलावा तमिलनाडु में साइकिल से लाइब्रेरी घर घर तक पहुंची और महाराष्ट्र में बैलगाड़ी से वैन से पहुंची। कोलकाता में जो पुरानी ट्राम थी सो ट्रामों को भी लाइब्रेरी बना दिया गया था। इस तरह से जहां जैसे रिसोर्सेज थे, जहां जैसा ज्योग्राफिकल एरिया था, उसी के हिसाब से ये लाइब्रेरी बनी और लोगों तक पहुंची। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है लाइब्रेरी की शुरुआत की, किताबों के घर तक पहुंचने की। मतलब आज तो हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं और कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो विद इन 10 मिनट्स या 20 मिनट्स डिलीवरी का भरोसा भी देते हैं, खैर पहुंचाते भी हैं। तो ये तो ऑनलाइन डिलीवरी की बात हो गई, लेकिन जब घर घर तक किताबें आती थी और पहली ऑनलाइन डिलीवरी के अगर अब हम बात कंपेयर करें ऑफलाइन डिलीवरी से, तो हम देखें कि भाई पहले सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो किताबों से हुई, किताबों को पहुँचाया जाने लगा था। वैसे सुन करके मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा जैसे गांव के कुछ सीन्स याद आने लगे और वो बैलगाड़ी की चलती हुई आवाज़ जिसको सुन करके लोग अपने कच्चे मकानों से बाहर निकल करके दौड़ते रहे होंगे और बड़े ही एक्साइटेड होकर जाते होंगे और किताबों को उठाते होंगे कि उनके काम वाली किताबें या उनकी फेवरेट बुक्स आखिर कौन सी है और इस बार वो क्या पढ़ने वाले हैं, और उन किताबों को लेकर के पढ़ना कुछ दिन तक, और जब अगले राउंड में वो वापस से आए तो फिर उसको वापस कर देना और फिर कोई नई किताब ले लेना। क्या ज़माना था, क्या ज़बरदस्त लगता रहा होगा ना। खैर अब आपको ये बात जान करके आपको कैसा लग रहा है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है भारत की पहली मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में, यानी भारत में जब शुरुआत में किस तरह से चलती फिरती लाइब्रेरी लोगों के घरों तक पहुँचती थी और इसको ले करके किस किस राज्य में कैसे कैसे इन्वेंशन किए गए, कैसे कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ किया गया, उसको संसाधन बनाया गया, इसको लेकर के भी आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मतलब उस दौर में मैं था भी नहीं, लेकिन उसको इमेजिन अगर करो तो कितना खूबसूरत लगता है, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। कॉमिक्स तो मैंने भी पढ़ी है, इसके अलावा लट्टू तो मैंने भी नचाया है और कंचे भी मैंने खेले हैं, इवन धूप में पतंगे भी उड़ाई है। सो बहुत कुछ है जो फैसिनेट करता है, जब भी ख्याल आता है इन बातों का तो लगता है वाह क्या दौर था। सो जाहिर है 1950 और उससे पहले के दौर की हम बात कर रहे हैं, उस दौरान अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ऑनलाइन हम किसी घर में कुछ भेज सके और बैलगाड़ियों से बुक्स पहुंचती थी, तो ज़रा सोचिए उनका इंतज़ार का क्या आलम होता होगा, वो किस तरह से उस बैलगाड़ी की आवाज़ को सुन करके एक्साइटेड होते होंगे, है ना, है ना, कितना ज़बरदस्त दौर था वो। चलिए आपके कमेंट्स आ गए हैं और हम वापस से आते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार और बताते हैं क्या कुछ लिखा है आपने।

0: हाँ जी, सो चलिए भाई, अब आपको हमने कहा था ना, मैसेजेस काफ़ी सारे आपके आ गए हैं, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

मुकेश, सबसे पहले मैसेज करते हैं इस शो में। गुड मॉर्निंग सर, दिल से गुड मॉर्निंग टू यू मुकेश। एंड पूछा इन्होंने कि मैं कैसा हूँ। अजी, मैं बिल्कुल झकास हूँ, मलाई मार के। सो इसके बाद प्रीति जी हैं, बहराइच से लिखा है, सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने आज के थॉट ऑफ द डे को सुनकर कहा प्रेरणादायक थॉट, परिस्थिति के अनुसार फैसला लेना अक्लमंदी होता है, हिम्मत इंसा तो सर्वे खुदा, क्या बात है। और इसके बाद सबलू सावंत जी हैं सांता क्रुज से, और आपने लिखा है गुड मॉर्निंग आरजे अदनान जी, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके बाद

में कोई भाव उत्पन्न हो और उसको आप जरा एक तरह से कहते हैं स्ट्रक्चर्ड कर लें और उसके बाद सामने पेश कर दें। वही आपने किया, लाजवाब कमाल का लिखा है आपने और इसके मायने बड़े अच्छे हैं। थैंक यू सो मच रवि तक्षक अल्पज्ञ जी, आपका एक बार वापस से स्वागत करते हैं। इट्स कुमार मौजूद है, लिखा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। और साथ ही साथ सिदरा फतेहपुर से जुड़ चुकी हैं, लिखा है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एंड इट्स कुमार ने बताया है कि आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन ऑर्डर जैसा कोई सिस्टम नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर ही लेना पड़ता है। बट यहाँ पे करेक्शन है, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी मिथ है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बताया ये गया है कि ई कॉमर्स और शॉपिंग ऑस्ट्रेलिया में बहुत जमकर होता है। ऑस्ट्रेलिया में अमेज़न है, ईबे है, कैच और कोगन जैसे जो वैश्विक और स्थानीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पॉपुलर भी है। इवन लोग कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी और बाकी सामान भी ऑनलाइन मंगाने के लिए पूरी तरह निर्भर है। सो चूँकि अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहते हैं कि ये बात कितनी सच है, तो इसके लिए आप mygov.au यानी ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सरकार का जो मुख्य ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ जा तक सकते हैं। और वहीं पे जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो अपनी सरकारी सेवाओं के लिए भी वहीं मैनेज करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पोस्ट है और ABC न्यूज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही है, वहाँ भी वो नेशनल ब्रॉडकास्टर है, जिस पर इसकी ऑनलाइन साइट पर जा कर के शॉपिंग या फिर जो डिजिटल सर्विसेज है इसको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ की जो करंट सिचुएशन है वो दिखा दिया जाएगा। सो ये कई बार चूँकि बताया गया है लेकिन इसको थोड़ा सा जानना ज़रूरी था, इसलिए हमने इस चीज़ को कोट किया। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छी जानकारी लगी जानकर, सिदरा ने लिखा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है, इंटरेस्टिंग जानकारी, चलती फिरती लाइब्रेरी, है ना, कितना बढ़िया है, मतलब सुनने में ही कितना अच्छा लगता है। एंड साथ ही साथ इन्होंने, इट्स कुमार ने भरत तिवारी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो भी इस वक्त मॉर्निंग शो से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ आ चुके हैं। सो चलिए मिल करके हम काफ़ी कुछ आज जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, मानने वाले हैं। ये सब कुछ चलने वाला है आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। और चूंकि आज सैटरडे मॉर्निंग है तो हमने कहा था वैसे भी काफ़ी कुछ होने वाला है जो आपको बहुत बेहतर और काफ़ी एंटरटेनिंग फील कराने वाला है। सुबह आने के बाद एक काम की बात ये है कि हो सकता है अब उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें और बढ़ जाए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसी रिपोर्ट आई हुई है। सो क्या है पूरी बात, आइए आपको इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार आ करके बताते हैं कि आखिर प्रदेश में कैसे बढ़ सकती है बिजली की दरें।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: तो चलो बच्चों बताओ, भवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। चिंटू, इस सॉन्ग में लेखक क्या कहना चाहता है, एक्सप्लेन करो।
2: टीचर जी, इस लाइन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा सब्र करना भी ठीक नहीं है, नहीं तो आपकी मलाई रबड़ी छक्कन हलवाई की हो जाती है।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: love.
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। डिलीशियस
3: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: अगर मैं कहूं कि भाई रेलवे का काम और भी ज्यादा आपकी लाइफ को इजी बनाना हो गया है, तो आपका ख्याल क्या आएगा? मतलब रेलवे ऐसा क्या कर रहा है? चलिए, नहीं पता तो हम बताते हैं कि भाई रेलवे ऐसा क्या कर रहा है जिससे आपका काम और भी ज्यादा इजी होने वाला है। कैसे, यही तो हम आपको बताने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई क्या होने वाला है? तो देखिए, होने वाला ये है कि घर से पार्सल उठाने की तैयारी कर रहा है रेलवे। जी हाँ, अब भाई पार्सल के लिए भी क्या होता है कि हम खुद जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, काउंटर्स पर जाते हैं या उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पे हम अपना पार्सल देते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अब एक लेवल आगे बढ़ करके रेलवे ने कहा है कि वो घर से उठाने की कोशिश करेगा, यानी अब घर से ही पिक कर लिया जाएगा आपका जो भी पार्सल होगा। सो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए जो बड़े आइटम्स हैं जिनको ले जाने के लिए परेशानी होती थी कि भाई कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए, उस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसके जो ऐप है उसके बारे में बताऊँ तो इसका नाम है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, रेल पार्सल ऐप। जी हाँ, रेल पार्सल ऐप जो है ये डेवलप्ड हो रहा है और अब स्टेशन की भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बुकिंग से लेकर के लाइव ट्रैकिंग तक सब कुछ आप मोबाइल पर देख सकेंगे, क्योंकि ये D2D है, डोर टू डोर फैसिलिटी जो है ये सर्विस शुरू की गई है। घर से पार्सल पिकअप होगा और UPI से आप इजीली इसके लिए पेमेंट भी कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें होगा स्टेशन टू स्टेशन बुकिंग होगी, डोर टू डोर बुकिंग होगी, पार्सल ट्रैकिंग भी होगी और बल्क कंसाइनमेंट बुकिंग भी होगी। सो ये काफ़ी कुछ मिलने वाला है जो इस रेल पार्सल ऐप में है। आप इसके बारे में सर्च करके भी जान सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं और ये आपके काफ़ी काम का होने वाला है। सो अब घर से ही आप पार्सल भेज सकेंगे। ऑफ कोर्स कुछ बड़े सामान आइटम्स होते हैं जिनको भेजा जाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, बट अगर आप रेल पार्सल ऐप यूज़ करने वाले हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इजी बनाने वाला है, चाहे कोई बिजनेसमैन हो या किसी के घर का भी कोई ऐसा सामान जो पार्सल के थ्रू आप भेजने वाले हैं तो आप घर से ही भेज सकते हैं। एंड मुझे लगता है ये फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, स्पेशली बड़े पार्सल्स के लिए। खैर, पार्सल जो हम बताया कि भाई रेल पार्सल ऐप नया इनिशिएटिव ले रहा है, इसको सुनने के बाद आप क्या कहने वाले हैं, कितना ज़्यादा इजी बनाने वाला है, ज़रा इस बात को सोचिएगा, फिर बताइए हमको, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई कल मिट्टी मिट्टी बोल इस गाने को एंजॉय करते हैं मिल करके। साडा सैटरडे है आज, यानी फुल टू एंटरटेनमेंट चल रहा है आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में। विल यू मॉर्निंग जो अदनान

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: इट्स पी ऑन द ट्रैक।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

0: तो भाई फिलहाल हमने बताया था कि आने के बाद आपको बताने वाले हैं कि आपकी ये बिजली और भी ज़्यादा महंगी हो सकती है, यानी प्रदेश में बिजली की दरें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसी बात कहां से आई है और किसने कहा है, और कहा है तो आखिर क्यों कहा है, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NPCL का सरप्लस 1563 करोड़ को घटा करके 593.81 करोड़ का आदेश जारी होते ही राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में आपत्ति प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। सो परिषद के जो अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा, इन्होंने CM को पत्र भेजकर मांग की है कि सरकार नियामक आयोग के फैसले के खिलाफ तत्काल ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल करने की मांग की है। अब प्रदेश भर के उपभोक्ताओं की बिजली दरें महंगी हो सकती हैं क्योंकि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का कई सारे डिस्कॉम पर करीब 51,000 करोड़ सरप्लस है और यही वजह है कि कई सालों से बिजली दरों में स्थिरता बनी हुई है। NPCL के फैसले के आधार पर जो बाकी कंपनियां हैं सरप्लस के पुनः परीक्षण की मांग करेंगे, ऐसे में प्रदेश के करीब 3.5 करोड़ उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ सकती हैं और इसको नियामक आयोग का फैसला आने के बाद उपभोक्ता परिषद के जो अध्यक्ष हैं याचिका दाखिल करके आयोग से पुनर्विचार की मांग की है। इन्होंने इसे उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल बताते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के धन से ही न्यायिक लड़ाई लड़कर अंततः उपभोक्ताओं पर ही वित्तीय भार डाला जा रहा है जो पूरी प्रणाली की पारदर्शिता पर एक सवालिया निशान लगाता है। सो परिषद ने सरकार से मांग की है कि वो तत्काल हस्तक्षेप करते हुए इस आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रभावी पैरवी करे और उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित करे। सो मुकदमे का खर्च भी उपभोक्ता से वसूली है कंपनियां, ऐसा कहना है अवधेश वर्मा का। अवधेश वर्मा ने आयोग को बताया कि देश की सभी बिजली कंपनियों ने ऑल इंडिया डिस्कॉम संगठन बनाया है जिसमें नोएडा पावर कंपनी के MD कोषाध्यक्ष हैं, पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष महासचिव हैं। बिजली कंपनी मुकदमे में खर्च होने वाली रकम कंज्यूमर्स से ही वसूलती है। आयोग ये व्यवस्था बनाए कि उपभोक्ता जो पॉलिसी मैटर पर मुकदमा जनहित में लड़ेंगे उसका भी खर्च आयोग वार्षिक राजस्व की आवश्यकता के हिसाब से दिलवाएगा, ऐसा कहना है अवधेश वर्मा का। सो फिलहाल इसीलिए बताया कि भाई प्रदेश में ऐसा हो सकता है कि बिजली की दरें जो है वो बढ़ जाए। जी हाँ, और ये जो खबर है ये नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड यानी NPCL का को लेकर के हैं, वहीं से इस बात को बताया गया है और आने वाले टाइम में प्रदेश में बिजली की दरें जो है वो बढ़ सकती हैं। फिलहाल ये ज़रूरी जानकारी थी जो आप तक पहुंचा दी गई। अब वक्त है एक बेहतरीन से सॉन्ग को सुनने का और एंजॉय करने का अपना सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल वाला शो। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान। स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: तेरे संग लागी जो प्रीत रे, क्या बात है। कहते हैं कि मोहब्बत जो है उनके लिए सरहदें नहीं होती, उनके लिए जात नहीं होता, उनके लिए धर्म नहीं होता, उनके लिए कोई रोक नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत जो है वो एक खुला आसमां है। बिल्कुल वैसी जैसे नेचर ने हमको हमारे ऊपर एक खुला आसमां दिया है। इसी बात को कहीं ना कहीं शायद एक छोटी सी रियल लाइफ की स्टोरी आपको ज़रूर बता देगी कि आखिर कितनी बड़ी दुनिया होती है, कितना बड़ा जहां होता है जब होती है मोहब्बत।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Aajya Khan.

सो भाई लगान के सेट से जो है वो शुरू हुई थी ये लव स्टोरी। लगान का सेट आपको बताया ना, लगान। यस, और ये सिक्स और लगान देने से हम बच गए। आमिर खान की मूवी लगान आपको अच्छे से याद है। सो इसी के सेट से शुरू हुई थी लव स्टोरी, अब बाघा और गोरी मेम की लव स्टोरी। जी हाँ, सो दो अलग देश अलग सोच के बावजूद बन गया जिंदगी भर साथ निभाने का अटूट रिश्ता। लगान से सेट से हुई एक मुलाकात आज 25 साल के खूबसूरत सफ़र में बदल चुकी है। अमीन हाजी और शार्लेट की कहानी बताती है कि प्यार बड़े इजहार से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। दो अलग देशों अलग सोच और दूरी के बावजूद इनका रिश्ता एक मिसाल है। सो भुज फिल्म में शूटिंग के दौरान बाघा का किरदार निभा रहे अमीन ने शार्लेट को पहली बार देखा और शार्लेट के भाई जेमी एक अंग्रेज़ क्रिकेटर का रोल कर रहे थे, वो उन्हीं के साथ सेट पर आया करती थी। यहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। फिल्म की तरह कोई ड्रीमी लव स्टोरी नहीं बल्कि चुपचाप करवट लेती कहानी। अमीन हर दिन बस वही सीट चुनते जहां शार्लेट बैठती, टेरेस पर हवा के बहाने एक दूसरे से बातें करते और टेबल टेनिस के ज़रिए करीब आते गए। सो यही मुलाकातें और छोटी छोटी बातें कब एक गहरे रिश्ते में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन रिश्ता इतना आसान नहीं था। अलग देश अलग ज़िंदगी अलग सोच और दोनों के परिवारों को भी कुछ शंकाएं थीं, पर इनके प्यार ने सात समुंदर पार इन दूरियों को भी रुकावट नहीं बनने दिया बल्कि दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और ये मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। शार्लेट ने भारत को दिल से अपनाया और यहाँ रह कर के यहाँ के तौर तरीकों को भी सीखा और यहाँ की हिंदी भाषा को भी सीखा शार्लेट ने। इसके अलावा शादी के बाद इन्होंने पहाड़ों में अपना घर भी बसाया। जी हाँ, अब ज़रा सोचिए ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ कैसे हो रही है और किस तरह पहाड़ों में घर भी बसा लिया इन लोगों ने। यानी ये सारी चीज़ें एक तरफ चल ही रही थी, दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं तो इनकी दो बेटियां भी हुई और समर और स्काई, जिन्हें होम स्कूलिंग दी, स्कूल की घंटी और बंद क्लासरूम के बजाय प्रकृति और जीवन को उनका टीचर बना दिया गया। आज सालों बाद भी उनका ये प्यार और भी मजबूत रिश्ता हमें सिखाता है कि जहां सच में प्रेम होता है वहां कोई दूरियां या कोई अंतर मायने नहीं रखती, वो आज़ाद होता है हर ख्यालों से हर बंधन से परे होता है। बहरहाल इनकी ये रियल लाइफ स्टोरी जान करके आपको कैसा लग रहा है ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आपने ट्यून किया हुआ है गोंडा एफ एम 89.6 एफ एम, गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए अपने 89.6 एफ एम के इस शो के बाद। सुनिए गांव की गूंज और जाने से पहले ये स्पेशल सॉन्ग आपके लिए है।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर गांव की गूंज, जहां हर एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि समाज का आईना होता है। हम हैं आपकी अपनी आवाज, आपके फेवरेट शो गांव की गूंज की टीम के साथ। आज हमारी 89.6 FM की टीम लेकर आई है एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम हाल ही में उत्तर प्रदेश के माधोपुर गांव गए थे, जहां हरियाली ही और सादगी थी, लेकिन उसी सुंदरता के बीच छुपी है एक कड़वी सच्चाई, बेटियों के प्रति भेदभाव। आज हम उसी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे और उसे बदलने की शुरुआत करेंगे।
12: जब हम माधोपुर पहुंचे, तो सच कहूं, ऐसा लगा जैसे किसी किताब के पन्ने में प्रवेश कर लिया हो। चारों तरफ फैले हुए गेहूं के खेत, जिनकी बालियां हवाओं के साथ ऐसे झूम रही थीं, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी थकान पल भर में उतर गई हो।
13: हाँ जया, यह सब बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के अंदर गए, कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने दिल को बेचैन कर दिया। हमने देखा कि यहां लोग बहुत मेहनती हैं, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात बेटियों की आती है, तो वही लोग, वही परिवार अचानक बदल जाता है।
11: मुझे याद है जब हमारी गांव की गूंज की टीम 89.6 FM की टीम एक घर में गई थी। वहां सब लोग खाना खा चुके थे, पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब, और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे घर की बहुएं और बेटियां रसोई में बैठकर बचा हुआ खाना खा रही थीं। उनके चेहरे पर एक शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में एक आदत सी थी, जैसे ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका हो।
2: हमार तो जियरा हिल के रहेगा। हम सोचित रहे कि ये का नियम है, का बेटी और बहू के पेट कम होते है, का वो लोग इंसान नहीं है का। ये सब देख के लगत है कि आज भी हम कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। जहाँ प्यार है, अपनापन है, लेकिन बराबरी अभी तक ना पहुँची है।

0: हमने माधवपुर में सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं देखी, बल्कि एक सच्ची सोच देखी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ लोग बहुत धार्मिक हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जब हमने ध्यान से सुना तो कई जगह एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भगवान बस बेटा देना। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र तक कराते हैं सिर्फ इस इच्छा में कि घर में बेटी नहीं बेटा ही जन्म ले।
1: यह सुनकर मन में एक सवाल उठा, क्या भगवान को भी हम भेदभाव सिखा रहे हैं?
2: और बात यहीं तक सीमित नहीं थी, हमने कुछ ऐसी बातें भी सुनी जो दिल को झकझोर देने वाली थी। कानूनन यह गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यह जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की,
3: और अगर उनका पता लग जाए कि पेटे में लड़की है तो उनका जन्म ले के पहले ही खत्म करने की सोच लेते हैं। गांव की दाई या कुछ गलत रास्ते अपनावे वाले लोग हैं, महतारी का इसी दवाई दे दे हैं जो मासूम की जिंदगी का दुनिया देखे इनके पहले खत्म कर दे, जानू कि नहीं।
1: अरे बाप रे बाप,
2: सोचिए जिसे हमने देखा भी नहीं, जिसने कोई गलती भी नहीं की, उसे सिर्फ इसीलिए जीने का हक नहीं मिलता क्योंकि वो बेटी है।
1: यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह है इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। अरे हम कहते हैं कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आज भी हम एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं?
3: अरे ये सब तो सुन के हम सन्न रह गए। हम सोचत रहें कि आज भी कहीं न कहीं बेटी के जन्म से पहले रोक दियल जात है। का कसूर बा वो नन्ही सी जान के, सिर्फ इतना कि वो बिटिया बा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है।
1: बिल्कुल सही कहा था।
0: और जो बेटियां जन्म लेती भी हैं, उनका जीवन भी आसान नहीं होता। हमने देखा घर में लड़के आराम से बैठे हैं या पढ़ाई के नाम पर बाहर जा रहे हैं, और वहीं लड़कियां छोटी सी उम्र में रसोई में लगी हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, यहाँ तक कि खेतों में भी काम करना।
2: उनके लिए बचपन, खेल, सपने, सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हें घर का काम सीखना है।
1: और दूसरी तरफ बेटे चाहे पढ़ाई में अच्छे हों या नहीं, माँ बाप उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कर्ज लेते हैं, यहाँ तक कि खेत तक बेच देते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो बेटा है और उन्हें लगता है कि वही उनका भविष्य है।

0: हमारी 89.6 FM की टीम ने इस गांव में कई घरों में एक ही बात बड़े गर्व से सुनी। लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे तीन तीन बेटे हैं, तीनों शहर में नौकरी करते हैं। उनकी आवाज में गर्व था, एक संतोष था, जैसे उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। लेकिन जब हमने धीरे से पूछा, क्या वे आपका ध्यान रखते हैं, क्या वे आपसे मिलने आते हैं, तो अचानक वही चेहरे जो अभी तक गर्व से चमक रहे थे एकदम शांत हो गए, आंखें झुक गईं और होठों पर एक मजबूर सी खामोशी छा गई।
1: हम उसी घर में कुछ देर बैठे और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि इनके तीन बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में बस गए हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, लेकिन उस अच्छी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
2: वो तो ना उन्हें अपने पास बुलावत है, ना ही गांव आवे की उनका फुर्सत है। और सबसे दुखद बात ये है कि अपन माँ बाप का शहर बुलावे से भी कतरात है, क्योंकि उन्हें डर लागत है कि कहीं उनके सादे सीधे सादे माँ बाप उनकी सारी इमेज का खराब ना कर दें।
3: पूरा कहा तू बहनी, सोचिए जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की पढ़ाई में, उनके सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए लगा दी, खेत बेच दिए, अपनी जरूरतें छोड़ दी, आज वही माँ बाप अपने ही बच्चों के जीवन में एक बोझ जैसे महसूस किए जा रहे हैं। यह सिर्फ दूरी नहीं है, ये भावनाओं की दूरी है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है।
0: लेकिन उसी घर में एक कहानी और भी थी, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे दिल को छू लिया।
1: उस घर की एक बेटी भी थी, रीमा।
3: रीमा? रीमा ने शहर में शादी करने से साफ मना कर दिया था। जब रिश्ते आए बड़े बड़े शहरों से, अच्छे घरों से, तो उसने एक ही बात कही, मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी।
2: रीमा कहत रही कि जब हम शहर में जाइबे, हम बगल के गांव में शादी करब, ताकि रोज माई बाबू का देख सकी, उनका दवा पानी, उनका हाल चाल सब खुद देखी। और सच माँ वो अपनी जिद पर अड़ के रह गई और बगल के गांव में ही शादी करी से, जानियो कि नहीं?
3: हाँ, बगलियम करी से।
2: हाँ,
0: आज वही रीमा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है। सुबह स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है और शाम को अपने माता पिता के पास आ करके उनका हाल भी पूछती है, उनको दवा देती है और उनके साथ बैठती भी है।
1: हमने अपनी आंखों से देखा, उसके माँ बाप उसे भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व और प्यार के आंसू थे।
3: और उन्होंने कहा, हमने जिंदगी भर अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, लेकिन असली सहारा हमारी बेटी निकली। उनकी आवाज में पछतावा था अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर।
2: देखो ना दीदी, जिन बिटवन की खातिर सब कुछ दे दिया गा, वो सब शहर में बड़े खुश हैं, लेकिन असली सुकून तो बिटिया से मिलत है। बेटी ना हुई होती तो घर खाली खाली लागत, और बेटी साथ अगर है तो बुढ़ापा में सहारा बन जाती।
0: अब सवाल ये नहीं है कि बेटा जरूरी है या बेटी, सवाल यह है कि हम किसे क्या समझते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बेटा नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटी जीवन रोशन करती है।

0: आज हम सब यहाँ पर एक परिवार के मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामलाल के घर में 5 बेटियाँ हैं और अब वह दूसरी शादी करना चाहता है ताकि उसे बेटा हो सके।
1: प्रधान जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या यह सच है कि हमारे कानून में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं है? तो फिर हम गांव की सभा में ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं जो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है?
2: और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये न्याय है कि 5-5 बेटी होवे का दोष सिर्फ माँ पर डाल दिया जाए? हमें तो ये बात समझ में नहीं आवत है।
3: क्या किसी ने यह सोचा कि बेटी या बेटा होना उसके हाथ में नहीं है? विज्ञान कहता है यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो फिर हर बार माँ को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है?
1: एक नारी जो 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, उसके दर्द को सहती है, उसे ही दोष देना, क्या ये इंसाफ है या हमारी गलत सोच?
4: और क्या बेटियां होना कोई अभिशाप है? वो 5 बेटियां जो आज उस घर में हैं, क्या वो प्यार नहीं दे सकती? क्या वो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? या सिर्फ कि वो बेटियां हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है?
5: लेकिन समाज में तो बेटा जरूरी होता है वंश चलाने के लिए, नाम के लिए।
2: ये तो नाम का वंश होए, नाम तो तब रोशन होए जब घर में इंसानियत बची रहा है। एक बात भाई कि 5-5 बेटियां हुई गई तो मेहरारू का दोष दो और दूसरी शादी कर लो। और वो औरत तो इंसान ना हो जो दूसरे का दिल का दर्द ना समझे। इका न्याय नहीं कहा था, इका अत्याचार कहा जात है।
1: पर आज हम ये फैसला लेते हैं तो हम सिर्फ एक औरत के साथ अन्याय नहीं करते बल्कि हम पूरे समाज को ये संदेश देते हैं कि बेटी होना गलत है और ये सोच कभी खत्म नहीं होगी।
3: हमें यह तय करना होगा कि हम परंपरा को मानेंगे या सच्चाई को।
4: और अगर बदलाव यहीं से शुरू नहीं होगा तो कहीं से भी नहीं होगा।

0: आज हमने जो देखा सुना उसने सिर्फ हमारे मन को दुखी नहीं किया बल्कि हमें जिम्मेदार भी कर दिया। अगर हम सिर्फ सुनकर देखकर चले आते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा बल्कि हम भी उसी गलती का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि बदलाव छोटी छोटी शुरुआत से आती है।
1: जब एक माँ अपनी बेटी को बेटे जितना खाना देती है, जब एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए उतना ही सोचता है, जब एक परिवार बेटी के जन्म पर उतनी ही खुशी मनाता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है।
2: हम हमेशा कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, लेकिन समाज बनता किससे है? हमसे, हमारे घरों से, हमारी सोच से। अगर आज भी हम अपनी बेटियों से कहें कि तुम रसोई संभालो और बेटों से कहें तुम आगे बढ़ो, तो फिर हम किस बात की बराबरी कर रहे हैं?
1: एक पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ अपने लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए बदलाव लाती है। वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है और वो अपने माँ बाप का सहारा भी बनती है। इसीलिए बेटी को रोकना नहीं है, उसे उड़ान देना है।
3: देखो बहनी, बेटी का रोके के ना चाहिए, उके सपना ना तोड़े के चाहिए। वो भी चाहत है कि कुछ बन जाए, वो भी चाहत है कि माई और बाबूजी का नाम रोशन करे। जब वो बड़ा हो के उड़ना चाहत है तब हम ओकर पक कहे काट दे। अब उका उड़े दियो के रोक ना लगाओ, बेटी के पंखन में उड़ान भरो।
4: हमने हमेशा बेटों को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज समझ में आया कि असली सहारा तो बेटी होती है।
5: आज मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन को भी पढ़ाऊंगा और उसे भी आगे बढ़ने का मौका दूंगा।

0: उतनी ही मासूम जिंदगियां खिल उठेंगी।
1: बेटी है तो भारत है, उससे ही हर आंगन है, उसके सपनों से ही रोशन है ये सारा जीवन। कलम पकड़ेगी, हल चलाएगी, रचेगी नया इतिहास, हर आंगन अब महकेगा, खुशियों का होगा वास। ऊंचाइयों को छुएगी अब, न डरेगी न ये झुकेगी, प्रगति की इस राह पर अब बेटियां ही नहीं रुकेंगी। शिक्षित होगी नारी तो जग में होगा सवेरा, मिट जाएगा अंधकार, होगा खुशियों का बसेरा। बिल्कुल सही समता, हमारा सफर जारी है, और जब तक हर घर में बेटी को उसका हक नहीं मिलता, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारी 89.6 FM की टीम का यही मिशन है, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब हमारी सोच बदलती है।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM गांव की गूंज, और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी इन बातों से सहमत होंगे और आज से ही अपने घर की प्यारी सी बेटियों को ढेर सारा प्यार, सम्मान और दुलार अवश्य देंगे।
3: याद रखिएगा, बेटी है तो घर है, बेटी है तो प्यार है, बेटी है तो भविष्य है। नमस्कार।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
4: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: हुक्कई से खेलन जइबो,

0: अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई, वक्त हो चुका है 12, यानी आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन आती हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड काफी सारी चीजों को समझते हैं। अब देखिये, स्वास्थ्य संगिनी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत बार बात हुई है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है, उस पर तो किसी ने कभी बात ही नहीं की। और भाई, चल रही है गर्मियाँ। अब भाई एक सेकेंड, मैं आपको याद दिलाती हूँ सूर्य देवता की। जी हाँ, जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि हमारी सर्दी, वही सर्दी जो भी कुछ महीने पहले हमसे थोड़ी सी दूर चली गई और कुछ महीने बाद वापस से आ जाएगी। देखिए, सर्दियों में हम हमेशा सोचते हैं कि जल्दी से सूर्य देवता आ जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, थोड़ा सा दिल को सुकून मिले और हमारी बॉडी को थोड़ी सी राहत। लेकिन वही सूर्य देवता जब सर्दियों की जगह गर्मियों में नज़र आते हैं, ओ माय गॉड, मैं तो आपको मतलब ऐसे ही एक्सप्लेन करूँ कि कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। अब देखिए, सूर्य देवता सर्दी में सबको पसंद होते हैं, एक बच्चे से लेकर के एक बूढ़ा तक यही सोचता है कि जल्दी से सूर्य देवता के दर्शन हो जाए। लेकिन गर्मी में ओफो, ये सूरज निकल क्यों आता है? और कभी ना कभी किसी ना किसी ने हनुमान जी से ज़रूर प्रार्थना की होगी कि हनुमान जी प्लीज़ आओ और इन सूर्य देवता को फिर से आके खा लो। भाई, हनुमान जी को आप सभी जानते हैं कि उन्होंने फल समझ के सूर्य देवता को खा लिया था, और यही कहीं ना कहीं हमारी फिर से अरदास होती है इस गर्मी को देख के। अब देखिए, गर्मियां बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। अब गर्मियों में डिहाइड्रेशन और गट हेल्थ सब के बारे में हमने बहुत सारी बात की है, लेकिन जो आपको खुद को होती है, बच्चों को होती है, बूढ़ों को, यानी कि सभी को होती है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, उस पर तो हमने कभी बात की ही नहीं। अब देखिए, प्रॉब्लम तो वो भी बड़ी है। अब आप इमेजिन करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपके आसपास कई सारे लोग हैं, और आपको हो रखी है आपकी पीठ में बहुत जोर की घमौरियाँ। अब सोचिए, उसमें हो रही है खुजली। अब आप पब्लिक प्लेस पे उस पर उसको खुजला भी नहीं सकते, अब आप पब्लिक प्लेस पे रहा भी नहीं जा रहा है, अब सोचिए कि भाई मूड आपका कितना खराब हो रहा होगा। ये सिचुएशन भाई सभी समझ सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी आप सबने इस सिचुएशन को ज़रूर फेस किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही बड़ी स्किन प्रॉब्लम, जो कि स्पेशली समर में बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें से पहला हम बात करेंगे पिकली हीट यानी घमौरियों की, दूसरा हम बात करेंगे एक और बड़ी प्रॉब्लम सन बर्न की, जो कि अधिकतर हर दूसरे इंसान को हो ही जाता है, और साथ ही घमौरी। अब देखिए, घमौरी के लिए मार्केट में काफ़ी सारे लोशंस अवेलेबल हैं, पाउडर्स आते हैं, लिक्विड आते हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें हम खुद से करते हैं, लेकिन एक करेक्ट वे होता है इन घमौरियों से डील करने का, वो शायद हमें नहीं पता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं इन दोनों को ट्रीट करने की, कैसे आप इससे बच सकते हैं, और इस गर्मी और आगे आने वाली सभी गर्मी के सीजन पे हम कैसे इन घमौरी और सनबर्न को चकमा दे सकते हैं, भाई चकमा देके अपनी ज़िंदगी को सुखद बना सकते हैं। तो भाई आज का शो इसी पे डेडिकेटेड है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा, और बने रहिए हमारे आज के स्वास्थ्य संगिनी शो में, जिसमें हम आज बात करेंगे गर्मियों से रिलेटेड प्रॉब्लम की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बातें जारी रखेंगे।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
12: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
13: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
14: मतलब
13: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
15: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: वेलकम बैक एवरीवन। आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेगे स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले घमौरियों की। गर्मी का सीजन शुरू होते ही एक प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पिकली हीट। आपने नोटिस किया होगा कि बॉडी पर छोटे छोटे रेड रैशेस, इचिंग और जलन, और एक अजीब सी चुभन आपको महसूस होती है। हिंदी में हम इसे घमौरियां कहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये पिकली हीट होता ही क्यों है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी नेचुरली स्वेट यानी कि पसीना निकालती है ताकि बॉडी कूल रहे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी हो जाती है तो स्किन के स्वेट ग्लैंड ब्लॉक हो जाते हैं, पसीना बाहर नहीं निकल पाता है और स्किन के अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इसी वजह से टाइनी बम्प्स बन जाते हैं, इचिंग होती है और इरिटेशन भी स्टार्ट हो जाती है, और इसी कंडीशन को कहते हैं हम पिकली हीट यानी कि घमौरी। ये ज़्यादातर आपकी नेक, बैक, चेस्ट, अंडर आर्म्स और वेस्ट एरिया में दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है। बेबीज में भी, अरे वही हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनके स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और दोस्तों, नाम पिकली इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये स्किन पर लिटरली चुभन जैसी फील कराता है, यानी कि टाइनी निडल्स जैसे आपको चुभाए जा रहे हैं, आपको टच हो रहा है वो। तो जब चुभाए जा रहे हैं तो भाई चुभन तो महसूस होगी ही, तो इसीलिए इसका नाम पिकली रखा गया है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ तो जब पसीना आपकी बॉडी से बाहर निकलने के बजाय स्किन के अंदर ही फंस के रह जाता है, तो बॉडी घमौरियों के थ्रू प्रोटेस्ट करती है। जी हाँ, वही प्रोटेस्ट जो बाकी पूरे देश में नजर आता है जब लोग आंदोलन करते हैं। तो इस आंदोलन की हमें जरूर सुननी चाहिए और अपने स्किन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। समर वेकेशंस, आउटडोर वर्क, टाइट क्लॉथ और ह्यूमिडिटी, ये सब इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब देखिए दोस्तों, फैशन तो सभी करते हैं और हम इंडियंस तो भैया एकदम चटाक कलर वाले कपड़े पहनेंगे। बिल्कुल फैशन में हम बिल्कुल करीना कपूर और शाहरुख खान को पीछे छोड़ सकते हैं, इतना हमारे अंदर क्षमता है। लेकिन भाई अगर हम बात गर्मी की कर रहे हैं तो इस गर्मी में थोड़ा सा फैशन हमें कम करना होगा। लेकिन एक सेकेंड, मुझे याद आया कि हम फैशन लूज फिट कपड़े में भी कर सकते हैं। अब देखिए लूज फिट कपड़ों का चलन तो बहुत सालों से है और आगे भी चल रहा है। ये चलन शुरू हुआ था कोविड के बाद से। तो आप इस गर्मी अगर आप फैशन करना भी चाहते हैं तो भी आप लूज फिट के कपड़े पहने और कोशिश करें हल्के रंग के कपड़े जरूर पहने। तो दोस्तों ये कोई डेंजरस डिजीज नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल बहुत होता है और अगर केयर ना की जाए तो इन्फेक्शन में भी ये बदल सकता है। दोस्तों पिकली ही देखने में छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन इसका इफेक्ट डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी होता है। तो सबसे पहले तो इचिंग की बात करते हैं। देखिए इतनी इचिंग होती है कि आदमी बार बार स्क्रैच करता रहता है अपनी बॉडी पर, और जितना स्क्रैच करोगे उतनी ही स्किन रेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। दूसरा इफेक्ट होता है बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन जैसा लगना। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्किन जल रही हो, स्पेशली जब आप सनलाइट में जा रहे हो या स्वेटिंग ज़्यादा हो रही हो, तो ये भी एक लक्षण है घमौरियों का। कई लोगों को ये टाइनी ब्लिस्टर भी हो जाते हैं अगर हाइजीन मेंटेन ना की जाए तो, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और दोस्तों इमेजिन करिए कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, सभी की नज़र आप ही पे, लेकिन भाई आपके पीठ पे बहुत ज़्यादा घमौरी हो रखी है। अब इमेजिन कर लिए तो देखिए ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड होगी और कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग होगी। तो ऐसे सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो भाई आपको आज का शो अच्छे से सुनना होगा और साथ ही साथ बताई गई टिप को अच्छे से फॉलो करना होगा और इस गर्मी घमौरियों को मात देनी होगी। देखिए चिल्ड्रन और बेबीज में ये सिचुएशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते और रोते रहते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते रहते हैं। पिकली हीट का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। अब देखिए बीमारी है तो बीमारी का कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो ज़रूर होता है। वैसे ही पिकली सुनने में बड़ी छोटी सी चीज़ है कि भाई घमौरियाँ ही तो हैं, लेकिन इसके जो असर होता है वो हमारे साइकोलॉजिकल तरीके से भी बनता है। इंसान को गर्मी और स्वेटिंग का फियर होने लगता है, आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करने लगते हैं, स्लीप भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज इचिंग रात में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इंडिया जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट वाले कंट्री में, स्पेशली मई और जून में, जी हाँ वही मई जिसमें हम ये शो सुन रहे हैं, ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको? हाँ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि कभी कभी लोग इसे एलर्जी समझ लेते हैं, लेकिन भाई एलर्जी और नॉर्मल घमौरियों में बहुत अंतर होता है जो आप नहीं समझ पाते, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस बात को समझ लेते हैं कि देखिए कभी कभी लोग इसे एलर्जी समझ लेते हैं, लेकिन हर रैश एलर्जी नहीं होता। हीट रैश और पिकली हीट का कनेक्शन मोस्टली स्वेट ग्लैंड से ही होता है। तो दोस्तों छोटी प्रॉब्लम लगने वाली घमौरियाँ कभी कभी डेली लाइफ को भी आपके पूरा अफेक्ट करके रख देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, और आपके जो गर्मी के सीज़न है जब आप इसको बिताते हैं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान ये गर्मी चली ही क्यों नहीं जाती। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, यानी कि ये जो हमारी पिकली हीट होती है इसे बचा कैसे जाए। अब देखिए इसके लक्षण तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी पे रेड रैशेज होने लगते हैं, खुजाने लगता है, इचिंग होने लगती है, ऐसा लग रहा है कि कोई पिंच चुभ हो रहा है, साथ ही साथ आपको ये सुकून से बैठने भी नहीं देती। तो इसे तो हम सब वाकिफ हैं कि ये आखिर होती कैसे, लेकिन इससे अपने आप को बचाएं कैसे ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आखिर पिकली हीट से बचा कैसे जाए? देखिए सबसे पहला रूल है स्टे कूल। जी हाँ वही कूल, और कूल बनने के लिए हमें कूल वाले गाने नहीं सुनने, हमें एक्चुअल में कूल रहना है। जितना हो सके डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करिए, स्पेशली आफ्टरनून, यानी कि 12 से लेकर के 4 के बीच, 12 से 4 बजे के बीच गर्मी को और सनलाइट को थोड़ा सा अवॉइड करिए। दूसरा, लूज कॉटन क्लॉथ पहनिए। अब देखिए, इस पर अभी हमने बात की और ये सबसे मेन मुद्दा है। देखिए, सिंथेटिक और टाइट कपड़े स्वेटिंग को ट्रैप कर लेते हैं, यानी उसको अपने पे ही रोक लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन ब्रीद नहीं कर पाती और ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और दोस्तों, स्वेटिंग कम करने के लिए बॉडी का हाइड्रेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके आप पानी पिए, नींबू पानी पिए, कोकोनट वाटर पिए, ये सब बॉडी को आपके कूल रखता है। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तब तो रेगुलर बाथिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब देखिए, रेगुलर बाथिंग में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 4-4 बार नहा लेते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं कि भाई एक ही बार नहाने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर डालती है आपकी स्किन हेल्थ में। तो देखिए, आपको नहाना है लेकिन इतना नहीं कि वो आपकी स्किन को अफेक्ट करे। लेकिन गर्मियों में अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको दिन में 2 से 3 बार आप नहा सकते हैं। को साथ ही साथ आपको माइल्ड सोप यूज़ करना है। मार्केट में ऐसे सोप अवेलेबल हैं जो हर्बल होते हैं, जो पिकली हीट को कम करते हैं और आपकी बॉडी पे कोई इन्फेक्शन होने से आपको बचाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, हैवी ऑयल क्रीम्स को अवॉइड करिए। देखिए, ये हमें हमेशा समझना होगा कि हर किसी की स्किन अलग अलग टाइप की होती है। कोई नॉर्मल स्किन वाला होता है, कोई ऑयली स्किन वाला होता है, कोई कॉम्बिनेशन स्किन, कोई बिल्कुल ड्राई स्किन वाला होता है। लेकिन भाई, गर्मियों में पसीने तो सबके ही होते हैं ना, चाहे वो किसी भी टाइप की स्किन वाला हो। तो कोशिश करें कि गर्मियों में हैवी ऑयली क्रीम को आप अवॉइड करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऑयली क्रीम होती कैसे है। देखिए, ऑयली क्रीम्स जो होती हैं वो जब आप अप्लाई करेंगे अपनी बॉडी पे या फेस पे, तो वो थोड़ी ही देर में चिपचिपी होने लग जाएगी, वो जल्दी आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी, आपका जो फेस है, आपकी स्किन है, वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये जो ऑयली क्रीम्स होती है ना दोस्तों, ये आपके पोर्स को और भी ज़्यादा ब्लॉक कर देती हैं। मार्केट में कूलिंग पाउडर और कैलामाइन लोशन मिलते हैं जो इचिंग और इरिटेशन को रिलीफ देते हैं, और रिलीफ ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक इनको ठीक भी करते हैं। लेकिन अगर रैशेज आपके सीवियर हो जाते हैं या इन्फेक्शन होने लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इस सिचुएशन में डॉक्टर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं आपको इंजेक्शन लगाने के लिए। तो भाई, जो इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आप खुशी खुशी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको दवाई अप्लाई करने के लिए देंगे, ना कि खाने के लिए और इंजेक्शन के थ्रू देंगे। तो आप आराम से पाउडर और क्रीम अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं और इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। बेबीज के केस में ये एक्स्ट्रा ज़रूरी है कि उन्हें ओवरड्रेस ना कराया जाए और रूम में वेंटिलेशन अच्छा रखना चाहिए। अब देखिए, जब हम बात बच्चों की करते हैं तो हमें बहुत शौक होता है कि हमारा बेटा बहुत छोटा है तो उसको अच्छे वाला ड्रेस पहनाएंगे, बेटी बहुत छोटी है तो उसको हैवी वाली परी वाली ड्रेस पहनाएंगे तभी कहीं लेके जाएंगे। लेकिन भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उन्हें परी बनाने से अच्छा है कि आप उन्हें कम्फर्टेबल रखें, क्योंकि कम्फर्टेबल रहना परी होने से ज़्यादा बेहतर होता है। और हाँ दोस्तों, वर्कआउट या आउटडोर एक्टिविटीज के बाद स्वेटी क्लोथ इमीडिएटली आपको चेंज करने चाहिए। अब काफी लोग होते हैं कि वर्कआउट करके आएंगे, जिम से आएंगे या कोई आउटडोर एक्टिविटी से करके आते हैं या जॉब जाते हैं या बाहर से घर आते हैं नॉर्मली, तो वो अपने कपड़े को चेंज नहीं करते, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा कह सकते हैं सपोर्ट करता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई, आपको बहुत जल्दी स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाई, इंडिया में ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा कॉमन है। अब देखिए, हम नॉर्थ के लोग तो जानते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा होती है यहाँ गर्मियाँ, लेकिन बाकी स्टेट्स का क्या, वहाँ पे क्या हाल चाल है, उसको भी देखते हैं भाई। देखिए दोस्तों, इंडिया में पिकली हीट या घमौरी इतनी कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर घर में किसी ना किसी को ये कभी ना कभी ज़रूर हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हर एक एक इंसान को होता है। हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया का और कोस्टल रीजन का, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है। मई और जून के महीने में टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और ह्यूमिडिटी स्वेटिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसी वजह से पिकली हीट इंडिया में समर सीजन की सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम में से एक मानी जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी बॉय, फैक्ट्री वर्कर, ट्रैफिक पुलिस, जो लोग बाहर काम करते हैं, इन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रूरल एरिया में जहाँ कूलिंग फैसिलिटीज कम होती है, वहाँ घमौरियाँ और कॉमन हो जाती है और अर्बन सिटीज में पॉल्यूशन और ह्यूमिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम भी कई ज़्यादा गुना बढ़ जाती है। यानी आप चाहे गांव के निवासी हैं चाहे शहर के, ये आप दोनों में भेदभाव बिल्कुल नहीं करती, ये लोगों को बराबर ही ट्रीट करती है। चाहे गांव के हों चाहे शहर के, आपको घमौरियाँ ज़रूर हो सकती हैं अगर आपने अपने स्किन का और अपना ध्यान नहीं रखा। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया में घमौरियों के लिए ट्रेडिशनल रेमेडीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे नीम के पानी से नहाना, चंदन का पाउडर इस्तेमाल करना, मुल्तानी मिट्टी लगाना, लेकिन अवेयरनेस तो भाई अब बढ़ रही है कि ये सारी चीज़ें देसी नुस्खे तो काम आते ही हैं, लेकिन हाइड्रेशन, हाइजीन मेंटेन करना और स्किन केयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। तो दोस्तों, पिकली हीट एक कॉमन समर प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करके रख देती है। तो आशा करती हूँ कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपनाएंगे और इस पिकली हीट को दूर भगा देंगे। देखिए, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें हाइजीन की अपनाते हैं, जैसे स्पेशली आप अपने नाखून को कट करके रखें, जो आपके नेल्स हैं उसको जो है एक छोटे लेवल पे रखें, ज़्यादा नहीं, कि अगर आप बाई चांस अपनी स्किन को स्क्रैच भी करते हैं तो स्किन आपकी कट ना जाए, वो थोड़ा सा आप सहला सकते हैं। बिल्कुल खुजलाने को आपको ना तो डॉक्टर कहते हैं और ना ही मैं कहूँगी। साथ ही साथ आप ले सकते हैं नीम के पानी का बाथ, यानी नीम के पानी से नहा सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस और भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। अगर किसी को पिकली हीट है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डॉक्टर के पास जाएँ, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप घर पर कोई नुस्खा अपनाना चाहते हैं, अगर वो थोड़ा सा कम है, तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मुल्तानी मिट्टी का काम होता है आपकी स्किन को ठंडा रखना, और मुल्तानी मिट्टी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी भी मानी जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगोना है, फिर उसका लेप अपनी बॉडी में लगा लेना है और तब तक लगाए रखना है जब तक वो सूख ना जाए। अब कोशिश करें कि जब ये आप लगाएं तो आप ऐसे माहौल में लगाएं जो ठंडी हो, जो ज़्यादा स्वेटी ना हो, नहीं तो पसीना आने के कारण आपकी मुल्तानी मिट्टी कभी नहीं सूखेगी। आप जब भी लगाएंगे तो आपके जो रैशेस होते हैं, जो घमौरियाँ होती हैं, इनको आराम मिलता है और ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। स्किन पे ज़्यादातर आप अगर कोई क्रीम या फिर आप लोशन की मैं बात करूँ तो आप कैलामाइन लोशन यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को ठंडा रखता है और पिकली हीट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों पिकली हीट पे बात। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सनबर्न। जी हाँ, सनबर्न। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है। आप और मैं दोनों को एक काम करना है, वो काम ये है, पानी पीना है। अब देखिए, पानी पीना एक रिमाइंडर आपके लिए हम ही लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारी बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं। तो अगर गौर से सुनते हैं तो सुनिए भाई, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो जल्दी से जाइए, फ्रिज खोलिए, अरे फ्रिज नहीं है तो कोई मटका या फिर कोई नल से पानी लीजिए और पानी को तुरंत पीजिए। जी हाँ, हाइड्रेटेड रहना गर्मियों को प्रॉब्लम्स को दूर भगाने का सबसे पहला जो है उपाय है और सबसे अच्छा तरीका है। ना आपको इससे डिहाइड्रेशन होगा, ना गट प्रॉब्लम होगी, ना स्किन प्रॉब्लम होगी। तो जल्दी से जाइए, पानी पीजिए, स्टे हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे आपसे सनबर्न के बारे में।
14: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
16: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
14: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
16: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
14: जी,
16: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
14: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीबी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
16: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
14: जी,
16: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन न लगना।
14: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख न लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
16: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
14: जी,
16: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
14: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
16: जी आज दीदी,
14: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
16: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
14: जी।
16: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
14: जी,
16: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
14: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
16: जी दीदी
14: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
16: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
14: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
17: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
18: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
18: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
15: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ चुकी हूँ वापस। मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगरी, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं गर्मी से जुड़ी हुई दो बहुत ही बड़ी स्किन प्रॉब्लम की, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, आपका मूड खराब करता है और आपका दिन पूरा ही पूरा बेकार कर देता है। अभी हमने बात की पिकली हीट यानी कि घमौरियों की, और अब हम बात करने वाले हैं सन बर्न की। अब दोस्तों जानते हैं कि ये सनबर्न क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है और कैसे हम इसको अपने आप से बचा सकते हैं। गर्मी का सीजन और धूप का स्ट्रॉन्ग होना एक कॉमन प्रॉब्लम को लेकर आता है, वो होता है सनबर्न। कभी आपने नोटिस किया है बाहर धूप में ज्यादा देर तक रहने के बाद स्किन रेड हो जाती है, जलन होने लगती है और टच करने पर दर्द होता है। बस दोस्तों इसी कंडीशन को तो सनबर्न कहते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सनबर्न तब होता है जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा टाइम तक सनलाइट में, स्पेशली हार्मफुल यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज में रहती है। ये यूवी रेज स्किन के ऊपर ये यूवी रेज स्किन के अपर लेयर को डैमेज कर देती है, बॉडी फिर से उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करती है और इसी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग, बर्न सेंसेशन और दर्द होना भी शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया यूजुअली आपका फेस होता है, नेक होता है, आर्म्स होते हैं, शोल्डर और बैक होती है, क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स डायरेक्टली सनलाइट को फेस करते हैं। और दोस्तों एक मिथ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सनबर्न सिर्फ बीच या फिर फॉरेन कंट्री में ही नहीं होता, बल्कि इंडिया की तेज गर्मी और हार्श सनलाइट भी स्किन को डैमेज कर सकती है और आपको सनबर्न का शिकार करा सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ी टैनिंग नॉर्मल होती है, लेकिन एक्सेसिव सन एक्सपोजर डेंजरस भी हो सकता है। सीवियर सनबर्न में स्किन पील हो सकती है, ब्लिस्टर्स आ सकते हैं और कुछ लोगों को हेडेक, डिहाइड्रेशन, फीवर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर इजी वर्ड्स में मैं आपको कहूँ तो सनबर्न बेसिकली स्किन का एक SOS सिग्नल है कि धूप हद से ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों सनलाइट जरूरी है विटामिन डी के लिए। तो दोस्तों सनलाइट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है विटामिन डी के लिए। आपको सनलाइट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन भाई इसका एक बैलेंस होता है जो आपको बना के ही रखना चाहिए। देखिए दोस्तों सनबर्न सिर्फ टेम्परेरी रेडनेस ही नहीं होता, बल्कि इसका इफेक्ट हमारी स्किन और हेल्थ दोनों पर पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट होता है बर्निंग सेंसेशन। देखिए ऐसा लगता है कि आपकी स्किन लिटरली जल रही हो, किसी ने आपको जलते कोयले पर रख दिया हो। कभी कभी हल्का टच करने पे बहुत ज्यादा पेनफुल भी वो लग सकता है। उसके बाद आती है रेडनेस और स्वेलिंग की प्रॉब्लम। देखिए बॉडी डैमेज को रिपेयर करने के लिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसी वजह से स्किन रेड और वार्म फील करती है। कई लोगों को इचिंग भी होती है और जब स्किन हील होने लगती है तो पीलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब डेड स्किन स्लोली निकलने लगती है। अगर सनबर्न सीवियर हो जाए तो ब्लिस्टर भी डेवलप हो सकते हैं और ये साइन होता है कि स्किन डीप लेवल से डैमेज हो चुकी है। जी हाँ, वो डैमेज जिसे रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी बार आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। और दोस्तों सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि बॉडी भी सनबर्न से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। एक्सेसिव हीट एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन, डिजीनेस और हेडेक भी हो सकता है। चिल्ड्रंस और एल्डरली पीपल में रिस्क और भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनके स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, रिपीटेड सनबर्न फ्यूचर में परमानेंट एजिंग का भी रीजन बन सकते हैं। रिंकल्स, डार्क स्पॉट और अनइवन स्किन टोन भी डेवलप हो सकती है। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में जो लोग बाहर काम करते हैं या जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं वो लोग, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा बाइक से ट्रेवल करते हैं, आपने देखा होगा कि उनके स्किन पे उनकी आधा हाथ बिल्कुल सांवला या फिर काले में होता है और आधा हाथ बिल्कुल गोरा चिट्टा होता है। ये कैसे होता है? जी हाँ, यही रिजल्ट होता है ज़्यादा सनबर्न का। देखिए, सनबर्न अगर बार बार हो रहा है तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जाती नहीं है। चाहे आप कितनी भी ज़्यादा जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ले लें, कितनी भी ज़्यादा आप फेस पैक लगा लें, या फिर आप कुछ भी कर लें, कोई भी देसी नुस्खा लगा लें, ये नहीं ठीक होती। इवन अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे तो वो उनको ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोग को सालों लग जाते हैं तभी ठीक नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। देखिए, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म यूवी एक्सपोजर स्किन कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकता है। इमेजिन करिए कि एक फन पिकनिक या क्रिकेट मैच के बाद आपकी स्किन इतनी बर्न हो जाए कि प्रॉपरली सोना भी डिफिकल्ट हो जाए, अब क्या होगा? अब भाई मूड भी खराब, कंफर्ट भी खराब, और दोनों ही आपका मूड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख देते हैं। अब ना तो आपको रात भर नींद आएगी और ना ही आपको सुकून मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, सनबर्न को सिर्फ हल्का सा टैनिंग इशू समझकर इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। आखिर सनबर्न से बचा तो जाए कैसे? देखिए सनबर्न से बचने का सबसे पहला रूल है अवॉइड हार्श सनलाइट। जो हमारा दुश्मन है उसके कांटेक्ट में आइए ही नहीं, स्पेशली आफ्टरनून में। जैसे आप 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में यूवी रेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो आप अवॉइड करिए इस दौरान कहीं भी बाहर निकलने में या फिर डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से। अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो अम्ब्रेला ले लें, कैप ले लें, या फिर सनग्लास का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। साथ ही साथ जब आप बाहर निकले तो दोस्तों सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सनबर्न, घमौरी से तो बचाएगी ही बचाएगी, बल्कि आपको स्किन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी बचा सकती है। और एक फ़ायदे की बात बताऊँ, अरे हाँ, वही बोनस की बात ये है कि भाई अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं ना तो आपकी स्किन जल्दी एज भी नहीं होगी, यानी आप जल्दी बूढ़े नहीं लगेंगे, जल्दी रिंकल नहीं आएंगे और स्किन आपकी वही चमकदार बनी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए आजकल डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि कम से कम आप SPF 30 का यूज़ ज़रूर करें। अगर देखिए 30 के नीचे तो आपको बिल्कुल नहीं आना है, 30 या फिर 30 के ऊपर की ही सनस्क्रीन आप यूज़ करें। अब कई लोग सोचेंगे सनस्क्रीन ये तो बहुत महंगा आएगा, हमारे बजट में तो नहीं आएगा। देखिए, सनस्क्रीन हर बजट में हमारे मार्केट में अवेलेबल है, बस आप यूज़ करने वाले तो बनिए, आपको सनस्क्रीन भी मिल जाएगी। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं, देखिए लोग सनस्क्रीन जो है सिर्फ अपने फेस पर लगाते हैं, आर्म्स और नेक और ईयर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप अपनी उम्र के 50 या 55 वाले स्टेज पे हैं, अब आपकी स्किन तो जवां दिख रही है, बिल्कुल यंग, लेकिन आपके नेक, ईयर्स और हाथ वो तो बिल्कुल 45 नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप 70 से 80 साल के बूढ़े इंसान हो। तो ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा कि भाई शक्ल से ही जवान है, बाकी बॉडी से बूढ़ा हो चुका है। ये अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं ना, तो आप सनस्क्रीन अपने कान, अपने नेक, अपने आर्म्स या जो एरिया सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है वहां पे आपको ये जरूर लगानी चाहिए। लूज और फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचाता है, आपकी बॉडी को ब्रीद करने के लिए जगह मिलती है और ये आपको कूल रखने में भी मदद करता है। साथ ही साथ हाइड्रेशन इसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पानी पीना, कोई जूस आप पी सकते हैं, कोकोनट वाटर, बॉडी को कूल रखने के लिए और हाइड्रेटेड रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हल्का सा सनबर्न हो जाए तो आपको कोल्ड कंप्रेस और एलोवेरा जेल काफ़ी सूदिंग फील करा सकते हैं और ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, देखिए सनबर्न स्किन जो होती है वो एग्रेसिवली रब या स्क्रैच बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर आप इसे खुजलाते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रैच करते हैं, तो देखिए वो स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और अगर आपने स्क्रैच कर दिया तो भाई और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। चिल्ड्रंस के लिए एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी स्किन अडल्ट के कंपेरिजन बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में, स्टाइल के साथ प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, वरना धूप स्किन को पनिशमेंट दे सकती है, और इस पनिशमेंट से बचना है तो अपना ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों, इंडिया में सनबर्न काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, स्पेशली समर सीजन में। हमारी कंट्री में ट्रॉपिकल क्लाइमेट और कई सिटीज़ में टेम्परेचर 40 डिग्री के भी ऊपर चला जाता है। स्ट्रॉन्ग सनलाइट और यूवी एक्सपोजर डायरेक्टली स्किन को अफेक्ट करते हैं, और बीच एरिया जैसे कि गोवा हो गया, कोस्टल रीजन में टूरिस्ट और आउटडोर वर्कर्स में सनबर्न ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की एक्सट्रीम हीट भी किसी से कम नहीं है, वो आपको सनबर्न तो देगी ही देगी, साथ ही साथ उसके साथ सोने पे सुहागा घमोरिया भी हो जाएंगे। अब ये जो डबल प्रॉब्लम है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, जिससे आपको बचाने की जिम्मेदारी आपकी खुद है। देखिए, आप जब तक अवेयर नहीं होंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो भाई आपका ख्याल और रखेगा ही कौन? फार्मर्स, ट्रैफिक पुलिस, डिलीवरी वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये जो लोग लॉन्ग आवर्स तक आउटडोर काम करते हैं, उनमें सनबर्न का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। आजकल यंगस्टर में भी ये इशू कॉमन होता जा रहा है, बिकॉज आउटडोर स्पोर्ट, ट्रैवलिंग और लॉन्ग बाइक राइड का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। हर इंसान चाह रहा है कि भाई जल्दी से बाइक उठाएं, बाइक में पेट्रोल आ जाए, बस पूरे शहर की गिड़ियां तो हम ही मारेंगे। लेकिन अगर ये आप गर्मी में सोच रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप सीधा सीधा न्योता दे रहे हैं स्किन प्रॉब्लम को। इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले इंडिया में लोग सनबर्न को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है और डर्मेट्स रेगुलरली यूवी प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता रहे हैं। अब बताना सिर्फ ऐसे थोड़ी ना कि आपको उसे बताए जा रहे हैं आप सुन के चले आ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल करना है सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन इज अ मस्ट। जैसे ही पानी आपके लिए ज़रूरी है ना, वैसे ही सनस्क्रीन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, पॉल्यूशन भी इन प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा गंदी स्टेज पे लेके आ सकता है। गंदी स्टेज का मेरा मतलब ये है कि आपको सनबर्न तो होगा ही होगा, अगर आपने स्क्रैच किया तो आपको इरिटेशन होगी और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और कहीं आपको घमोरियाँ भी हो गई, और साथ ही साथ आपने सनस्क्रीन भी नहीं लगा रखी है, तब भाई आपकी स्किन तो अब राम भरोसे हो गई, अब इसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। तो इतनी गंदी स्टेज पर जाने से अच्छा है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें। पानी और सनस्क्रीन, ये दो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस गर्मी में। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमारे भारत में एक चीज बहुत ज्यादा कही जाती है कि जो गोरे लोग होते हैं ना, अरे जिनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गोरे लोग होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा लॉस में होते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा लॉस में। और हम इंडियंस का जो ज़्यादातर स्किन टोन होता है, जो गेहूं या फिर सांवला रंग का होता है, वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं। वो प्रॉफिट ये होता है कि देखिए, गोरे लोगों के अंदर एक केमिकल होता है। तो देखिए, गोरे लोगों की जो स्किन होती है वो बहुत जल्दी यूवी रेज को अट्रैक्ट करती है, सनबर्न होता है, घमौरिया होती है, खुजली होती है, और गोरे लोगों में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू डार्कर स्किन टोन, चाहे वो गेहूं रंग का हो या फिर सांवले रंग का हो। तो बधाई हो भाई, अगर आप गेहूं रंग के हैं या सांवले रंग के हैं, और अगर आपको कोई कहे ना कि भैया तुम तो सांवले हो, तुम क्या ही कर लोगे, तो भैया हमें भगवान ने सबसे ज़्यादा अच्छी स्टेज पर रखा है, कि हमें सूरज से होने वाली प्रॉब्लम से बचा रखा है, उनका रिस्क हमारे अंदर कम होता है। तो आप अपने लिए स्टैंड लेना बिल्कुल ना भूलें, जब कोई आपको आपकी स्किन के जरिए आपको कम आके। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट चीज की तरफ। अब देखिए भैया, हम भी यूपी के, आप भी यूपी के, अब यूपी में आए हैं तो यूपी की स्पेशल, अब यूपी में हैं और यूपी के स्पेशल चीज के बारे में ना बात करें, वो कैसे हो सकता है? अब स्पेशल चीज़ हमारी बहुत सा, किन किन चीज़ों के बारे में बात करें? अब देखिए भाई, समर स्पेशल हम चीज़ों की बात करते हैं। देखिए, गर्मियों में सनस्क्रीन तो लगाना ही चाहिए, पानी भी पीना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। नहीं पता? मैं बताती हूँ, हमारा ब्रह्मास्त्र है गमछा। अब ये गमछा क्या होता है और गमछा का रोल क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने ही रहना है हमारे साथ, क्योंकि अब बात होने वाली है हमारे उत्तर प्रदेश की। अब भाई देखिए, हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी खासियत, उस पे बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे गमछा पे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ, और इतनी लंबी बातचीत के बाद पानी पीना जरूरी है, ठीक है? लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे बात करते हैं इस विषय पे।
14: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में, और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
16: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे, और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
14: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
16: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
14: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
16: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
14: जी,
16: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगी तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
14: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
16: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
14: जी
16: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहां स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच कम है, वहां जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
14: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
16: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है, क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
14: जी।
16: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
14: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने, मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
16: आकांक्षा जी, यह बहुत गंभीर खतरा है
14: जी।
16: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पर सुन्न हो सकते हैं
14: जी,
16: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है, जो सबसे बड़ा नुकसान है।
14: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
16: जी जरूर
14: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में, स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
16: आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया
14: जी।
16: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
14: जी,
16: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
14: जी।
16: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
14: जी,
16: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
14: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
16: आकांक्षा जी, उनकी भूमिका सबसे अहम है
14: जी।
16: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
14: जी।
16: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
14: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
16: देखिए खानसा जी
14: जी,
16: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
14: जी,
16: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
14: जी,
16: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
14: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
16: आकांक्षा जी बहुत सही सवाल है आपका
14: जी।
16: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
14: बिल्कुल,
16: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
14: बिल्कुल,
16: याद रखिए बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
14: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
16: जी आकांक्षा जी।
14: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
16: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है
14: जी।
16: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
14: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
16: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है
14: जी। अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
16: देखिए आकांक्षा जी
14: जी,
16: मेरा संदेश बहुत साफ है
14: जी।
16: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
14: जी।
16: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
14: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला
16: जी। धन्यवाद मैम आप।
14: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
5: वेलकम बैक लिसनर, आज की वापस में आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम बात करते हैं अपनी सेहत की आपके अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। अब देखिए स्वास्थ्य संगिनी में आज हमने बात की पिकली हीट यानी घमौरियों की, साथ ही साथ सनबर्न जैसी गंभीर बीमारी जो हमें कैंसर तक ले जा सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे यूपी पे। अब देखिए भाई, हमारा यूपी बिहार या फिर जो हिंदी बेल्ट के रीजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाके होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन हम लोग बड़े जिद्दी भी होते हैं। लेकिन हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र भी है जिसके बारे में हमने लास्ट लिंक में बात की थी, वो है गमछा। अब आप सोचेंगे गमछा का गर्मी से क्या लेना देना है? अरे बहुत बड़ा रीला देना है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो गमछा होता है ना वो यूजुअली सफेद कलर में होता है, और जो सफेद कलर होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए हमेशा आपने ये सुना होगा कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, अगर आपके घर में पेंट हो रहा है और आप गर्मी वाले इलाके में है तो हल्के रंग का पेंट कराना चाहिए, यानी हल्के रंग आपको बहुत ज्यादा

0: कंट्रोल में नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो सोचते हैं स्किन के डॉक्टर तो कुछ भी नहीं है, वो बस सर्जरी करने बैठे हैं या फिर क्या ही करने बैठे हैं, उनको तो कोई महत्व देता ही नहीं है। लेकिन भाई ये जो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे में आग के छोड़ देते हैं ना, ये आपको कैंसर तक बड़ी बीमारी और भी काफ़ी सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ ले जा सकता है। तब आपके पास कौन होगा? वही डर्मेटोलॉजिस्ट जिसको आप बहुत कम आंकते हैं और सोचते हैं ये क्या ही कर लेंगे। अगर आपको और आपके अपनों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर जाएं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जिसे हम स्किन के डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, और अपने स्किन का अच्छे से इलाज कराएं। देखिए और भी काफी सारी चीजें हैं जो गर्मी के बारे में आपको जाननी चाहिए। जाननी है? अरे मैं बताऊंगी भाई, लेकिन आज नहीं। देखिए आज घड़ी ने दे दी है हमें इजाजत, लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में अगले शनिवार, और लेकर आऊंगी काफी सारी चीजें जिसके बारे में आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा, जिसके बारे में आप अभी तक बिल्कुल अनजान होंगे, लेकिन आपको जानकारी पहुंचाने में, आपको अवेयर करने के लिए हम बिल्कुल, हमने ये बीड़ा अपने सर पे उठा रखा है, आपको अवेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल जाना पड़ेगा। लेते हैं आपसे विदा, आशा करती हूँ कि आप सबने इंजॉय किया होगा, सीखा होगा, और इस चीज को सीखने के बाद अपनी जिंदगी में लागू भी करेंगे। फिलहाल चलते हैं और छोड़ जाते हैं आपको आपके रेडियो ज्ञानस्थी 89.6 FM के साथ। आप अपना और अपनों का जरूर ध्यान रखिएगा इस गर्मी में।
1: हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनेस्ले 89.6 FM, गुंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की, जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
5: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करें।

0: सकते हैं NBSU, यानी ये क्या है भैया और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
1: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
0: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
1: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
0: अच्छा।
1: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
0: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
1: बहुत सारी,
0: जैसे?
1: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
0: जी।
1: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका तो लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश यही रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम ही दे दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी ललिता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललिता जी।
1: जी थैंक यू मैम।
0: जब कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवारजनों के मन में डर और सवाल होता है, खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से, जिससे लोग उलझ जाते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब भी देंगे। तो हमने बहुत सारे सवाल वैसे तो इकट्ठा कर लिए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे भी, यानी कि हम उन सवालों को रखेंगे और उसके बाद में हम जवाब प्राप्त करेंगे अपनी ललिता जी से। तो ललिता जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है?
1: जी आकांक्षा जी, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर से बचाव में मदद करता है। यह कैंसर महिलाओं में होने वाली पहली गंभीर बीमारी, जो स्तन कैंसर का रहा, उसके बाद अब ये पैर पसार रहा है सर्वाइकल कैंसर। इसीलिए सरकार ने HPV वैक्सीन को मुफ्त करा दिया है। वैसे तो पहले ये निजी अस्पतालों में लगाए जाते थे, लेकिन ये बहुत महंगे होते थे, पर ये अब सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि आम जनमानस तक इसे पहुंचाया जा सके। और अगर सही समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है।
0: अच्छा, तो ये बात है। अब एक सवाल और है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है?
1: जी आकांक्षा जी, बिल्कुल सुरक्षित है। यह दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगाने के बाद हाथ में हल्का दर्द, हल्की सूजन, बुखार, सिरदर्द, चक्कर आ सकते हैं, ये सामान्य बातें हैं, और आमतौर पर जल्दी ठीक भी हो जाते हैं।
0: मतलब ये सारी जो भ्रांतियां हैं कि HPV का जो टीका है वो सुरक्षित नहीं है, ये केवल भ्रांतियां हैं।
1: जी, ये केवल अफवाहें हैं।
0: जी, अब आपसे एक और सवाल करूंगी मैं ललिता जी, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव भी होता है?
1: आकांक्षा जी, गंभीर दुष्प्रभाव तो दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें, और कोई चिंता हो तो आशा, ANM, CHO या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके बात कर लें।
0: अच्छा, अब एक और सवाल है ललिता जी आपसे, कि ये जो टीका है बच्चियों को ही क्यों लगाया जाता है?
1: जी, ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने।
0: जी,
1: क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण न बन सके, ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए यह टीका लगाया जाता है।
0: काफी जरूरी है इसका मतलब।
1: जी,
0: अब बताइए कि क्या इससे भविष्य में, जो सबसे बड़ी अफवाह है हमारे समाज में देखी जाती है, कि भविष्य में माँ बनने पर कोई असर पड़ता है?
1: नहीं, HPV टीका माँ बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। यह कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन, कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये खाली अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दें।
0: अब ये बताइए कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं?
1: हर बात सही नहीं होती।
0: जी,
1: कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें।
0: अब आखिरी सवाल आपसे मैं रखूंगी, टीका कब और कहाँ लगेगा?
1: इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललिता जी।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। और हाँ, सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकासेंदु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद सुजाता जी।
3: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
4: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
3: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
4: देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटरबॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशुजनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
3: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर,
4: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
3: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
4: देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
4: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोएं बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
3: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
4: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
3: सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
4: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जाँच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
4: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है, और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विघर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
4: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
4: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
4: नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
4: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते सकते हैं, और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
3: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
4: सही जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
3: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
4: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है, और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
3: बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो, और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास सेनू सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
3: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ सुजाता स्मार्ट NGO से, और मैं हूँ इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर RCH UP। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
9: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट NGO का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको एक हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
3: सर सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
9: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
3: सर अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
9: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी ANM बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए, डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ OPV की वैक्सीन भी पिलाई जाती है, और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जो अब काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल IPV लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग DPT की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और JE की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो DPT वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग TD का वैक्सीन लगाते हैं।
3: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
9: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो TD टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
3: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
9: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
3: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
9: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
3: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
9: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक NM होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5,000 से 6,000 की आबादी पे NM होती हैं, और हर एक 1,000 की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1,000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है, और इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
3: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियाँ होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
9: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफ़ी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पर दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज़ हमें समझाने की ज़रूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों के भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीज़ों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पर वाइड स्तर पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए। और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
3: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
9: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है। और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज़्यादातर चीज़ें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज़्यादातर ये साइलेंट रहता है। और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है। और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
3: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
9: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज जे अंशिका। भाई, दो दिन से, तीन दिन से तो हम बार बार आरजे अंशिका की जगह पर मैं निधि बोल रही थी, और बार बार निधि बगल में बैठी होती थी, लेकिन बार बार मुंह से अंशिका ही निकलता था। उसका कारण अभी अंशिका आपको खुद बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन उसके लिए मैं बता दूं आपको कि आज हमारे साथ अंशिका आ गई हैं, तो मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ, जैसे लगता है ना कि घर में जब सास होती है और बहू मायके चली जाती है तीन दिन के लिए, बहुत काम करना पड़ता है, तो आज उसके बाद जब वो आ जाती है तो सास को लगता है यार आज हम सांस चैन की सांस लेंगी वो सांस। तो आज वही मैं फील कर रही हूँ, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि अंशिका आ गई है। तो अंशिका अपनी आवाज सुना दो,
7: जी मैम,
6: हम आगे प्रोग्राम शुरू करें।
7: वेरी गुड, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जांपल। और दूसरी बात कि मैम मेरा नाम बार बार इसलिए ले रही थी क्योंकि वो मुझे बहुत मिस कर रही थी।
6: हाँ, exactly मिस कर रहे थे। मतलब जैसे एक जैसे कहते हैं ना, किसी चीजों की, किसी सामान की, किसी एक इंसान की आदत पड़ जाती है, तो आई होप सो कि ये आदत आपको भी पड़ी रहे हमारी।
7: बिल्कुल,
6: जब मैं नहीं होती हूँ तो आप भी हमें उतना ही मिस शायद करती होंगी, आई डोंट नो, बट हाँ, मेरे मुंह से बार बार अंशिका ही निकल रहा था। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी? दीपांशी जी, नागेश्वर जी, और भी नीना जी तो सुबह आई थी, प्रीति जी अभी नहीं आई है, तो भाई जल्दी से आ जाइए सब लोग, क्योंकि हम लोग आ गए हैं। और जी हाँ, बिल्कुल, दरवाज़ा खुल चुका है और हमने अपने दीदार आपको दिए हैं और आपके दीदार हमें भी मिल चुके हैं। तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
7: सुन सहेली
6: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: बिल्कुल,
6: एंड डिस्टरबेंस बहुत है यहाँ पर, और लेकिन हम लोग उस डिस्टरबेंस को चीरते हुए हम अपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के हम आपके साथ फिर से आ गए हैं, और एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे,
7: शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और बिल्कुल आ गए हैं हम, और आज तो भाई हमारा सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे है, और सैटरडे होने वाला है शानदार। शानदार इसलिए क्योंकि यह ना कि जोड़ी की जो कमी थी वो हमने पूरी कर ली है। और जब हम हैं, जब हम कहते हैं ना, तो उसमें दो चीज़ लोग मिक्स होते हैं कि मैं और तुम, यानी कि हम हैं, तो जब हम हैं तो फिर क्या गम है, कोई गम नहीं है आपको, आपको सिर्फ मस्ती मस्ती मस्ती और ओनली मस्ती मिलने वाली है।
6: नागेश्वर जी कह रहे हैं कि आज स्टूडियो में लग रही है सास बहू की जोड़ी।
7: सास नागेश्वर जी,
6: यस, एक के एक एक बाद में, ठीक है, वो लाइक कर रहे हैं, तो यस, एक एक बाद में, तो थैंक यू सो मच। और बड़े दिनों बाद मुझे टॉम एंड जेरी का खिताब मिला था, जब मेरे साथ कोई और काम था यहाँ पर साथ में था, एंड उसके बाद मुझे एक क्रूर वाली आरजे बोला गया, एंड उसके बाद मुझे एक प्रिंसिपल बोला गया
7: एंड
6: उसके बाद मुझे एक बहुत शालीनता वाली सीनियर आरजे बोला गया एंड आज फाइनली मुझे बोला जा रहा है सास, और ये है मेरी बहू। ठीक है, तो सास बहू की बॉन्डिंग आजकल हर घरों में बहुत अच्छी
7: सी। वैसे सास में मैं लकी हूँ।
6: क्यों?
7: क्योंकि मेरी सास खड़ूस नहीं है।
6: खड़ूस नहीं है ना,
7: नहीं।
6: ज्यादा काम नहीं कराती है। हाँ, तो ऐसे ही आजकल की मॉडल सास है ना, मॉडर्न
7: मॉडर्न
6: मॉडर्न।
7: वो क्या पहले एक आता था, एक थे गुड्डन,
6: गुड्डन
7: उसके स्टाइल की सास हुआ,
6: उसके स्टाइल की सास है। मतलब क्या, मतलब सास को क्या सासे नहीं होती हैं? वो मॉडर्न नहीं बन सकती हैं?
7: नहीं, बिल्कुल बन सकती है मैम,
6: ना बिल्कुल बन सकती है ना। तो मैं आज के युग की सास हूँ। तो चलिए भाई, आप लोगों की सांसें रोकने के लिए आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं सबसे पहले तो लव पोयम, उसके बाद रियल फैक्ट्स ऑफ

0: थैंक यू सो मच
1: जी।
2: और आपसे और अंकिता मैडम से भी कहना है
0: जी जी जी,
2: बना के रस में मुलाकात को सदा रखना
1: जी,
2: और बिछड़ भी जाए आप दोनों तो ख्वाबों का सिलसिला रखना।
0: वाह
1: अरे बाप रे,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मतलब इसके लिए तो आपके लिए ना मैं बताऊं इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए मैं क्लैपिंग यहाँ पर हमारे पास एक पीसी में क्लैपिंग का एक मोड होता है, तो सुनाई दे रहा है आपको?
2: जी जी सुनाई दे रहा है।
1: सुनाई दे रहा है ना, तो आप क्लैपिंग सुन लीजिए और ये आपके लिए पीसी पे क्लैपिंग हमने बजा दी है और ये क्लैपिंग चलती रहेगी तब तक जब तक आप एक और शायरी नहीं बोलेंगे।
2: अरे बोल देंगे मैडम
1: जी, बताइए।
2: सलामत रहेंगी दुआ हम करेंगे
1: जी,
2: और खुदा के करम से सदा खुश रहेंगी।
0: अरे वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
1: हम दोनों के लिए इतनी ब्यूटीफुल सी दुआ है मुमताज। एक मिनट हाँ मैं वो लगा रही थी बीजीएम जी, अंसारी जी, तो थैंक यू सो मच। वाकई में ना आज मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया सी, दीपांशी कह रही है कि कुछ दिनों से श्वेता मैम की बहुत याद आ रही है, और आज पता है कि आज ना उस वो दिन मुझे याद आ गया कि हमारे साथ श्वेता थी, आज श्वेता थी, तो उनकी और हमारी जोड़ी को भी ऐसे ही बहुत प्यार से नवाजा जाता था और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस आते थे, लेकिन आज उस कमी को आपने पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू
2: मैडम।
1: चलिए तो मुमताज अंसारी जी, मैं चाहती हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल सी लाइन आपने हम लोगों के लिए बोली है दो दो बार, तो एक कोई गाना बता के जाएं अपनी पसंद का ताकि हम आपको सुना सके, ये एक प्यारा वाला बोनस
0: हमारी तरफ से।
2: जैसे आप लोग नहीं थी मैडम
1: जी,
2: तो आप एक मेरे पसंद का एक गाना सुना दीजिए
1: जी।
2: मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है।
2: क्या किया तेरा नाम लिया।
0: थैंक यू सो मच।
2: तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। जी मैडम,
1: तो हम लोग अब पहले ये गाना प्ले करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने शो की ओर, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे हमारे साथ मुमताज अंसारी जी, और बहुत ही बढ़िया इंसान लगे भाई बात करने,
0: मतलब वाओ।
1: मैंने तो अंशिका, हम लोग कॉल जल्दी उठाते नहीं है।
0: हाँ मैम,
1: हम लोगों को लगता है कि उनको एक बहुत अच्छा सा मैसेज दे, मतलब अंशिका कहती है मैम आप ही फोन उठाओ और आप ही बोलो, क्योंकि तुरंत वो बोल देती है कि मैम आप कॉल करो, और कॉल जिसकी आती है और आप बोल दीजिए कि 3 बजे के बाद ही कॉल करें, जो कि हमारा जो कि शो होता है जिसमें हम लोग कॉलिंग लेते हैं। एक वाइब्रेशन चल रही है। वाइब्रेशन हो रही है ना।
0: यस मैम,
1: अब लग रहा है किसी की फोन आ रही है फिर से। तो भाई आज मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला फोन वाला ही चलना चाहिए, तो कॉलिंग कर ही लेते हैं आज।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उसके पहले हम अभी मुमताज अंसारी जी का जो गाना उन्होंने हम दोनों को डेडिकेट किया है वो सुना देते हैं, और उसके बाद में
0: उसके बाद आएंगे हम प्यारी सी पोइट्री लेकर के आपको सुनाएंगे। और प्यार आज बड़ा ही प्यारा एहसास है, जैसे कि हम हर सैटरडे को लेकर के आते हैं, और आज प्यार की जो परिभाषा है वो अभी अभी हमारे जो लिसनर जो हमारे साथ बात कर रहे थे उन्होंने बहुत प्यार से समझा दिया कि प्यार वाकई होता क्या है। मतलब कैसे उन्होंने बताया कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे और दोनों, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैम कि सैटरडे की प्यार वाली शुरुआत हो गई है।
1: थैंक यू सो मच लिसनर्स, और ऐसे ही एक प्यार सम्मान की तरीके से, क्योंकि ज़रूरी होता है कि एक सम्मान की दृष्टि से हमें देखा जाए। और ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुन सहेली में मैं जब से बैठी हूँ मेरे साथ किसी भी लिसनर ने, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कभी भी कभी कोई ऊटपटांग बात नहीं बोली है अंशिका
0: जी मैम।
1: तो मुझे बड़ा इस बात का गर्व है, और यही प्यार और सम्मान, स्पेशली सम्मान हमेशा आप लोग बनाए रखिएगा हम लोगों के लिए, हम दोनों के लिए। तो चलिए ज़्यादा भाषण नहीं देना है, क्योंकि आज के दिन हम लोग पहले से ही सोच के आते हैं कि ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, आज के दिन केवल और केवल आप लोगों के लिए सॉन्ग्स ही बजाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो और एक्चुअली सैटरडे मीटिंग होती है हम लोगों की, एक इंटरनल मीटिंग होती है जिसमें हम सभी आर्जेस मिलते हैं, तो मैं आज इस बात को ज़रूर रखेंगे हम लोग अंशिका कि आज ऐसा ऐसा हमारे साथ सुन सहेली में हुआ।
0: बिल्कुल मैम।
1: तो आज की बात, आज आपके इस

बिहेवियर को, आप लोगों के प्यार को हम लोग आज मीटिंग में ज़रूर शेयर करने वाले हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आगे भी ये प्यार और सम्मान हम सभी पर ऐसे ही आपका बना रहे। थैंक यू सो मच। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
0: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो जो कि है सुन सहेली। और सुन सहेली भाई हमारा आज है सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे स्पेशल। और जब बात होगी हमारे सैटरडे की यानी कि प्यार वाले दिन की, आज हम बात करते हैं प्यार की। कुछ बात करते हैं ऐसे एहसासों की जो दिल से जुड़े हैं और दिल से बहुत ही ज़्यादा अजीज होते हैं हमें। मतलब प्यार बहुत ही प्यारा सा वर्ड, तो हम कहते हैं ना ढाई अक्षर प्रेम के। क्या पढ़ा अगर ढाई अक्षर आपने कभी प्रेम के नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़ा। बट ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि प्यार को पढ़ते हैं, प्यार को समझते हैं, प्यार को जानते हैं, फिर भी कुछ इसके एहसास से अछूते रह जाते हैं। अछूते रहने का मतलब होता है कि हम नहीं जान पाते हैं कि हमें लगता है हमने प्यार कर लिया तो सब कुछ हो गया। पर प्यार करना ही सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं होती, प्यार को निभाना होता है, प्यार को समझना होता है और उसके एहसास में थोड़ा सा आपको डूबना भी होता है। कहते हैं ना ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। क्यों मैम? बिल्कुल बहुत धीरे से आया है।
1: अरे हम यहाँ डूबे खड़े, हम तो यहाँ पर डूब के एक बार फिसले हैं, निकले हैं, फिर गिरे हैं, फिर संभले हैं, फिर अब जंजीर पकड़ के अब चल रहे हैं उसमें।
0: अब डूबना नहीं है,
1: अब दरिया में हम जंजीर पकड़ के, वो जब आप हरिद्वार जाइए
0: जी जी घाट
1: पे वो जंजीर पकड़ के नहाते हैं ना, तो जंजीर पकड़ के अब मैंने टाइट वाली जंजीर पकड़ ली है कि डूबना नहीं है, गिरना नहीं है। मतलब अगर डूबना है फिर भी डूबेंगे तो जरूर, लेकिन अब जंजीर
0: संभल करके थोड़ा सा
1: डूबेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की पोयम लेकर के आए हैं जो कि है धड़कन का एहसास। तो हमारी धड़कन का एहसास,
0: किसकी धड़कन का एहसास?
1: मेरी धड़कन का एहसास किसी अच्छा, को नहीं है तो वो मैं जताना
0: वो कराना चाहती
1: जी।
0: ओके,
1: दिल की इस वीरान जमीन पर तुम बन के आए बहार, हर धड़कन में गूंज रहा है बस तुम्हारा ही प्यार। खो गए इन आँखों में हम जैसे कोई है मीठा ख्वाब, दूरियों का अब कोई डर नहीं, तुम ही हो मेरे हर सवाल का जवाब। सांसों में घुली है खुशबू तुम्हारी, तुमसे ही रोशन है दुनिया हमारी। हाथों में तेरा हाथ रहे उम्र भर, बस इतनी सी ख्वाहिश है अब हमारी।
0: ओ माय गॉड, मतलब वाओ, जैसे हम कहते हैं ना कि गागर में सागर भरते हैं, मतलब कम शब्दों में आप अपनी फीलिंग्स को किस तरह बहुत बेहतरी से बयां करते हैं, तो मैम ने बहुत ही अच्छे से बयां की। और एक एक लाइन ऐसी लग रही थी जैसे जब कोई बात सीधा दिल से निकलती है तो फील हो जाती है ना, वैसी फील हो रही थी। तो बहुत ही प्यारी पोएट्री, और जिन्हें भी ये सारी अपनी लाइफ में चीज़ें चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, वो उनकी लाइफ में धड़कन का एहसास उन्हें ज़रूर मिले, वो जिसे चाहते हैं वो ज़रूर मिले, ऐसी ही दुआ है। तो चलिए अब पोइट्री तो आपने अभी अभी पढ़ी, अब हम आते हैं आज के दूसरे वाले पॉइंट पर जो कि हमारा है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
1: बिल्कुल,
0: तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ वो बताएंगे, और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हमारा आज का जो है वो ये कहता है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि आजकल हम देखते हैं ना कि आजकल प्यार भी एक ट्रेंड हो गया है। लोग कहते हैं अरे मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव सो मच, आई लव यू, आप सुनते हैं बहुत लोग एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन वो पता है सिर्फ शब्द बन जाते हैं। आजकल स्पेशली यूथ में ये ट्रेंड्स है कि शब्द बन जाते हैं, हम सिर्फ प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ बारी आती है कि आपको प्यार निभाना है, उसकी जो रियलिटी में जो एक जिम्मेदारी है, हम हमेशा कहते हैं ना कि हम प्यार का बहुत अच्छा वाला एक पहलू देखते हैं कि अरे वो उसकी बहुत केयर करेगा, वो उसे बहुत प्यार करता है, ये वो, तो वो आप एक अच्छा वाला उसका साइड देख रहे हैं, लेकिन प्यार की साइड कई बार एक थोड़ा सा नमकीन वाला भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना मीठे में नमकीन का स्वाद, तो मीठे में इस प्यार से एहसास में नमकीन का स्वाद तब आता है जब आपको उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। जिम्मेदारियों का मतलब है मान लीजिए कोई इंसान है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो आपको लेनी पड़ेंगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है कि हम उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है क्या पसंद है क्या नापसंद है, हमारी किस बात से उसे तकलीफ़ होती है, किस बात से अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तब आप अपने प्यार को एक लंबे लॉन्ग टाइम तक ले जा पाएंगे, एक अच्छा रिश्ता बना पाएंगे। लेकिन कई बार हम बस इन जिम्मेदारियों से हट जाते हैं कि नहीं यार मुझे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, मुझे अपने रिश्तों में ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेनी। तो जो अपने रिश्तों में ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेते हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी अपने रिश्तों को खो देते हैं। इसलिए रिश्तों में जिम्मेदारी पहले होनी चाहिए और प्यार बाद, क्योंकि प्यार कम होगा तो चल जाएगा, बट जिम्मेदारियां अगर कम हैं तो वो नहीं चलेंगी।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो 100% है। तो इसी रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बाद में मेरे स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा गाना आया है कि हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। तो ये गाना डेडिकेट समवन स्पेशल। आइए सुनाती हूँ इस प्यारे से गीत को और उसके बाद हम आएंगे आज का लव राशिफल लेकर के, नहीं OTT सीरीज के बारे में बताएंगे एंड देन आपको बताएंगे आज का लव राशिफल जो कि बहुत ही अच्छा वाला होने वाला है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: आगे आपकी आदि समता एंड साथ में है आरजे अंशिका। चलिए फटाफट जान लेते हैं आप ओटीटी सीरियल्स के बारे में, एंड देन उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि होना है लव राशि फल और साथ ही साथ में आपका फेवरेट सेक्शन यानी कि गेम।
6: बिल्कुल, चलेंगे लव राशि फल की तरफ, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज भाई दिन है प्यार का, और प्यार के दिन अगर बात ना हो कृष्ण और राधा के पवित्र प्रेम की तो कुछ अधूरा रह जाता है। तो आज ओटीटी में आपको बताते हैं, बहुत ही एक अच्छी है ये, आप सीरीज़ कह लीजिए, सीरीज़ ही कहिए क्योंकि बहुत ही प्यारी सी है ये, जो कि है कृष्ण अवतारम पार्ट वन,
5: ओके,
6: द हार्ट। ये बहुत ही प्यारी सी है और इसमें ये दिखाया गया है कि ये इसी साल रिलीज़ हुई है, अभी जल्दी, अमूमन 10 दिन पहले। और इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से भगवान कृष्ण जो हैं, जब वो वृंदावन से निकलते हैं, और फिर राधा और कृष्ण का अटूट प्रेम क्या है। क्यों कहा जाता है कि प्यार की नई रीत पूरे जग को सिखाती है राधा और कृष्ण की प्रीत। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ लिया जाता है, क्यों उनका प्रेम इतना अटूट है कि उनकी पत्नी, जैसा कि सभी जानते हैं कि रुक्मणी जी उनकी कृष्ण की पत्नी थी, लेकिन फिर भी आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, या कोई किताब भी अगर आप भगवान कृष्ण के बारे में उठाते हैं तो उसमें राधा और कृष्ण का ही एक पहला वर्णन होता है। तो क्यों है ये जानने के लिए, और थोड़ा सा इसमें आप जुड़ सकते हैं अध्यात्म से भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमारे मन को एक शांति भी मिलती है। तो काफ़ी कुछ है, आप इसको देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, अमेज़ॉन प्राइम पे, और बहुत ही अच्छी है। और मैं बता दूं कि हमारी यूपी में ये टैक्स फ्री भी है, यानी हमारी यूपी में अगर आप थिएटर्स में देखने जाते हैं तो टैक्स फ्री है, टैक्स भी नहीं होगा।
5: okay.
6: तो जरूर देखें और एंजॉय करें।
5: कौन सी मूवी है?
6: राधा कृष्ण,
5: राधा कृष्ण
6: यानी सॉरी कृष्ण अवतारम पार्ट वन द हार्ट, बहुत ही प्यारी मूवी है, तो जरूर देखिए और एंजॉय करिए। एंड आई होप कि आप सभी को ये अच्छी लगेगी। जिन्होंने भी अब तक इसका टीज़र देखा है उन्हें तो बहुत पसंद आया है, और आप सबको भी बहुत पसंद आएगा, बस थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के समझने की ज़रूरत है।
5: ओके.
6: अब आते हैं प्यार से चलते हुए कॉमेडी पे, क्योंकि भाई बात कॉमेडी की, क्योंकि अभी तक हमने ये भी नहीं जाना है कि कॉमेडी में क्या कुछ है। तो कॉमेडी में आ रही है ठुकरा के प्यार मेरा।
5: ठुकरा के प्यार मेरा,
6: नाम है थोड़ा सा, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन नहीं, इसमें ड्रामा है, लेकिन ड्रामे के साथ थोड़ा सा इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से आप किसी बहुत एक ऐसे विषय को जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन आप उसे कॉमेडी में भी दिखा सकते हैं।
5: ओके.
6: तो इसमें प्यार है, फिर बदला है, फिर एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है, लेकिन लेकिन वो सब है कॉमेडी के साथ। तो कॉमेडी के साथ देखें, और आप बात आती है कि आप कहाँ देख सकते हैं, तो अमेज़ॉन प्राइम पे देख सकते हैं। ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इसका जो एक कहते हैं ना, एक वो निकल करके आती है फीलिंग जो है, वो बहुत ही प्यारी सी है। तो देखें, इन्जॉय करें और खोए रहें प्यार में, जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनके प्यार में।
5: चलिए, तो भाई ये तो आज की ओटीटीज के बारे में हो गया, तो मैं एक अंशिका एक काम करते हैं
6: जी,
5: क्योंकि हमारे गेम का भी टाइम हो ही गया है
6: जी मैम,
5: तो एक गाना चला देते हैं और उस गाने के बीच में हम लिसनर्स को एक वर्ड भी दे देंगे और गेम शुरू कर देंगे।
6: बिल्कुल,
5: ठीक है, तो चलिए फिर सुनने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आज हमारे प्लेलिस्ट में है ना कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये सॉन्ग्स आए कहाँ से, मतलब कैसे सुनने को मिल रहे हैं आज। तो चलिए हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप सबकी नज़रें जो होनी चाहिए वो चैट बॉक्स में होनी चाहिए। हम आपको देंगे एक वर्ड और उस वर्ड में गाना एक चलाएंगे और उसके बाद आएंगे हम राशिफल की ओर।

जैसी मैंने मांगी थी।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं लव राशि फल की ओर, ठीक है?
6: बिल्कुल।
5: सबसे पहली राशि आती है मेष राशि वालों के लिए। आइए जानते हैं कि क्या है एक लाइन में, क्योंकि लव राशि फल को ज्यादा सुलझाने उलझाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में एक में ही वो पर्याप्त होता है, ठीक है?
6: बिल्कुल।
5: तो मेष राशि वालों के लिए है कि व्यवहारिक रवैये और बातचीत से सुलझेंगे आपके पुराने वाद विवाद, और जीवन साथी की रोजमर्रा के कामों में आपको करनी है थोड़ी सी मदद।
6: मदद करनी है।
5: नेक्स्ट राशि आती है वृषभ राशि से। आज लव क्या निकला है कि खुलकर बात करने से आज आपको फायदा मिल सकता है,
6: यानी कि बातें करनी है,
5: ढेर सारी बातें करनी है। एंड आज आप परिवार के साथ कहीं मिलकर बाहर घूमने जाएंगे तो अच्छा होगा। वाओ, ये भी बहुत अच्छा निकला है। एंड तीसरी राशि हमारी आती है मिथुन राशि वालों के लिए। आइए जानते हैं कि परिवार को मिलेगा पूरा समय और सप्ताह के अंत पर आप तनाव से अपने आप को बचा के रखें। एंड जीवन में रोमांस बढ़ेगा एंड कपल्स एक दूसरे के साथ बेहतरीन समय आज बिता पाने वाले हैं।
6: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि वालों के लिए है कि आज आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, जिससे कि आपका मन खुश रहेगा। और अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो वो आज आगे बढ़ सकती है और उनकी हाँ आ सकती है। और साथ में है कि अगर ऐसी बातें हैं तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समझ करके ही आगे बढ़ें।
5: तो हम मेरे साथ तो ढोलक भी बजने लगी। नेक्स्ट राशि,
6: अब आते हैं सिंह राशि वालों की तरफ। तो सिंह राशि वालों के लिए है कि आज के दिन आप किसी की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, यानी कि किसी की तरफ आकर्षित होंगे, और आपके मन में जो दबी हुई छिपी हुई भावनाएं हैं वो आज बाहर निकलने वाली हैं और आपको कुछ याद आने वाला है। और किसी की पसंद नापसंद आपको भी कहीं ना कहीं विचलित कर सकती है। मतलब यह है कि उसकी पसंद नापसंद से आप भी थोड़ा सा वो होंगे, चाहेंगे कि उसी की पसंद की चीज़ें आपको मिलें।
5: ओह माय गॉड, वाओ, इट्स अ गुड साइन।
6: यस, ओके। अब आते हैं हम
5: कन्या राशि हो गई थी।
6: जी,
5: आप सिंह राशि में इतना घुल मिल गई
6: कि मैं भूल गई
5: कि कन्या बेचारी परेशान हो गई।
6: नहीं, तो कन्या को परेशान नहीं करते हैं, कन्या राशि की तरफ आते हैं, जो कि आज ये है कि जो कि पुरानी गलत फहमियां बहुत समय से आपके रिश्तों में चली आ रही हैं, उन्हें छोड़कर आज आप आगे बढ़ेंगे और आपको ये एहसास होगा कि आपको अपनी अतीत की पुरानी कड़वी यादों को भूलना चाहिए, क्योंकि इसी में समझदारी है।
5: नाइस, तो चलिए अब यहाँ लेते हैं ब्रेक और बाकी 6 बची राशियों को हम फिर से बताएंगे। लेकिन उसके लिए आइए, दीपांशी ने भेजा है बहुत ही प्यारा सा एक वर्ड, जो कि मैंने वर्ड दिया था र, तो र से रातों को जगाया, नींदों को उड़ाया, कुछ इस टाइप का गाना है। आइए सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आएंगे हम बाकी बची राशियों को आप तक पहुँचाने के लिए।

0: ओके लिसनर्स, तो आइए फटाफट चलते हैं बाकी राशिफल की ओर. और नेक्स्ट वर्ड हमने दे दिया है क. तो तीन राशियां अंशिका बताएंगी एंड तीन के बाद मैं बताने के बाद राशिफल हम एंड करेंगे.
1: तो चलिए अब चलते हैं तुला राशि वालों की तरफ. देखते हैं आज तुला राशि वालों के लिए क्या है. तो उनके लिए ये है कि आज आपके प्यार भरे जीवन में रोमांस होगा.
0: हमने कहा था मैं बताऊंगी यार, फिर तुम बताओगी.
1: ओह
0: देखो यही होता है. देख लो बहू को, सास को बिल्कुल ऐसे ही देख लो, मतलब सुनती नहीं है ये और पहले अपना बोलना शुरू कर.
1: सॉरी
0: सासूमा,
1: सासूमा गलती हो गई, माफ कर दीजिए.
0: तो तुला राशि वालों के लिए है कि आत्मचिंतन करें, पार्टनर पर भरोसा करें. सप्ताह का पहला हिस्सा जो है, पहला जो दिन अभी जो हिस्से शुरू हुए हैं उसको लेकर के आप कोई भी चिंता ना करें. रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे होने वाले हैं एंड आप कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा रखें, तब ही कुछ फल मिलेगा. नेक्स्ट राशि आती है वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि करीबियों से मिलेगा सहयोग, जल्दबाजी में न दे कोई जवाब. तो उसके बाद में ध्यान रहे कि सप्ताह के अंत में भावनाएं बहुत उग्र हो सकती हैं. इस समय आप सामान्य से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं. किसी भी भावुक स्थिति में तुरंत जवाब को आप न दें. धनु राशि वालों के लिए है कि व्यस्तता के बीच निकालेंगे आप समय और मन की बात शेयर करना होगा आपके लिए बेहतर. तो सप्ताह के पहले हिस्से में काम की व्यस्तता आपको काफी बिजी रख सकती है. इसके बावजूद आपके रिश्तों को लगातार आपके ध्यान की जरूरत बनी रहेगी एंड खुद को अकेला करने के बजाय अपने मन की बात पार्टनर से साझा करें. दिल को खुला रखने की नजदीकियां बढ़ती हैं.
1: वाओ ये तो बहुत ही अच्छा है.
0: मकर, कुंभ एंड मीन.
1: यस ओके सासुमा. तो चलिए आते हैं मकर राशि की तरफ. और मकर राशि कहती है कि आज के दिन, यानी आज के दिन दोपहर के बाद आपकी जो सिचुएशन है वो बदलेगी, सुधरेगी और आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता भी सुधरेगा. लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा ना करें. कोशिश करें कि रिश्ते में पेशेंस हो, यानी आप धैर्य रख सकें. और यदि कोई मनमुटाव है तो उसे निकालिए अपने बीच से.
0: ओके
1: अब आते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ. कुंभ राशि वालों के लिए है कि आज अपनों के साथ और पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी और आप उनके साथ अच्छा समय बिता पाएंगे. आपके पार्टनर आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे और आपको ठेस नहीं पहुंचाएंगे.
0: आमीन.
1: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए समय बहुत ही अच्छा है, रिश्ते की नई शुरुआत के लिए. तो अगर आपकी लाइफ में रिश्ते हैं तो आप उनकी नई शुरुआत कर सकते हैं.
0: और जो रिश्ते ऑलरेडी से हैं, जो बिखरे हुए हैं, वो
1: उनकी भी नई शुरुआत कर सकते
0: हैं. नई शुरुआत,
1: रिश्तों की नई शुरुआत
0: के. उनकी ही तो नई शुरुआत करनी है.
1: यस मैम, रिश्तों की नई शुरुआत के लिए. अब आते हैं लास्ट की तरफ जो कि है मीन राशि. मीन राशि वालों के लिए है कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही गुड लक से भरा हुआ है. क्योंकि आज आप अपने जो कि आपके समवन स्पेशल है उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. और साथ ही में बेकार की जो भी बातें हैं उन पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और रोमांस से भरा हुआ होने वाला है.
0: चलो भाई, ये रोमांस सुन सुन के ना तो मेरा तो जी हो गया है. तो आइए हम अब एक
1: क्या जी हो गया है,
0: मतलब जी मेरा वो भर गया है.
1: अच्छा अच्छा, मुझे लगा
0: तुमको लगा कि मेरा जी कर रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है.
1: नहीं नहीं,
0: तो आइए इस प्यारे से गाने को सुनते हैं जो अनुष्का ने भेजा है. कोयल सी तेरी बोली, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, इसको सुनते हैं. एंड एक वर्ड अभी और टाइम है तो हम दे सकते हैं. तो चैट बॉक्स में आप अपनी नजर को गड़ा के रखें.

0: ओके लिस्टर्स, तो अब हमको दे इजाजत और हमें और अंशिका से हम मिलेंगे ठीक मंडे को सेम प्लेस सेम टाइम पर. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखें और पानी समय समय पर पीते रहें.
1: बाय बाय दोस्तों.

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

हाँ दोस्तों, आज है दिन शनिवार और शनिवार यानी कि वीकेंड का वार, और वीकेंड के वार में होता है बहुत सारा। आप लोगों को स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है आपके हाथों का। लगातार आप कॉल्स करते हैं और हम लेते हैं कॉल्स, लेकिन तब जब गाने का एंडिंग पॉइंट आता है, और यही तो इस कहीं ना कहीं शो की रोमांच होता है, इस शो का कहीं ना कहीं वो खास वाला पड़ाव होता है जब देखने को होता है आज कौन लकी कॉलर होंगे हमारे, और इस हिसाब से हम चलते हैं। फिलहाल बता दें कि आपने ट्यून करके रखा है रेडियो गाने स्ले 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा, और शो वही वाला है आपका फोन ही फरमाइश कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। कुछ और कहूं मैं आपसे, उससे पहले बता दें कि आज है दिन शनिवार, फिर से एक दफा आपको याद दिला दें। लेकिन चलते हैं उस डिमांड की ओर, नहीं उस गाने की ओर जो हमारा फेवरेट है। तो मतलब सीधा सीधी बात है कि शो का आगाज करते हैं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की पसंद के सॉन्ग से, और इसको ट्यून करते हैं, फिर देखते हैं आज के हमारे पहले वाले लकी कॉलर कौन बनते हैं। एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर को आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में। हाँ जी, और ये गाना बड़ा ही खूबसूरत है, गोविंदा जी का सॉन्ग जो है।

जी दोस्तों, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ जिंदगी भी कम लगती है दोस्तों, साथ जन्म भी कम लगते हैं, और लगता है काश के काश के काश ये वक्त यहीं थम जाता और हम और वक्त बिता पाते। तो उन सभी रिश्तों के लिए ये प्यारा सनगमा एंजॉय करते रहिए, और फिर देखते हैं आज की पहले लकी कॉलर कौन होते हैं। कॉलिंग नंबर है 6393316429। ऑपरेटर साहब ने मेंशन कर दिया है शायन जी, प्लीज ऊपर चेक कर लें एक दफा, योगेश जी के पास ये मैसेज पहुंचा है।

0: जल्दी दोस्तों और देखते हैं हमारे फर्स्ट वाले लकी कॉलर कौन है। हेलो, हाँ जी नमस्कार।
1: राधे राधे मैम जी।
0: राधे राधे पंडित जी, कैसे हैं?
1: अरे आज तो हम बहुत ठीक हैं, आज हमारा शनिवार के दिन फोन लग गया।
0: ओहो, भी पहला बधाई हो। अब बताइए इस बधाई के उपलक्ष्य में क्या खिलाने वाले हैं हम सबको आप?
1: आज हम सबको अपनी अपनी नानी छोड़ो वाइफ याद दिलाएंगे।
0: ओह माय गॉड, ऐसा कुछ गाना लेके आए हैं?
1: हाँ जी।
0: क्या है जरा बताए?
1: चूड़ियां बजाऊं कि बजाऊं कंगना।
0: अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे एक सवाल और है आपसे, ये बजाने वाला कौन है?
1: अरे वो रात की चुड़ैल लोग हैं।
0: ओ माय गॉड, ऐसा बोलेंगे आप सच में?
1: अरे चुड़ैल लोग ये मोटकी है ना, हमारे मोटकी वो बजावत है।
0: ओके ओके, ठीक है। बट मेरे को ये लगता है आपने स्त्री मूवी देखी या नहीं देखी अभी तक?
1: कौन सी?
0: स्त्री
1: हमने स्त्री नहीं देखी, कपड़ों की स्त्री बहुत करवाया है।
0: ओ भगवान, आपसे तो सवाल करना ही बेकार है हमारा। थैंक यू सो मच, चलिए एंजॉय करते हैं आपकी पसंद पे ये वाला गाना। थैंक यू,
1: धन्यवाद।
0: ओके।

जी दोस्तों, फारूक जी तो एकदम सोच में पड़ गए हैं और के गुप्ता जी को गाना काफी पसंद है। बाकी साहब भी हमारे मित्रगण मित्राणियां, इन सभी को काफी पसंद है गाना। वैसे चुड़ैल ही रात में कंगना नहीं बजाती, कभी कभी क्या ही बोलें, खैर छोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे। और हाँ, आप लोग लगातार कॉल करें, करते रहिए। आज का दिन है शनिवार, मजा इसी में आता है जब किसी की कॉल लगती है अचानक से सरप्राइज वाली। होता है ना, ढेर सारी मेहनत पर उसके बाद सुकून से बैठ के पंखे या एसी के सामने ठंडी हवा का एहसास, सेम फीलिंग देता है आज का कॉल इन शो। एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर को आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा के साथ में। एंजॉय द ट्रैक।

0: जी हाँ, और आजकल की लड़कियां कंगना और चूड़ियां नहीं बजाती, सीधे फोन मिला देती है, उसके बाद क्लास लगाती है। खैर, यही कहना था तो मैंने कह दिया। आगे बढ़ेंगे। रीना शर्मा जी, आज है शनिवार, कॉल के बिना हम सॉन्ग नहीं ले सकते हैं। वैसे भी आप कॉल करते ही हैं, लेकिन आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखते हैं हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़े हुए हैं। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून। अपना शुभ नाम बताइए, बड़ा ही प्यारा आवाज है आपका।
1: जी मैम, मैं चौपाल सागर से साक्षी मिश्रा बोल रही हूँ।
0: ओह माय गॉड, बड़े दिनों बाद भाई हमारी साक्षी जी आई है चौपाल सागर से। क्या लाई है हमारे लिए?
1: जो चाहे आपको।
0: बस आपसे आपकी डिमांड जानना चाहेंगे सॉन्ग की।
1: कौन गाना मुझे आपको पसंद का सुनना है?
0: मेरी पसंद का
1: जी।
0: और चलिए फिर आपको हम सुना देते हैं। चूंकि पंडित जी ने हमारे एक सॉन्ग भेजा है, तो उसी के जवाब में हम एक गाना सुना चाहते हैं। क्या सुना सकते हैं? जी जी, हम बहुत मस्त हैं, बस आपकी दुआओं की तरह हैं, और हमें मालूम है कि आप भी बहुत प्यारी होंगी। क्यों ओह, आपने बताया ही नहीं हमें।
1: कॉल लगा रहे थे बट डिस्कनेक्ट हो जा रही
0: है ना, ये जादू है हमारे फोन का। ऑटो मतलब रिसीव होके ऑटो कट हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, आइए एंजॉय करते हैं आपके लिए प्यारी सी डिमांड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: थैंक यू मैम।

0: जी दोस्तों, साक्षी जी की डिमांड पे हमारी पसंद का ये गाना आपने अभी एंजॉय किया। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले कॉलर की ओर और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ में कॉल पे। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्ते, मैं बबीता बोल रही हूँ।
0: जी बबीता जी, आप कैसी हैं? बबीता जी कहाँ से बोल रही हैं? बबीता जी क्या सुनना चाहती हैं? बबीता जी
1: कैसी
0: हैं? बस मैं ऐसी मुरही जैसी हूँ, बताइए क्या सुनना चाहती हूँ। माय गॉड,
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना।
0: है ना, वादा टूट जाए करता है, इसलिए हम मिलने की कोशिश ही करते हैं, वादा कभी नहीं करते। आप भी ऐसी क्या करिए। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा मजाक कर ली थी, बुरा तो नहीं लगता? चलिए, यही हमारी बबीता जी शर्मा के, कोई बात नहीं, इनका गाना हम प्ले कर देते भाई, इनकी डिमांड हम तक आ गई है, तो आप और हम मिलके सुनते हैं प्यारा सा डिमांड।

0: गाने की डिमांड हो तो ऐसे गाने होने चाहिए। अभी तक जितने भी गाने बजे हैं ओहो मजा आ गया। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमसे क्या डिमांड रखते हैं, कौन है पहले ये पता करते हैं। हेलो
1: हेलो मैडम नमस्ते
0: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम हमारे श्रोताओं को बताएं सर।
1: मुमताज अंसारी बोल रहा हूँ
0: जी। साहब आज आपकी क्या डिमांड है?
1: कुछ कहना चाहते हैं मैडम, इजाजत
0: जी अर्ज करिए, हम बस सुनने के लिए बैठे हैं प्लीज।
1: बिछड़ कर जिंदगानी में अंधेरा क्यों किया तूने, निभाना जब न था वादा तो वादा क्यों किया तूने। खुद अपनी गलतियों को बताता नहीं कोई, और मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं आजकल के दौर का फलसफा आपने पूरा खोल के कच्चा चिट्टा रख दिया है। अब बताएं क्या डिमांड है आपकी?
1: डिमांड ये है कि गाने के बोल है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। जी मैडम
0: आगे।
1: तिजारत अब मोहब्बत बन गई है।
0: क्या बात है भाई, मूवी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी सी डिमांड के लिए।
1: शुक्रिया आपको भी।
0: जी जी थैंक यू सर। ये थे हमारे बीच में हमारे मुमताज अंसारी साहब और इनकी डिमांड का ये गाना। और विकास तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए इसके लिए।

हमारे प्यारे लिसनर्स से रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज व्हाट्सएप कॉल मत करें। कॉल करने के लिए कॉलिंग नंबर है आपके पास में 6393316429, और आके प्लीज वॉइस कॉल करें, डोंट मेक व्हाट्सएप कॉल प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू।

0: हाँ जी, और चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं कौन है कॉल पर। हेलो,
1: आरजेएम बबलू पांडे भक्ति से मैम।
0: ओ माय गॉड, बबलू पांडे जी मोस्ट वेलकम, कैसे हैं?
1: बहुत जबरदस्त है मैम।
0: हाँ, काफी देर से आपकी कॉल आ रही है और लग नहीं रही थी, बाई चांस लग गई। क्या बात है, लग बाई चांस, ऐसा वाली फीलिंग आ रही है मुझे। हाँ, क्या सुनना चाहेंगे साहब?
1: ये सुनना है मुझे कच्चे धागे का फिल्म का गाना, दिल परदेसी हो गया।
0: दिल परदेसी हो गया, क्या गाना चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए। चलते हैं फिर बबलू जी की प्यारी सी डिमांड की ओर और सुनते हैं कच्चे धागे मूवी से ये बेहतरीन सा गाना।

0: दिल परदेसी हो गया, विदेशी स्वदेशी क्यों नहीं हुआ, बस ये समस्या है। अगर दिल परदेसी हो गया, विदेशी हो गया चलेगा, लेकिन स्वदेशी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपना दिल अपने हाथों में रखिए, सुरक्षित रखिए, दूसरे के हाथ में जाते ही वो बीमार हो जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले कॉलर की ओर, देखते कौन हमारे साथ में। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: नमस्कार, मैं विकास तिवारी उन्नाव से बात कर रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मैम
0: जी, और हमको बेहद ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए हमें मेरा मन कर रहा है आज हम आपके लिए स्पेशल वाला गाना बजे, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आए हैं।
1: जी मैम,
0: चलिए तो फिर एंजॉय करिए, बजाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
1: वेलकम मैम
0: जी। तो भाई लगातार आप सभी की कॉल आ रही, लेकिन ये गाना जरूर सुनिए, बहुत प्यारी सी डिमांड है। अरे कई सारे लिसनर्स आज बहुत दिनों बाद आए, लाइक अर्पण, पार्थ, वर्षा, और बहुत सारे लोग लगातार कॉल्स भी कर रहे हैं। अनिल वर्मा जी सैदापुर से, और कुशवाहा साहब है, कुमार साहब, सभी के लिए भाई अगर थोड़ा भी वक्त, मतलब ज़्यादा दिन नहीं होता, मैं अगर वीक ऑफ पे भी चली जाती तो मुझे लगता है मैं कितने दिनों बाद आई हूँ। तो आप सभी के लिए डेडिकेशन में ये सॉन्ग एन्जॉय करिए।

0: गाना था, मजा आ गया भाई। और अब बढ़ते नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं कौन हमारे साथ में। हेलो
1: हेलो, हाँ जी मैं, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, ये हमारे प्यारे श्रोता है जिनका नाम है मुकेश यादव, जो हमें दिल से सुनते हैं, और आपके हाँ जी के लिए बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। क्या सुनना चाहेंगे मुकेश जी?
1: मैम आपने पहले ही सोच रखा है तो क्या
0: बजा दें? बड़े दिनों बाद आज मन कर रहा है, बजा ही देते हैं।
1: बजा दीजिए मैम, बिल्कुल।
0: और इसके पीछे का कारण भी बता दे श्रोताओं को। श्रोताओं अक्सर करके क्या होता है, हम एक ही गाने में सभी को चस्पा कर देते हैं, चिपका देते हैं, तो मन कर रहा आज ये वाला गाना बजा दे, बजा देते हैं मुकेश जी।
1: मैम बेशक मैम, आपकी इच्छाओं को बिल्कुल
0: बिल्कुल। थैंक यू सो मच, एंजॉय करते हैं इस प्यारी सी डिमांड को, और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में। थैंक यू।

0: शाबाश भाई, और हमारे इशारों को समझ गए थे मुकेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों बाद इस गाने का आनंद उठाया हमने आपकी बदौलत। भैया कौन है बार बार बार बार बेर बेर बेर बेर मिलाए बहाए है व्हाट्सएप पे, कॉल कहे जा रहे हैं, प्लीज कॉल मत करे व्हाट्सएप पे। खैर कोई बात नहीं, देखते हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर कौन है, इसका भी एक अपना अलग ही मजा है। हम इधर गाना बजा रहे हैं, सभी सुन रहे हैं और बीच में व्हाट्सएप कॉल टुनुन टुनुन टुनुन टुनुन, खैर देखते कौन है। हेलो
1: जी, गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताएं प्लीज।
1: जी गुलफशा अंसारी।
0: ओ माय गॉड, हमारे फोन पे गुलफशा अंसारी जी की कॉल आई हुई है। कैसी है गुलफशा जी?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी?
0: आपका नाम बड़ा प्यारा है गुलफशा, इसका मतलब क्या होता है?
1: जी फूलों की जैसी।
0: हाँ मालूम था मुझे, खास करके गुलाब जैसी। कैसी दिखती होंगी आप, मतलब अगर कहीं पे सजावट की जरूरत होगी तो आपको खड़ा कर दिया जाता होगा क्या?
1: जी ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपने बोला तो हो सकता है जरूर।
0: नहीं नहीं बेशक, जब घर की रौनकों की जरूरत होती होगी तो घर की बेटियां और बहुएं ही सबसे आगे होती है, इसलिए बोला। क्या सुनना चाहेंगी गुलफशा जी? जी
1: इसमें तो हम एक्टिव है, अपना घर भी संभालना
0: है, हमें सब मालूम है। कहिए क्या सुनना चाहती है?
1: जी दरिया है हमारा, ये अपने हम प्यारे से बेटे अब्बास को डेडिकेट कर रहे हैं।
0: ओके, दरिया है हमारा, आगे
1: दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है
0: दरिया,
1: क्योंकि मेरे बेटे का नाम अब्बास ही है ना, इसलिए मैं इसको डेडिकेट कर रही
0: हूँ। ओके बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय करिए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम।
0: तो फिर चलते हैं भाई हम अपनी प्यारी गुलफशा जी की सॉन्ग की डिमांड की ओर, अब्बास जी को डेडिकेटेड इनके प्यारे नवाबजादे के लिए।

0: रफ्शा अंसारी जी की डिमांड पे बहुत ही प्यारा सा आला सा भी ये डिमांड आपने एंजॉय किया इनके सुपुत्र अब्बास जी के लिए। और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है। हेलो, गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताएं प्लीज। मंजू यादव जी, क्या सुनना चाहेंगी? अच्छा, कितना पागल बताइए ना। यहाँ वैसे सभी पागल हैं, हमारे चैट बॉक्स में हम भी आप भी सभी पागल हैं। आप कितनी पागल हैं?
1: बहुत ज्यादा।
0: बहुत ज्यादा, कितनी ज्यादा? पता करने चली गई क्या मंजू जी? हेलो, हमें लग रहा है मंजू जी पता करने चली गई है कितनी पागल है। फिलहाल सुनते हैं इनकी डिमांड पे ये बहुत ही उम्दा वाला सॉन्ग 90s हिट्स में से एक फ्रॉम द मूवी साजन। एंजॉय करिए।

0: क्या बात भाई, मंजू जी की डिमांड काफी पसंद की गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, मनीष शर्मा बोल रहे हैं
0: जी। तुसी कैसे हो जी?
1: पंजाबी बोल नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप शुद्ध हिंदी में बोल दीजिए, और अगर आपसे बनता है तो आप अवधि भी बोल सकते हैं। क्या सुनना चाहेंगे मनीष जी?
1: हमको सुनना है, मुझको राधा जी माफ करना, डेडिकेट करना है परवल मिश्रा और नेहा शुक्ला, जो अभी आई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई।
0: अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। चलिए आपके कहने पे प्ले करते हैं ये सॉन्ग। थैंक यू सो मच। भाई शादियों में बहुत ज्यादा सुना जाता है, बहुत ज्यादा बजाया जाता है, और हर जगह कहीं ना कहीं आजकल शादियों की धूम भी मची हुई, तो बारातियों के स्वागत के लिए चलिए प्ले कर देते हैं गाना।

हाँ जी दोस्तों, और इस सॉन्ग के साथ में कहीं ना कहीं हमारे पूरे चैट बॉक्स वासी अपने अपने दोस्तों की बारात में जाने की तैयारी करें, यानी कि नृत्य की पूरी जोरों शोरों पे प्रैक्टिस चल रही है। और हम इस सोचे बैठ के दो चार ठुमके हम भी लगा लेते हैं, तब तक आप एंजॉय करते रहिए इस सॉन्ग को। लगातार हमारे पास में बहुत सारी कॉल आ रही है, लाइक सुनील कुशवाहा जी हैं हमारे बीच में, रईस साहब है, और बहुत सारे लिसनर जिनकी कॉल आ रही है। लेकिन भाई गाने के एंड पे ही मैं कॉल उठाती हूँ, आपको अच्छे से पता है, तो एंजॉय करिए इस सॉन्ग को। आते हैं नेक्स्ट कॉलर के साथ।

0: हाँ जी, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी। और हमारे मुकेश यादव जी का कहना है, जो हमें दिल से सुनते हैं, कि भाई आपके पीछे कैमरा लगा है तो कुर्सी पे बैठ के मटकने क्या जाता है, खड़े होकर थोड़ी डांस कर रहे हैं, और हिल जाना चाहिए, क्योंकि दिल से जब नाचन आता है, नृत्य आता है, तो आप रुक नहीं पाते। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं किस की कॉल हमको मिल गई है। हेलो
1: जी मैम, नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैं, मैहर एमपी से।
0: क्या बात है भाई, मैहर वाली माता की जय सबसे पहले तो, और आपको बधाई हो, बड़े देर से आप कॉल कर रहे थे, कैसा लगा कॉल मिलते ही?
1: जी मैम बहुत अच्छा लग रहा, मैम कॉल उठा गया मैम।
0: वही तो, ऐसा लग रहा होगा जी, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत कड़ी धूप से आए और ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ गया हो।
1: जी जी
0: जी, क्या सुनना चाहेंगे? हेलो हेलो सुनील जी, हेलो, शायद किसी कारणवश सुनील जी की कॉल हमको डिसकनेक्ट करनी पड़ गई है, क्योंकि हमें लग रहा है इनके उधर नेटवर्क की का इशू हो गया था। हेलो
2: हेलो,
0: अपना शुभ नाम बताएं।
2: मेरा नाम जावेद अंसारी है।
0: जी जावेद अंसारी जी, आप हमें कहाँ से सुनते हैं?
2: हम तो गोंडा से सुन रहे हैं आपको।
0: जी क्या सुनना चाहेंगे?
2: हमारे दोस्त हैं जमील साहब।
0: क्या नाम है आपके दोस्त, दोस्त का फिर से?
2: हमारे दोस्त का नाम है जमील साहब, जमील
0: जी,
2: नाम है
0: जी, जमील साहब जी।
2: हाँ वो बेचारे बहुत पुराने आदमी हैं
0: जी, क्या सुन,
2: और एक पुराना गाना कोई सुनना चाह रहे। जमील साहब बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
3: खिड़की जो बंद रहती है।
2: हाँ
0: तो क्या चाहते हैं आप, खिड़की बंद ना रहे, खुली रहे?
3: और ये कपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था करती जादूगी।
0: ओहो नहीं, एक ही गाना एक टाइम पे फिलहाल प्ले कर पाएंगे हम, और आपको सुनाते हैं खिड़की जो बंद रहती है, और कोशिश करते हैं खिड़की बंद है तो उसको खुलवा देते हैं इस गाने के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो भाई चलते हैं जमील साहब की डिमांड पे, सुनते हैं बहुत ही पुराना मैं तुलसी तेरे आंगन की मूवी से ये गाना, मूवी भी बहुत प्यारी है, गाना मेरी मम्मी का फेवरेट है।

सुनील जी को मुझे लग रहा है हवा काफी अच्छा लगा, वो हवा खाने निकल लिए हैं। प्लीज सुनील जी, अगर आप मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप चैट में भी अपना सॉन्ग भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो गया। तो फिलहाल एंजॉय करते हैं जमील साहब के डिमांड पे ये प्यारा सा गाना, मेरी मम्मी वाला फेवरेट वाला ये गाना। और हाँ, आज हम चैट बॉक्स में आना ही भूल गए, जाते जाते आते हैं, मिलते हैं आप सभी से, बहुत सारे लिसनर्स आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।

0: श्रोताओं एक और कॉलर की कॉल लेते हैं, एक और सॉन्ग प्ले करते हैं, फिर आते हैं चैट बॉक्स की ओर, वरना आज हम आप लोगों का नाम भी जपने से रह जाएंगे। भैया जपना बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों का नाम हमें। फिलहाल देखते हैं कौन हमारे साथ में। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है।
0: जी अमित जी, क्या सुनना चाहेंगे? आज तो लग रहा काफी भीड़ थी और आप बहुत लेट हो गए।
1: एक परदेसी मेरा दिल ले गया।
0: ओह, एक पर
1: नया वाला।
0: हाँ हाँ, वही वाला बजाएंगे, हमें खुद ही वही पसंद है। चलिए फिर एंजॉय करिए एक परदेसी मेरा दिल ले गया। थैंक यू।

हाँ जी, और चलते हैं अमित जी की डिमांड की ओर। भाई गाने तो बहुत सारे नए वर्जन में आजकल हाजिर हैं, लेकिन लेते हैं 90s के दौर का ही रीमेक वर्जन हम एक परदेसी का, और इसी को एंजॉय करते हैं मिलके आपके अपने शो जी हाँ कॉलर ट्यून गोंडा के साथ में।

को थोड़ा सा इग्नोर मार दीजिएगा, हो सकता है आजू बाजू से गर्मी बहुत ज्यादा है, नाग नागिन निकल आए। वैसे तो प्रार्थना कर रहे भगवान जी आइएगा नहीं, खाली एंजॉय करिएगा दूर से बैठ के आप भी ये तर्राना।

0: हाँ जी, अमित जी की डिमांड पे ये रीमेक वर्जन अभी आपने एंजॉय किया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट कॉलर की कॉल ले लेते हैं और उसके बाद आते हैं आपके मैसेजेस की। हेलो हेलो हेलो हेलो
1: जी, नमस्कार, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी।
0: जी, गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कुमार साहब भी, यानी कुमार टेलर साहब भी कॉल कर रहे थे। वैसे आज आपकी क्या डिमांड है साहब, प्लीज बोलिए।
1: मैडम, हमने लिंक भेज दिया, चोरी चोरी तेरे से आँखियाँ मिलाई दे।
0: चोरी चोरी तेरे से आँखियाँ मिलाई दे, अब हम लिंक तक जाना हमें लग रहा है। आप लास्ट में एक दफा फिर से भेज दीजिए, तब तक मैं मैसेज लेती हूँ, ठीक है?
1: ओके,
0: थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अभी आप लोगों की मैसेजेस की ओर, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तो हम मैसेज लेना भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं, मैं भूल गए, बस वक्त की कमी के कारण हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो आते हैं आप लोगों के मैसेजेस की ओर और चैट बॉक्स में देख रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो हमें दिख रहा है वो हम है हमारे, जी हाँ, मुकेश जी का, यानी कि गुड आफ्टरनून डियर मैम आर्जकांक्षा जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर, हाँ जी, बड़ी सजावट के साथ में भाई डेकोर करके मैसेज भेजा जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, नहीं नीना जी हैं हमारी, चंगू जी हैं, नमस्कार आकांक्षा जी और सभी को, नमस्कार आपको भी। जल्दी जल्दी सभी के नाम ले लेते हैं वक्त की कमी के कारण। दीपांशी तिवारी जी हैं गोंडा से, आपका भी स्वागत है। प्रबल मिश्रा जी, पंडित जी हमारे हैं, और चुम्मन जी आए हुए भाई, ये नाम कहाँ से आपको प्राप्त हुआ जरूर बताइएगा अगर आप सुन रहे हो तो। रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी हैं इलाहाबाद से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आर्जकांक्षा। मुस्तफा जी हैं सऊदी अरेबिया से, और इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेहा शुक्ला जी हैं, के गुप्ता जी हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, लवली सिंह जी हैं हमारे भाई, ये हमें लुधियाना से सुनते हैं, कभी कभी आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से भी सुन लिया करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका लवली जी। और इसके अलावा दरक्षा अंसारी जी हैं, डियर गुल्लब, थैंक यू सो मच फॉर योर दिया हुआ सजेस्ट किया उपनाम। और योगेश शुक्ला जी हैं पंजाब से, आरसीएम से, पांडे जी भटपी से, और राम भवन जी हैं बबनान गोंडा से, सायन जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और इसके अलावा फारूक साहब हैं, नेहा शुक्ला जी हो चुकी हैं, और गुलफशान सारी जी हैं सीतापुर से। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज की बात करें, आप लोग के हाथ से इमोजीज के बीच में आ गई हैं हमारी मंगू जी, यानी कि हमारी नेहा जी फ्रॉम बहराइच। ओके, चूड़ी कंगना ना बजाना वरना वरना क्या, कुछ भी नहीं होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैसेज की ओर। तो आप सभी के मैसेजेस हैं और प्रमोद कुमार जी आ गए भाई लुधियाने से आ गए हैं, वैसे तो कभी कभार सीतापुर से भी नजर आ जाते हैं, लेकिन आज ये

बाद नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे अर्पण पार्थ वर्षा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं और एकमात्र मैसेज, पता है इतने सारे मैसेज में खोजना कितना मुश्किल होता है और वक्त की कमी हो तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैसेज ढूंढ रही हूं मैं, ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र रुक नहीं रही है क्योंकि मैसेजेस इतने सारे हैं। आप लोगों ने गानों को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तो थैंक्स के भी मैसेज आए, भाई मेरे को थैंक्स मत करा करिए, आप लोग से शो बनता है तो आप लोगों को बड़ा वाला थैंक्स है हमारी ओर से। सब लोग सामने जी मुंबई बोरे वली से भैया चेंज करके ये अभी हो गए सांता क्रूज मू, भाई ये रोज इनका जगह चेंज हो रहा है, कितना घुमक्कड़ हो गए हैं आप सब लोग जी। कोई बात नहीं, हमारे सामने बलम जी थोड़ा बहुत घूमेंगे ही। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर, और इनका कहना है खिड़की बंद रहती है किसकी नजर लग गई है। ओह माय गॉड, पागलपन के नेक्स्ट लेवल पे है हमारे प्यारे लिसनर, और हमें लगता है हम ही हैं लेकिन हम सभी आगे बढ़ गए हैं। ASIF मुंबई से हमें कोई सुन रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप सभी के मैसेजेस हैं, और लता प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच में हैं, और प्लीज़ सर आज कॉल इन शो है और आपको कॉल किए बिना, वैसे भी आपका फ़ोन ही फरमाइश कार्यक्रम है, आप गाने डिमांड नहीं कर सकते। अगर चैटबॉक्स के सॉन्ग्स आपसे को सुनना है तो 7:45 शाम में गीत आपके नाम से मैं करिएगा, आज सिंपल आम की डिमांड ज़रूर कम्प्लीट करेंगी। एम जावेद अंसारी जी हैं और लिखते हैं, मैं जब भी तन्हा होता हूँ तुझी को याद करता हूँ, ख्यालों के गुलिस्ता में तुझे आबाद करता हूँ। ओहो, क्या बात है भाई, ख्यालों तक ला करके और आबाद कर दिया जाता है, यही तो होता है यादों का फलसफा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड मेरे पास में आई है हमारे प्यारे सुरेंद्र यादव जी की ओर से, लेकिन उससे पहले चलते चलते एक कॉल और हम ले लेते हैं और देखते हैं ये कॉल पे हमारे साथ में कौन बना हुआ है। लेकिन क्या फोन कट हो गया, चलिए सुनिए इस डिमांड को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में।

0: जी दोस्तों, और देखते हैं सुनील जी वापस से आगे हवा खा के क्या सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी मैम, नमस्कार
0: जी। प्लीज जल्दी से अपना सॉन्ग बताएं।
1: जी गाने का बोल है, मुझे पैसा मिला है यार ऐसा मिला,
0: अब खरीदूंगा बंगला गाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, खरीद के जरूर आइएगा वापस से। जब बात करें तो आपके पास बंगला गाड़ी होना चाहिए। थैंक यू।

0: शुक्रिया पार्थ अर्पण वर्षा जी, आपके ओर से फीडबैक मिला और सभी की ओर से कुछ ना कुछ मिला उन सभी तोहफों के लिए, हर एक शब्द के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कितनी कॉल्स आई, कितनी मैं उठा पाई, कितनी नहीं उठा पाई, उन सबके लिए भी शुक्रिया और सॉरी भी मेरी ओर से। और एक प्यारा सा मैसेज आया हुआ है, किसी दोस्त के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है उसकी फीलिंग को समझना, बेशक, और इससे ज्यादा कोई कुछ चाहता भी नहीं है इस दुनिया में। ये बहुत बड़ी वाली सच्चाई है वैसे पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे कौन है। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून,
0: वेरी गुड आफ्टरनून। अपना शुभ नाम जल्दी से बताइए और हम आपको चिपकाते हैं अपने सुनी

को सुहास जी के गाने में, जल्दी से बताइए क्योंकि वक्त नहीं है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशी जी, आपके लिए स्पेशली ये गाना है, मैंने पैसा खरीदा, बंगला खरीदा, गाड़ी खरीदी और खरीद लेते हैं इस गाने के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है तो चलते हैं दोस्तों, अब आज का सफर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे मंडे फिर आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा के साथ में। ख्याल रखिएगा, बहुत मस्ती करिएगा, लाइफ को ऐसे ही प्यार से आगे बढ़ाते रहिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू डियर।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सारी बातें और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान यानी कि गौधली स्पेशल खेत खलिहान जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें वो भी गो ग्रीन वाले मोड में और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गौधली में स्टे ट्यून्ड
1: Now you're listening 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में शो चल रहा है गौधली और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन सो जैसा कि इस प्रोग्राम में हर रोज गोंडा की ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने क्षेत्र के होते हैं बेहद खास जिनकी जिंदगी के बारे में हमें इस टॉक शो के माध्यम से जानने को मिलता है किस तरह से वो शून्य से शिखर तक पहुंचे इसके अलावा वो जिस भी क्षेत्र के होते हैं उसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी उनसे हासिल करते हैं लेकिन आज की जो मेहमान है वो कई मायनों में खास हैं क्योंकि कहते हैं ना कि दो बातें होती हैं एक होता है शख्स और एक होती है शख्सियत तो कई बार तो शख्स होते हैं आपके सामने लेकिन कई बार पूरी की पूरी एक शख्सियत होती है तो आज के जो गेस्ट है हमारे मैं उनको एक शख्सियत ही कहूंगा क्योंकि जैसे ही मैं उनका नाम लूंगा न जाने आप में से पहले से ही कितने लोग उनके बारे में जानते हैं उनसे डायरेक्ट मिल चुके हैं और जो लोग नहीं भी मिले हैं उनका नाम आपने जरूर सुना है जी हाँ अब बहुत ज्यादा हम सस्पेंस क्रिएट तो नहीं करेंगे हम अपने आज के स्पेशल गेस्ट का नाम बताते हैं आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर त्रिलोचन सिंह साहब जो कि रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं एचओडी एजुकेशन एलबीएस पीजी कॉलेज गोंडा साथ ही साथ पूर्व प्राचार्य एमएसआईटीएम गोंडा सर सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधुली
2: धन्यवाद
1: और जैसा कि हमने बताया कि आपका नाम मैंने लिया लोगों को क्लिक हो गया होगा एक बार पूरा उनको मेमोरी याद आ गई होगी जो भी एलबीएस में आपसे पढ़ चुके हैं या आपके बारे में जिन लोगों ने बताया है क्योंकि मैंने भी आपसे डायरेक्ट कोई आपकी क्लास नहीं ली लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ सुना था तो आज बहुत ज्यादा कह सकता हूं कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि आप हमारे सामने हैं और आपसे हमें बातचीत करने का मौका मिला है सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आज आपके बारे में बहुत विस्तार से हम जान पाएंगे क्योंकि पढ़ते हैं आप एक प्रोफेसर रह चुके हैं वो सभी को पता है लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कई ऐसे पहलू हैं जो शायद आज बातचीत के दौरान आपसे डिस्कशन में निकलेंगे तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि एक अपना आप खुद भी संक्षिप्त विवरण दे दें हमारे श्रोताओं को
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके द्वारा यहाँ पर बुलाए जाने के लिए और इस कार्यक्रम में मुझे सहभागिता दर्ज करने का अवसर मिला इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ मैं त्रिलोचन सिंह पूर्व विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र एलबीएस कॉलेज गोंडा से मैं रिटायर हुआ था एसोसिएट प्रोफेसर के पद से इसके पश्चात मैंने लगभग साढ़े छः साल मीना शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोंडा में प्राचार्य के पद पर काम किया 2022 में मैं पूर्ण रूप से कार्यमुक्त होकर घर पे अपने रह रहा हूँ मैं बेसिकली अमेठी जो उस समय सुल्तानपुर में था आज अपने आप में एक अलग से जिला बन चुका है मैं बेसिकली अमेठी का रहने वाला हूँ और वहीं से लगभग मेरी पूरी शिक्षा हाई स्कूल इंटर बीए एमए बीएड एमएड सारी शिक्षा मेरी वहीं अमेठी से ही मेरी पूर्ण हुई है उसके पश्चात जॉब लगा और आप लोगों के साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ
1: क्या बात है इतनी खूबसूरती से आपने बता दिया और होती ना प्रोफेसर्स की क्वालिटीज होती हैं उनसे जितना पूछा जाता वो उतना ही बहुत प्रिसाइज वे में बताते हैं मैं एक बार फिर से आपके बचपन की तरफ चलूंगा आपने बताया सर आपकी पैदाइश अमेठी में हुई थी तो प्लीज अपने पिताजी के बारे में बताइए माताजी के बारे में बताइए और कितने आप लोग भाई बहन थे और अभी बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में भी बताइए
2: मेरे पिताजी स्वर्गवासी सरदार बलवंत सिंह और माताजी स्वर्गवासी श्रीमती प्रकाश कौर जी एक सामान्य परिवार था बिजनेस था पिताजी के पास और हम लोग 6 भाई थे 6 भाइयों में मेरा 5वां नंबर था सबसे बड़े भाई साहब सब शुरुआत सबकी शिक्षा अमेठी से ही हुई थी लेकिन उसके पश्चात सब अपना आगे बढ़ते गए और कोई नौकरी में निकल गया तो कोई वही बिजनेस करने लगा सबसे बड़े भाई साहब डॉक्टर कुलवंत सिंह जिनका अभी लगभग एक वर्ष पहले स्वर्गवास हुआ है। उसके पश्चात सेकंड नंबर के भाई अमेठी में ही रहते हैं, वो बिजनेस देखते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि तीसरे नंबर वाले भाई साहब, वो भी उनका स्वर्गवास पिछले ही वर्ष हुआ है। चौथे नंबर का भी स्वर्गवास हो चुका है। मेरा पांचवा नंबर है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ। एक मुझसे छोटा जो बैंक में एजीएम के पद से अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ है, वो भी अपना परिवार के साथ है। हमारा एक सामान्य सा परिवार था, लेकिन वही कहते हैं कि जहाँ चाह वहीं राह। पिताजी चाहते थे कि वो अपने बच्चों को इस कदर बढ़ाएं कि उनको पीछे देखने का अवसर ना मिले, और शायद उन्हीं का पुण्य था कि हम सभी भाई शायद ही कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र रहा हो जहां पर ना गए हों। सब ने मिनिमम डिग्री, हमारे यहां सभी भाइयों की एमए थी, कोई एमएससी बीएड, कोई एमए बीएड, कोई एमबीबीएस। तो मैं भी आप लोगों के बीच में वहीं अमेठी से ही बीएड और एमएड करने के पश्चात शिक्षा शास्त्र पद पर आया। इसके पूर्व मैंने लगभग 2 वर्ष सेवाएं अपनी एमएलके कॉलेज बलरामपुर में दी थी। उसी समय यहां पर जगह निकली और मैं यहां पर अप्लाई कर दिया, और सन 84 में मैं गोंडा में आ गया। 89 में मुझको हायर एजुकेशन कमीशन को फेस करना पड़ा, और वहाँ से मेरा 4 अप्रैल 2000 को मैंने पुनः गोंडा में उसी पद पर ज्वाइन किया जिस पद पर मैं 84 से कार्यरत था।
1: जी, तो आपने बताया किस तरह से आपका यहाँ गोंडा तक का सफरनामा रहा है। आपने बताया सर कि आप 6 भाई थे, कोई बहन नहीं थी आपकी? नहीं थी। जी, 6 भाइयों। आपने बताया कि पिताजी ने हमेशा सपोर्ट किया, और वो हमेशा इनकरेज करते थे कि पढ़ो और जितना पढ़ सको पढ़ो, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है एक वालिद का 6 बच्चों को इस तरह से इनकरेज करके उनको उनके अकॉर्डिंग जो वो प्रोफेशन चुनना चाहते हैं उसमें हेल्प करना। और साथ ही साथ आप तब की बात कर रहे हैं जब शायद इतना भी ज़्यादा स्कोप नहीं था, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें आज आई है, उस दौर में आपने किया है। पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनका नेचर कैसा था, वो इनकरेज क्यों करते थे?
2: वो चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें। बब मैंने जैसे पहले ही कहा कि एक सामान्य परिवार था, छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उनके मन में इच्छा थी। और मुझे वो समय भी याद है कि जिस समय सबसे बड़े वाले भाई साहब कानपुर में एमबीबीएस कर रहे थे, उस समय बिजनेस में पिताजी जो भी धन लगाते थे उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा भाई साहब की पढ़ाई पे जाता था। लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। मुझे याद है कि मैंने एक बार पिताजी से इच्छा जाहिर किया कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ और मैं अब बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, पढ़ो। और शायद उनके मन की जो इच्छा थी या हमारे गुरुजनों का कुछ आशीर्वाद था कि उसके बाद मैंने पुनः एमए में एडमिशन लिया, और एमए करने के बाद फिर बीएड किया, एमएड किया, और सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा कि एमएड करने के बाद तुरंत हमको जॉब मिल गई बलरामपुर में। केवल 6 महीने मैं एमएड करके बैठा रहा, उसके बाद तुरंत जॉब मिल गई। फिर जिंदगी का सफर और जिंदगी की गाड़ी चलती रही, बढ़ती गई, जिसकी कोई लिमिट नहीं रह गई। और उसके पीछे शायद पिताजी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद था, या एक तरीके से कह लीजिए कि वो गाड़ी को बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करते रहे, ग्रीन सिग्नल मिलता रहा और हम लोग चलते चले गए। सब भाई अच्छे पढ़ लिख गए।
1: क्या बात है, ये बहुत बड़ी आपने बात बताई कि किस तरह से कम पैसों में भी उन्होंने मैनेज किया, जैसा जिसने चाहा उसको पूरा सपोर्ट किया। और आपको भी, आपने भी एक बार इच्छा जाहिर की कि आपको शायद बिजनेस में आना, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले आप पढ़ लें, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं ये विचार होगा कि आप जब इतना पढ़ लेंगे तो शायद आप एक बेहतर खुद के लिए फैसला कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, और दुनिया की समझदारी आपके अंदर आ जाएगी। और हर वालिद अपने बच्चों के लिए यही चाहता है। पढ़ाई में बहुत सपोर्ट मिला, बचपन में शरारत ना हो तो बचपन कैसा, अधूरा होता है। आपका बचपना कैसा रहा, कितने शरारती थे, क्या क्या गेम्स आपने खेले?
2: शरारती तो बहुत नहीं था, क्योंकि माताजी घर में अकेली थी और बहन कोई थी नहीं, तो उनको सपोर्ट के लिए हम लोग दो ही क्षेत्र थे हमारे पास, या तो स्कूल या फिर माताजी के साथ उनको घर के कार्यों में सपोर्ट करना। और उसका जब बना बड़ा बेनिफिट मिला कि वैवाहिक जीवन हमारा जो जब शादी हुई तो पत्नी भी हमारी जॉब में है, इस समय रिटायर हो गई है वो भी, तो उसमें फायदा ये मिला कि हमको कभी इस बात की कमी नहीं खली कि हम खाना कैसे बनाएं, पत्नी का ट्रांसफर कहीं, हमारा कहीं, तो उसमें हमको बड़ा वो उस कार्य का सपोर्ट मिला जिस कार्य के लिए मैंने माता जी को सपोर्ट करने का प्रयास किया था। और हम सभी भाई हमेशा माता जी को घेरे रहते थे कि इनको कम से कम काम करना पड़े, और वो हमारे लिए शायद आजीवन का प्रसाद है कि हम लोग उस बेस पर आज भी हर क्षेत्र में अपने आप को सफल पाते हैं।
1: क्या बात है, आपने बताया कि स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं आपका अप्रोच होता था कि ज्यादा से ज्यादा अपने माता पिता को काम उनका ज्यादातर आप हल्का कर दें, खुद से कर दें, और कहीं ना कहीं आज भी आपने अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ये चीज प्रैक्टिस की है और बेहद सफलतापूर्वक कह सकते हैं कि एक वैवाहिक जीवन भी आपने जिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है और आपके आगे के लिए भी शुभकामनाएं हम देते हैं अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की तरफ से। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बचपन में ही कुछ ऐसे बीज डाल दिए जाते हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं, आपके बारे में जितना गोंडा वाले जानते हैं, जितना मैंने सुना है, बहुत हेल्पिंग नेचर रहा है, क्या ये बीज माता पिता ने ही डाला था, या आपका वहां पे माहौल था उसका भी ये असर है, या पर्सनली ये आपका ऐसा मानना था कि सेवा ही सर्वोपरि है, इसके बारे में बताया।
2: जैसा कि आपने अभी कहा कि शुरुआत में ही बीज ऐसे डाले गए, तो वो एक माता पिता का हमेशा से रहता है कि हमारा बच्चा सर्वगुण संपन्न हो, और जो एग्जाम्पल माँ बाप से मिलता है बच्चों को वही उनके जीवन में काम आता है। जब जिस तरीके से हमने पढ़ाई पूरी किया, पढ़ाई में हमको भी कहीं ना कहीं से हर तरीके का सपोर्ट मिलता रहा है, और एक इच्छा थी कि आज अगर हम इस पद पर पहुंच गए हैं तो हमारे द्वारा अगर किसी को भी कोई सुविधा मिल सकती है तो ये मेरे जीवन का पहला लक्ष्य होता था कि मैं उनको उस सुविधाओं का उपलब्ध कराऊं, ताकि कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो उसको लगे कि मुझको कहीं से सपोर्ट मिला, और उस कार्य को करने के पश्चात मुझे एक बहुत बड़ी आत्मिक शांति मिलती थी, बड़ी खुशी होती थी कि पेड़ लगाया और पेड़ अगर बढ़ गया है तो बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी की बात होती थी। आज भी मेरा लक्ष्य यही है, मैं चाहे अब महाविद्यालय से जुड़ा हूं या अलग हूं, रिटायर हो गया हूं, लेकिन आज भी मेरे मन में यही रहता है कि किसी भी जरूरतमंद को अगर मैं सपोर्ट कर पाऊं तो मेरे जीवन का पहला लक्ष्य है, क्योंकि ईश्वर ने किसी बात की कमी नहीं दिया है। और शायद यही सबका फल है कि बच्चे भी, मेरे तीन बच्चे हैं, तीनों विदेशों में रह रहे हैं, उनको भी मुझसे किसी भी प्रकार की आर्थिक सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी जगह संपन्न है। तो मेरा भी लक्ष्य यही कि जो भी मुझको सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं को अगर मैं किसी को दे करके और उसके जीवन में सुधार कर सकूं तो ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
1: ये बहुत अच्छा आपने बताया कि आपका अप्रोच है लोगों को हेल्प करने का। एक चीज जो आपके बारे में और बहुत लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं वो है आपका जमीनी स्तर से जुड़े रहना, यानी बिल्कुल भी कह सकते हैं कि वो एक प्राउड वाली बात नहीं आती है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है, आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली है, बहुत ज्यादा आपने नाम कमाया है, लेकिन आज भी वो चीज आपके अंदर दिखती है कि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है। इस चीज को बताइए, क्योंकि आज के अगर सामाजिक ढांचे की बात किया जाए तो लोग अच्छा काम करते हैं और अच्छी बात है अच्छा काम कर, लेकिन एक जो उस तरह से लेवल की बात देखने लग जाते हैं कि मेरा शायद ज्यादा अच्छा लेवल है, या बाकी लोग कहीं ना कहीं अपने लेवल वाले लोगों के बीच में उठना बैठना, उनको ही रेस्पेक्ट देना, लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया है। ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जिसमें आपका भी नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है कि आप हर तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हर धर्म के लोग आपको मानते हैं, हर जात के लोगों से आपका मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ साथ में है, ये कैसे होता है, क्या वैल्यूज हैं आपकी?
2: आपकी इस पूरी बात का अगर मैं एक दो लाइनें कह दूंगा तो पूरा उसमें उत्तर आपको मिल जाएगा कि कितनी चिड़िया उड़े आकाश, दाना है धरती के पास, अगर हम चाहे कितना भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन जो हमें आत्मिक सुख और अब एक प्यार आपस में बैठ करके मिलता है वो मुझे प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। कहीं भी जाता हूँ, कोई भी मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, उसके द्वारा जब मुझे पहचाना जाता है तो गुरुजी कह देना ही मेरे लिए लगता है कि जैसे मुझे बहुत एनर्जी मिल गई हो, और इसके लिए कहीं ना कहीं तो फिर मुझको भी सबके साथ मिलके रहना है और अच्छा लगता है रहने में।
1: क्या बात है, तो आपको अच्छा लगता है, इस वजह से शायद आपने इस चीज को अपनाया हुआ भी है, और कहीं ना कहीं जो मैंने बोला है ये कुछ लफ्ज नहीं है, ये आपकी जिंदगी की प्रैक्टिस है। लोग जानते हैं, जो भी आपको जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि हाँ आपके अंदर ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा है, आप चीजों को लेके बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अभी चूंकि हमारे श्रोताओं से हम बताना चाहेंगे कि हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो हम म्यूजिकल ब्रेक के बाद आके आपसे मिलेंगे। लेकिन सर से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा क्योंकि हमें पूरा सफर जानना है। आप रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, एचओडी रह चुके हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट एलबीएस के, पूर्व प्राचार्य भी रह चुके हैं एमएसआईटीएम गोंडा के, प्रोग्राम ऑफिसर एलबीएस एनएसएस के नोडल ऑफिसर रह चुके हैं, मतदाता जागरूकता ऑफिसर भी रह चुके हैं। इन सारी मसलों पे, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: डिलीशियस
8: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
7: और क्या क्या है खास?
8: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
7: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे बीच में आज बेहद ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर त्रिलोचन सिंह साहब, जो कि रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी एजुकेशन डिपार्टमेंट एलबीएस पीजी कॉलेज गोंडा। सर, आपसे हमने अब तक की जो भी बातें की, आपने उसका इस अंदाज में उत्तर दिया कि शायद हम भी कह सकते हैं कि लफ्ज नहीं बचे उसके बाद, और कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा आपकी वार्तालाप सुनने में। अब चूंकि आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया कि आपने पीएचडी तक किया है, क्योंकि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, उस दौरान आपने ये भी बताया कि पिताजी की जो आप लोग फैमिली थे वो कोई इतनी संपन्न भी नहीं थी कि बहुत सारे जो आपको कोर्सेस करने थे या जो भी संसाधनों की कमी कह सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से फुलफिल चीजें नहीं हो सकती थी, क्योंकि आप एक नॉर्मल फैमिली से थे। उस दौरान आपने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, उसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: अदनान भाई, चैलेंजेस तो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, और अगर चैलेंज हमारे सामने नहीं तो शायद हम सक्सेस भी नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो पहला ही, जैसे आप खुद ही कह चुके हैं कि एक सामान्य परिवार था, बहुत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन जहां पर इच्छा होती है वहीं पर रास्ता निकल आता है, और उसी के तहत जो भी रहा प्रोग्राम चलता रहा, जिंदगी चलती रही। और जब एमएड करके मैं निकला तो जॉब लगी, उसी जॉब के बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन किया जॉब में ही, और पीएचडी भी टाइम से निपटी, और आज तक उस रास्ते में बढ़ते हुए निकल गए। जब भी कभी मौका लगता था तो उस समय यही होता था कि पढ़ाई कर ले, पर परिवार व्यापार का परिवार था, व्यापारिक परिवार था, तो वहाँ पर पिताजी को भी सपोर्ट की आवश्यकता होती थी। उस सपोर्ट में हम लोग जिसे भी अवसर मिलता था उस अवसर को उनके साथ हम लोग साझा करके उनको सपोर्ट भी करते थे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ। और अगर आज मैं जो भी पढ़ पाया हूँ, जितना भी पढ़ा हूँ, उसमें मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये होना है, और उस होने है को लेकर के मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और आज आपके साथ हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। और कहीं ना कहीं जब आप सामान्य फैमिली से होते हैं तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति के लिए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना होता है, जो कि आपने किया, और सारे भाइयों ने आपने पूरी कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम भी ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में सभी के प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर इच्छा हो करना हो, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ हो नहीं सकती है, और प्रॉब्लम्स ही मुझे तो कई बार लगता है कि वो ही शायद आपको आगे ले जाने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के आने पे ही आपको पुश मिलता है लाइफ में, तो ही आप एक बार जागते हैं कि अरे मैं कहाँ स्टक हो गया था, मैं कहाँ रुक गया था, मुझे तो आगे बढ़ना है। तो प्रॉब्लम्स बहुत हिट करती है। आपने बताया कि आपकी लाइफ भी ऐसे ही रही है, आप गुंडा है, आपने यहाँ पे LBS ज्वाइन किया। LBS ज्वाइन करने के दौरान आपकी टीचिंग के जो किस्से थे बहुत ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हुए। आपका बच्चों से फ्रेंडली होना, उनके साथ बातचीत करना, और हर बच्चे से पर्सनल उसकी चीजों को जान पाना कि वो किन चीजों से पेन से गुजर रहा है या वो क्या फेस कर रहा है, ये आपका अप्रोच था। आपको गोंडा के विद्यार्थियों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि आपने तो बहुत प्यार दिया, आपको कितना प्यार मिला?
2: अब मुझे बच्चों की तरफ से जितना प्यार मिला है शायद उसका मेजरमेंट मेरे पास नहीं है। बस मैं इतना जानता हूं कि बच्चों के सामने जब भी मैं जाता था तो मुझको भी लगता था कि मेरे बच्चे हैं, और बच्चों ने भी मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। 6 बार मैं LBS कॉलेज में निर्वाचन अधिकारी बना, और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है किसी भी सत्र के चुनाव में कोई कठिनाई कभी भी नहीं आई। वो केवल मेरा ही प्रयास नहीं था, सबसे ज्यादा श्रेय उसका बच्चों को जाता है जिन्होंने शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मुझे सपोर्ट किया, और जो मेरे साथ लोग लगे रहते थे काम कर, जो भी सब मिलजुल करके हम लोग टीम थी, वो टीम मिल करके हम लोग पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराते थे। इसी तरीके से जो भी अवसर मिला, जो भी काम मिला, उस काम को मैंने हमेशा यही सोचा कि ये काम मिला है तो इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, काम चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो सीधे जवाब दे, लेकिन उसमें आनाकानी की कोई गुंजाइश नहीं थी। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ मैं काम करता रहा हूँ, और शायद इसीलिए मुझे आज भी लगता है जब बच्चे मिलते हैं, और यही नहीं कई बार लखनऊ में जाता हूँ वहाँ बच्चे मिल जाते हैं, रास्ते में कई बार बच्चे मिल जाते हैं, तो वो जब जो स्नेह देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो मेरे लिए शायद जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
1: देखिए हर किसी का अपना एक मोटिवेशन होता है, तो शायद आपका मोटिवेशन यही है कि जिस तरह से बच्चे आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आपकी बदौलत उन्होंने काफी कुछ चीजों को अचीव किया है, तो वही शायद आपकी कमाई है और वही आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देती है, जैसा कि आपका कहना है। एक चीज होती है कठिनाई। आपने बताया कि आप लगातार 6 बार निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे हैं LBS PG कॉलेज में, लेकिन देखिए चुनाव की जहां बात आती है वहां यंगस्टर्स की बात आती है तो बवाल होते ही होते हैं। एक दो कोई ऐसी घटना का जिक्र करिए ना कि जब कुछ दिक्कतें फेस हो रही थी उस बीच आप गए थे, तो आपसे जो कि बच्चों का हमने पहले ही बताया कि कनेक्शंस बहुत अच्छा होता था, तो किस तरह बच्चों को देखते ही आपको वो कन्विंस हो गई या वो सारी चीजें अपने आप रिजॉल्व हो गई, कुछ तो हुआ होगा।
2: एक बार निर्वाचन में मुझे याद है कि पहले होता था कि जब बच्चे नामांकन करने जाते थे तो पूरा अपना सजा धजा के जब पूरे साजोबाज के साथ जाते थे, लेकिन फिर एक बार निर्णय लिया गया कि केवल बच्चे ही जाएं जो यहाँ पर इनरोल्ड हैं, और बिना किसी संसाधन के, बिना किसी हाई फाई स्टेटस के आराम से जाएं, निर्वाचन करें, चले आएं। जब उसको पालन करने की बात आई तो जो भी प्रत्याशी थे उसमें से कई प्रत्याशियों ने विरोध किया, धरने पर बैठे। एक दिन नामांकन हो गया, जो लोग करना चाहते थे उन्होंने किया, दूसरे दिन भी वही स्थिति बन रही थी, लेकिन अंत में मैंने कहा कि ऐसा है चलिए हम लोग डायरेक्ट बच्चों से बात करते हैं। और मुझे याद है कि मैं गेट के बाहर निकल के बच्चे जहां बैठे थे वहां गया बात करने, और आज हमारे बीच में नहीं है हमारी मंजुल दीदी जो बच्चों के लिए वो भी बहुत फेमस थी बच्चों से प्यार करने में, और बड़ा सपोर्ट था उनका बच्चों के लिए, तो वो हमारे साथ बाहर निकल आई। और बाहर जब मुझको देखा, उन्होंने बाहर मैं खड़ा हूँ तो पीछे से आई, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, और उन्होंने मुझको एक थप्पड़ भी मारा कि जो अंदर चलो। हमने कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों से बात करने दीजिए, बच्चों से बात करते हैं। और जब बच्चों से बात की गई तो समस्या का समाधान अपने आप निकल आया। तो मुझे, मैं उसको कोई कठिनाई नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ बाल हट हर जगह होता है, और बाल हट शायद हम भी अपनी जिंदगी में रहे होंगे और बच्चों ने भी रहा, तो ये सब तो बड़ी सामान्य सी बातें हैं। लेकिन जितना भी ये सफर रहा निर्वाचन अधिकारी का, वो बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, बड़े सहयोग से संपन्न हुआ, और मैं उसके लिए अपने पूरा सभी साथियों को और उन बच्चों को जिनके बीच में ये घटनाएं रही हैं या मैं निर्वाचन अधिकारी रहा हूँ आज भी, मैं उनके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
1: क्या बात है, देखिए ये चीज तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है कि देखिए बच्चों का तो एक हट होता है, बाल हट जिसे आपने बोला, और लेकिन कहीं ना कहीं एक टीचर, एक मेंटर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस तरह से उनकी बातों को सुना जाए, एक जो गैप होता है उसको हटा के उन तक डायरेक्ट जाके उनसे उनकी समस्याओं का कारण पूछा जाए, फिर उसका निवारण किया जाए, जिसमें बखूबी आप सफल भी हुए। अभी इससे पहले जब हमने आपका परिचय दिया था तो हमने ये भी बताया था कि आप NSS के प्रोग्राम ऑफिसर भी रह चुके हैं, नोडल ऑफिसर, आप NSS के प्रोग्राम ऑफिसर रह चुके हैं, उसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: महाविद्यालय में मैंने यहाँ LBS में 1984 से सेवाएं अपनी शुरू की थी, और 2002 में मुझको NSS का प्रोग्राम ऑफिसर बनाया गया, और ये सफर मेरा 2007 तक चला। 2005 में मुझे बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर का अवार्ड विश्वविद्यालय की तरफ से दिया, कुलपत महोदय ने दिया। सफर चलता रहा, फिर उसी में 2005 में ही मुझे दो जनपद, गोंडा और बलरामपुर जनपद का NSS का नोडल अधिकारी बनाया गया। 2007 में मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके बाद 2008 से मैंने महाविद्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी का अधिकारी का पद लिया, और जो वो टिल रिटायरमेंट वो मेरा पद चलता रहा। NSS का सफर मेरे लिए, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, बहुत ही सफल सफर रहा है। उसमें मैं 2012 में हम लोगों को दायित्व दिया गया कि आप लोग जो भी निर्वाचन हो रहा है, विधायकी का तब निर्वाचन था
1: जी,
2: तो उसमें कहा गया कि आपका जो भी निर्वाचन हो रहा है इसमें आप लोग भी अपनी भूमिका अदा करिए। बच्चों की भी ड्यूटियां लगाई गई, हम लोगों की भी लगी, और मुझे बलरामपुर जाएं मतदाता जागरूकता अधिकारी बना करके भेजा गया। वो भी कार्यकाल समाप्त हुआ। फिर उसके पश्चात मुझे NSS में ही श्री BL जोशी साहब, उस समय गवर्नर थे, उनके द्वारा एक सभा में कई लोगों को बुला करके उनको सबको गवर्नर अवार्ड दिया गया, जिसमें एक मैं भी था। मेरा कहने का मतलब कि ये NSS का सफर शायद मेरी सर्विस लाइफ का, अगर अपनी नौकरी पढ़ाई को अब थोड़ा सा अलग कर दूं, तो शायद सबसे बढ़िया सफर रहा है, क्योंकि तमाम तरीके के कैंप जिनमें टीम को लेकर के बाहर जाना होता था, और कई बार ऐसा सुअवसर आया कि 3 दिन पहले कहा गया कि ये टीम लेके जा रहे थे फला जगह वाले, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है, अब आप चले किसी तरीके से लेके जाइए। और उसमें मैं कलकत्ता भी टीम लेके गया, मद्रास भी टीम लेके गया, जयपुर भी, मतलब कई जगह, उसमें नाम गिराने में बड़ा समय लगेगा, 6-7 जगह मैं बच्चों को लेकर के, और उनके कैंप में, वो राष्ट्रीय एकीकरण कैंप होते थे, NIC बोलते थे, या ये 2007 में दिल्ली में कैंप लगा था, तो उस सब में कैंप में बच्चों को ले जाता था। और जब बच्चों को ले जाओ, उस समय एक अलग सी जिम्मेदारी लगती थी कि हमारे साथ बच्चियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो वो भी दिन याद है कि पूरी पूरी रात ट्रेन में बैठे हुए निकल जाता था और बच्चों को देखता था कि कम से कम बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, और शायद ईश्वर ने सफलता भी दिया और सारा काम बड़े आराम से निपटा है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और बच्चों के सहयोग को भी अनुभव करता हूं।
1: जी आपने सर बताया कि आप बहुत दूर दूर टूर ले गए, आपने कलकत्ता का नाम, मद्रास का नाम लिया, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक कभी आपने भी जिक्र किया है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और ये बात आज की नहीं है, ये बात 2002 से 2007 के बीच की आप बता रहे हैं कि आप उस ड्यूरेशन में कई बार कैंप ले गए हैं। उस वक्त बच्चों से तो आपका डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन होता था, बच्चे आपको जानते थे, लेकिन लड़कियों के माता पिता को कन्विंस करना, इतनी दूर ले जाना, ये कैसे करते थे? और दूसरी बात, किसी एक कोई टूर की कोई अगर कुछ यादें अगर आप साझा करना चाहें तो प्लीज बताएं।
2: टूर के जहां तक बच्चों को ले जाने की बात थी, बच्चों को ले जाने में प्रायः मैं ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देता था जो महाविद्यालय में भाई बहन या एक ही परिवार के अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको टीम में रखने में प्राथमिकता देता था। जब कोई ऐसा मौका पड़ता था तो गार्जियन से जाकर के मैं स्वयं मिलता था और अपनी गारंटी के आधार पर बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करता था। और वहाँ सुविधा ये होती थी कि अगर भाई बहन हैं या चचा जात भाई बहन हैं तो वो अगर एक ही परिवार के हैं तो दोनों बच्चों को मैं ले जाता था। तो उसमें ये होता था कि एक बच्ची अगर तैयार हो गई है तो फिर कोई भी गार्जियन इनकार नहीं करता था। वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे इतना कोऑपरेशन मिला कि कभी भी किसी परिवार से हमको कोई कठिनाई नहीं हुई। और रहा सवाल जो आपने अभी कहा कि कोई ऐसा अनुभव बताइए, तो एक अनुभव अगर मेरी बात सुनेंगे ब्रिजलाल तिवारी जी, तो एक बार मैं मद्रास टीम ले गया था
1: जी।
2: वो 2006 की बात है जहां तक मुझे याद आ रहा है
1: जी।
2: तो हम लोग स्टेशन के बाहर खड़े थे, वो अपने फ्रेंड से कह के और चला गया। तो जब 10 मिनट बाद मैंने पूछा वो कहाँ है, तो पता लगा वो वॉशरूम गए हैं। और वॉशरूम में उनकी गलती ये थी कि वो शायद इधर समझ लिया उन्होंने कि चाहे जहाँ खड़े हो जाओ, तो वहाँ उन्होंने जो भी अपना किया उसके बाद तुरंत पुलिस वाले उनके पास आ गए और उनको पकड़ा, साथ लेके चले गए। आधा घंटा बीत गया, मैं बड़ा डिस्टर्ब कि कहाँ बच्चा गया, कहाँ गया। खैर एनी हाउ 40 मिनट बाद वो लौट के आए। तो जब उन्होंने कथा बताई, अब उधर सबसे बड़ी कठिनाई कि वो गायब हैं और उनके घर से फोन जा रहा है और मैं घर वालों का फोन रिसीव करके क्या कहूँ, अगर वो कहते बात कराओ तो मैं कैसे बात कराऊँ। तो वो एक घंटा जो मेरा बीता वो शायद मेरे लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी थी। और जब आया तो हमने कहा कि बात क्या है, कहाँ गए थे तुम, तब उसने खुल के बताया कि सर ऐसी सी गलती हमारी थी और ऐसे में उन्होंने पकड़ लिया। मैंने अपना बैज दिखाया, गले में पहना हुआ था, सब कुछ दिखाया, तब जाकर के किसी प्रकार से उन्होंने हमें छोड़ा। और तब मोबाइल की फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, रोमिंग पे होता था, बच्चों के पास होता भी नहीं था कि हमको कॉल कर सके, हालांकि मेरे पास था। तो ये सब अनुभव हैं जिंदगी के, सब जिंदगी ऐसे ही चलती रही, एक एक दिन आगे बढ़ता रहा और आज आपके साथ बैठा हूँ। सेवानिवृत्त हुए भी मुझे 8 साल हो गए।
1: बिल्कुल सही बात है। और आज आप अपने उस शानदार सफर को याद करते हुए बैठे हैं और उस शानदार सफर को एक बार फिर से रिकॉल किया जा रहा है इस टॉक शो के माध्यम से, उसको याद किया जा रहा है। इसी बीच में हम अपने श्रोताओं से बताएंगे कि फिर से हमारे म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है और हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन आने के बाद हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि NSS का अपना क्या बिम है, यानी सभी की अपनी एक फाउंडेशन होती है, सभी के अपने एक लॉज होते हैं, एक वैल्यूज होती है। NSS किस लिए होता है, NSS में किस तरह की चीजों को बच्चों से कराया जाता है, NSS क्यों जरूरी है किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्तर 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
9: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
10: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
9: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
11: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
12: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
11: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
12: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
11: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
12: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो 99.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो हमारी जो बातचीत आज चल रही है वो है डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर से चल रही है और उनसे अभी हमें चूंकि ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि एनएसएस के बारे में हम जानेंगे, तो सर प्लीज हमारे श्रोताओं को बताइए कि एनएसएस होता क्या है।
2: एनएसएस एक प्रकार की सामाजिक सेवा का दायित्व बच्चों को दिया जाता है कि समाज में हमको कैसे रहना है, और एनएसएस का नारा ही है मैं नहीं तुम, कि मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे लिए मैं काम करूंगा। और उसमें ये होता है कि बच्चों को एक प्रकार से संदेश दिया जाता है, बच्चों के थ्रू समाज को संदेश दिया जाता है कि हम जो भी अपने अगल बगल समाज में रहने वाली बुराइयां जो भी हैं उन बुराइयों को हम कैसे दूर करेंगे, इसमें बच्चों को ट्रेन किया जाता है। और बच्चों के थ्रू तमाम अनेक प्रकार के कैंप लगा के उसमें अनेक प्रकार के प्रोग्राम दिखा करके बच्चों के थ्रू समाज को जागरूक किया जाता है, वो चाहे दहेज प्रथा की बात हो, चाहे बेरोजगारी से निराश व्यक्तियों की बात हो, चाहे पारिवारिक उत्पीड़न हो, या आसपास में होने वाली बीमारियां जो भी हमारे अगल बगल गंदगी फैली रहती है उन बीमारियों को कैसे बचा जाए, इन सब के बारे में बच्चों को पर्याप्त जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। और एक तरीके से कह लीजिए कि सामाजिक सेवा ही एनएसएस का मुख्य लक्ष्य है।
1: सामाजिक सेवा ही आपने बताया कि एनएसएस का मुख्य लक्ष्य है, ये बात समझ में आती है। साथ ही साथ एनएसएस के बच्चों में जो एक चीज का ध्यान हमेशा दिया जाता है वो होता है डेकोरम, यानी किस तरह से वो टाइम को मैनेज करते हैं, खुद को मैनेज करते हैं। जैसे एक आर्मी रूल होता है, उनकी सारी चीजें अपने टाइम पे होती है। आप बच्चों को ट्रेन करते हैं इस तरह से, बच्चों को अभी आपको क्या लगता है एनएसएस के बच्चों की एक प्रॉपर ये ट्रेनिंग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिताओं को इस बात को समझना होगा कि उनके बच्चों को लेकर उनका एक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा।
2: अब जहां तक दिनचर्या की बात है, जब बच्चा हमारे पास रहता है, जैसे हमारे टाइम में अब तो 7 दिन का कैंप हो गया, मेरे समय में 10 दिन का कैंप लगता था और दिन रात कैंप उसको बोला जाता था। बच्चा घर से अपना बिस्तरा लेकर के, अपना कपड़ा लेकर के और साथ में खाने के लिए बर्तन लेकर के आता था और 10 दिन कैंप में रहता था, 9 रातें गुजारता था कैंप में। उस समय उसकी दिनचर्या हम लोग अपने हिसाब से, जो विश्वविद्यालय के द्वारा तय होता था कि 5 बजे हर बच्चे को उठ जाना है, फिर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के 6 बजे उसको मैदान में आ जाना है। वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती थी, फ्लैग होस्टिंग के साथ साथ फिर एनएसएस के गीत होता था, गीत के बाद बच्चों को वहीं पर एक्सरसाइज कराई जाती थी। कई बार बच्चों के बीच में से ही कोई आ जाता था एक्सरसाइज करा दे, नहीं तो हम लोग बाहर से भी बुलाते थे, जो भी पुराने बच्चे होते थे एनएसएस वाले या गेम्स टीचर मिल जाते थे, आपस में संबंध ऐसे होते हैं कि वो मिल जाते थे, तो वो आकर के बच्चों को एक्सरसाइज कराते थे। और उसके पश्चात मतलब जो भी कार्य था, चाहे वो नाश्ता करना है तो वो भी टाइम फिक्स होता था, बकायदा ब्लैक बोर्ड पे लिख के रख दिया जाता था, दिखा दिया जाता था कि ये पूरा प्रोग्राम है, और उसी प्रोग्राम के हिसाब से बच्चा ठीक 9 बजे श्रमदान के लिए तैयार हो जाता था। फिर दोपहर में कट आया, भोजन किया, फिर उसका जो है एकेडमिक वर्क शुरू हो जाता था, कोई ना कोई व्याख्यान देने वाला आता था। उन्हीं में हम लोग गाँव का सर्वे भी कराते थे, हर प्रकार का सर्वे होता था उसमें कि कितने पढ़े लिखे हैं, समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम लोग अधिकारियों तक पहुंचाते थे और उसको उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे बातचीत होती थी, और मैक्सिमम अधिकारी भी सपोर्ट करते थे उन कार्यक्रमों को। अधिकारी स्वयं आते थे और देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है। और वो 10 दिन जब बच्चा निकलता था तो वो लगता था कि एक बच्चा ट्रेंड करके हमने दे दिया है, और हमें उम्मीद है कि अगर वो घर जाता था तो शायद उस दिनचर्या से वो हटता नहीं था और अपना दिनचर्या उसी प्रकार की बना लेता था, क्योंकि समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। समय से अगर हम हर कार्य करेंगे तो अपने आप हमारी आधी समस्याएं हल हो जाती हैं।
1: समय से आपने कहा कि अगर कार्य किया जाए तो आधी से ज्यादा जो समस्याएं हैं वो खुद ब खुद हल हो जाएगी, और मैं शायद इसी बात को कहने भी जा रहा था लेकिन आपने उसको पहले ही बोल दिया कि 10 दिन का जो ये ट्रेनिंग होती थी कहीं ना कहीं बच्चों को आगे की लाइफ के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था, और बच्चे घर पे जाके उतना 100% अगर नहीं भी फॉलो हो पाता था, लेकिन 50 प्लस या जितना भी वो कर सकते रहे होंगे उनमें से कुछ ही चीजों को लेके वो हमेशा लाइफ में उन्होंने अप्लाई किया होगा, लेकिन किया होगा और उसका फायदा भी उनको मिला होगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। एक चीज जो मैंने सुना है आपके आने से पहले कि जब तक आप LBS में NSS के लिए ऑफिसर रहे हैं उस दौरान आपने बहुत बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, बहुत ज्यादा एक ऊंचाइयों पे ले गए हैं NSS को लेके, आपकी कुछ अचीवमेंट्स भी रही होंगी, उनके बारे में बताइए आप।
2: अब जो NSS जो जब जो मेरा कार्यकाल रहा NSS में, उसमें ऊंचाइयां कितनी गईं, कितना ऊपर उठे, ये तो आप लोग मूल्यांकन करेंगे या जो लोग जानते हैं, जो लोग रहे होंगे, लेकिन प्रयास यही था कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। उसी में टीम भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको पूरा सपोर्ट करे। और जहां तक मेरे अचीवमेंट्स की बात है, उसमें मुझे 2005 में विश्वविद्यालय की तरफ से बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर का अवार्ड मिला। उसी में मुझे यहाँ की जिलाधिकारी डॉक्टर रोशन जैकब ने भी 2013 में अब कार्यक्रमाधिकारी और NSS को चुनाव में सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी अवार्ड दिया था। उसी में BL जोशी साहब से भी 2013 में ही अवार्ड मिला था। और काम करने की जहां तक बात है, काम से कभी परेशान नहीं हुआ मैं। मुझे याद है जब 2004 में ये विश्वविद्यालय से आया कि आपको अपनी टीम लेकर के, यूपी की और उत्तराखंड की टीम लेकर के 1 महीने 4 दिन के लिए दिल्ली जाना है, जहां पर 26 जनवरी 2005 की परेड में आपकी टीम शामिल होगी, तो वो एक चुनौती थी मेरे लिए कि इतने दिन के लिए परिवार को छोड़ना। और दिल्ली की ठंडी वैसे भी मशहूर है
1: जी,
2: तो दिल्ली की ठंड में जा करके वहां पर रहना, और वो सब बच्चे गए, सब वहां पर पूरा कार्य किया, वहां पर भी एक तरीके का अच्छा लगा। मुझे आज भी याद है कि जब शाम को कल्चरल प्रोग्राम होता था तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने हमसे कहा, जब भी हमारी 1-2 दिन बात उनसे हुई, 2-3 दिन के बाद उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और संचालन का काम आप ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। और वो मेरा सौभाग्य था और जो भी मिला उसको खूब अच्छी तरीके से निभाया। 1.25 महीने के बाद जब लौटने का समय आया तो शायद वो उतना कोई गम नहीं रहा होगा जितना गम उस समय लग रहा था कि हम लोग 1.25 महीने यहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहे, परिवार की तरह रहे, पूरे भारतवर्ष के बच्चे उसमें आए थे, बड़ा अच्छा लगा। और उनसे बिछड़ने का गम आज भी कभी सोचते हैं उन बच्चों के, जब कभी फ़ोन आ जाते हैं या उनकी कभी कोई, अक्सर बच्चे कोई ना कोई फ़ोन करते रहते हैं तो एक याद पुरानी ताज़ा हो जाती है। जैसा कि आज आपने पुरानी पूरी मेरी 39 साल की नौकरी की जो भी यादें हैं, पूरी यादें आपने एकदम से मानस पटल पर मेरे जिंदा कर दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, आपका आभारी भी हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक चीज सर, मैं मतलब काफी टाइम से मन में चल रही थी, सोचा आपसे पूछ ही लूं, क्योंकि आप प्रोफेसर रहे हैं, आपने लेक्चर्स बहुत दिए हैं और बच्चों को उससे फायदा हुआ है, और ये भी मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने लाइफ के बारे में ज्यादा ही लेक्चर्स दिए, इसलिए बच्चे शायद ज्यादा ही आपसे अटैच हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही पता था कि ये किताबी ज्ञान तो अपनी जगह है लेकिन इनको जिंदगी में सफल होना, जिंदगी में खुद को इनको जानना कितना जरूरी है। कोई तो ऐसी शख्सियत होगी जिनको सुनना आपको भी अच्छा लगता हो।
2: ये तो खैर बिल्कुल सही बात है, सुनने अपने अगर केवल वक्ता ही बनना बहुत अच्छी चीज नहीं है, श्रोता भी होना चाहिए
1: जी।
2: और उस श्रोता के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो जो मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था तो डॉक्टर JP सिंह साहब थे उस समय प्राचार्य, उनका जो भी हमें आज भी याद है, उन्होंने हमसे जब फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के बाद जब बातचीत हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस दिन ना आना हो उस दिन एक दिन पहले बता दो अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि कई कार्य ऐसे भी आ जाते हैं जो तत्काल आपको अवकाश लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पहले से बता देंगे तो बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे कि सर वो टीचर आए कि नहीं आए हैं। तो ये एक उनका जो एक कहने का तरीका था और जो उन्होंने कहा वो मैंने पूरी नौकरी में फॉलो किया। अगर मेरा कोई शुरू का पहले से प्रोग्राम तय होता था तो उस प्रोग्राम के बारे में मैं परमिशन ले लेता था कि इस दिन से लेकर इस दिन तक सर मैं नहीं रहूंगा। बच्चों को भी प्रायर नोटिस दे देता था कि आप ना आइएगा, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने आए लेकिन एजुकेशन पढ़ने ना आइएगा। और वो एक अच्छा अनुभव रहा उसका कि बच्चा परेशान नहीं होता था, नहीं तो बच्चे प्रिंसिपल के सर पहुंच रहे हैं कि सर ये आए हैं कि नहीं आए हैं, तो सुन के थोड़ा अटपटा लगता था। और जो भी मुझसे बड़ा रहा है उस बड़े की बात सुनता मैं जरूर था, भले मैं उसको कभी फॉलो कर पाया नहीं कर पाया वो अलग बात है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता कि मुझसे बड़े हैं और अगर कुछ कह रहे हैं सुना जाए। और सुनना तो छोटे की भी बात चाहिए, अगर अपना छोटा भी कोई चीज़ कहता है तो उसकी भी बात सुननी चाहिए और उसके बाद तब आप कैलकुलेशन करिए कि क्या सही है क्या गलत है।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि आप पहले सुन लें उसके बाद आप कैलकुलेशंस करिए कि क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत से मुझे एक बात याद आ रही है कि बच्चे जो होते हैं वो 11, 12 का एक ऐसा फेज आता है लाइफ में जब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको ग्रेजुएशन में क्या करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन से तय होता है कि उनका आगे भविष्य क्या होने वाला है, प्रोफेशनल वो क्या चीज़ों करने वाले हैं या प्रोफेशन किन चीज़ों में बनाने वाले हैं। इस समय पे अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है और आपकी इस वक्त हमारी आपकी बातचीत कर रहा है क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा अनुभव है, आपकी टीचिंग मेथड बहुत लोग लाइक करते हैं पसंद करते हैं, आप खुद भी एक सक्सेसफुल कह सकते हैं हमारी सभी की निगाह में आप इंसान हैं, तो प्लीज़ आप एक बार सजेस्ट करिए कि ऐसे बच्चों को अपना कौन सा वो सब्जेक्ट चूज करे या वो किस स्ट्रीम में जाए, उसको कैसे तय करे, उसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे उसके लिए।
2: इसके लिए नान जी जैसे बच्चा जो एज आपने बताई इंटर वाली 11th 12th की एज, तो उसको चूंकि मैं अपने सब्जेक्ट में पढ़ाता भी था उसको किशोरावस्था बोलते हैं जो 13वें वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी गई है, और वो एक अजीब स्थिति होती है बच्चों के सामने जिसको तनाव पूर्ण यानी स्ट्रेन स्ट्रॉम एंड स्ट्राइव, ये तीन चीजें होती हैं बच्चों के सामने, उनको तनाव बना रहता है, हर तरीके का चेंजेस उनमें आते हैं और उन्हीं चेंजेस में उनको घर वाले कहते हैं तुम बड़े हो गए हो, और जब कोई काम उससे कोई बात होती कहते लाइए मैं ये कर लूंगा तो कहते नहीं अभी तुम छोटे हो रहने दो, और कोई अगर काम गलत हो जाता कहते इतने बड़े हो गए दाढ़ी मूंछ निकल आइए तुमको तमीज नहीं काम करने की।
1: बिल्कुल,
2: तो वो टोटली कंफ्यूज रहता है कि मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं।
1: सही।
2: इसी प्रकार से जब विषय चयन की बात आती, जो आपने जानना चाहा विषय चयन की बात आती, तो बच्चा सोचता है मैं क्या करूं, तो घर वाले भी उसको निर्णय नहीं लेने देते, अधिकांश परिवार निर्णय अपने आप लेते हैं और बच्चे के ऊपर अपना निर्णय थोप देते हैं भले बच्चे की उसमें इच्छा है या नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब बच्चों की भी इच्छाएं लोग जानने की कोशिश करते हैं, और जहां तक मेरा सवाल था मैं बच्चों से जब इस प्रकार की कठिनाई बच्चे लेकर के आते थे तो उनसे सीधे होता था कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि तब का जमाना टफ था, अब तो इतना स्कोप हर सब्जेक्ट का है कि किसी भी सब्जेक्ट में बच्चा जाना चाहे और उसको सफलता मिलती है और नौकरी प्राप्त होती, लेकिन उस समय का पीरियड बड़े लिमिटेड एरियाज होते थे, बड़ी लिमिटेड सर्विसेज होती थी, लेकिन फिर भी उनमें सक्सेस पाने के लिए बच्चे की इच्छा बहुत जरूरी है। पता लगा हमने बच्चे को वैज्ञानिक वर्ग दिला दिया, बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा, तो उसमें होता ये था कि या तो बच्चा फेल हो जाता था या बच्चा पढ़ाई छोड़ देता था या क्लास से गायब हो जाता था, क्लास बंक कर लेता था। तो उसमें बच्चों को सबसे पहले देखा जाए, और जो मेरा अपना रहा अनुभव कि बच्चे अगर पूछते थे विषय लेने के लिए क्या है कैसे विषय लिए जाए, जब इंटर करके बच्चे आते थे हम लोग पास और पूछते सर कौन सा विषय ले ले, तो दो शब्द होते थे, एक तो होता था अगर मेहनत करनी है तो ये विषय है और अगर परीक्षा पास करनी है तो ये विषय है। अब निर्णय तुमको लेना है कि कैरियर हर एक में है, बस तुम देख लो कि तुमको किस में जाना है, जो तुम्हारी इच्छा हो जो तुम्हारी समर्थ जहां तक समर्थता है उन विषयों का चयन करो, ये हमेशा से मेरी राय रही है बच्चों के साथ।
1: जी सर, लेकिन एक बात आपने जो इसमें बोला उससे हम भी मुतासिर हैं कि हाँ इंटरेस्ट एरिया बहुत मैटर करता है, सबसे पहली प्राइमरी चीज है, लेकिन सर समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों से सिर्फ इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ वक्त के लिए। मान लीजिए उन्होंने किसी को देखा कि कोई बहुत अच्छा नाम हो रहा है उसका तो इस वजह से करने लग गए, या किसी को देखा कि प्रायोरिटी बहुत ज्यादा दी जाती है, बहुत ज्यादा ये VIP कल्चर में रहते हैं, इस वजह से उनसे इन्फ्लुएंस हो गए। एक तो होता है किसी ने राय दे दी कि इसमें पैसे ज्यादा है, इसको कर लो, उसके बाद भी बच्चा कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअल में किया क्या जाए। तो क्या वहां पे बच्चे का खुद का ऑब्जर्वेशन काम आता है कि एक्चुअल में वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको उसको करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, यानी वो कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट दे देता है, शायद वो चीज उसके लिए बेस्ट हो सकती है। सर आपका क्या मानना है?
2: नहीं, ये किसी को देख करके ये सोच लेना कि इसमें पैसा ज्यादा है या इसमें ख्याति ज्यादा है, इसमें प्रसिद्धि ज्यादा है, इस प्रकार का निर्णय बच्चों के द्वारा लिया जाना एक स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है और उस अनुकरण में वो सोचता है। लेकिन हमको भी ये देखना होगा कि क्या बच्चा उस तरीके से कर पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: और उसमें हमको बच्चों को बैकिंग देनी होगी, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम बच्चा ना कर पाए, या अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो सफलता में कोई उसमें संदेह नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास जरूरी होगा, उसके लिए सपोर्ट जरूरी होगा। हम निराशावादी दृष्टिकोण ना अपनाएं और अगर बच्चा जो भी सोचता है उस हिसाब से उसको समझाएं कि इसमें ये करना पड़ेगा, अपना सामर्थ्य देख लो, और उसके बाद हम उसको बैकिंग दिए रहें, सपोर्ट दिए रहें, बकअप करते रहें, क्योंकि बकअप करना बहुत जरूरी है। अगर जरूरी ना होता तो शायद जो भी गेम्स होते हैं उनमें कहा शाबाश शाबाश बट दौड़ते रहो तो शायद इसका कोई महत्व ना होता, और ये एक तरीके से टॉनिक होता है किसी भी प्लेयर्स के लिए। उसी तरीके से हमको बच्चों को भी समय समय पर उनकी चेकिंग करते हुए उनको सपोर्ट देना होगा ताकि वो अपने जीवन में अच्छी तरीके से बढ़ सके।
1: जी आपने बिल्कुल सही बताया कि एक तो बैकअप हो गया, दूसरी चीज है कि बच्चे को अपना सामर्थ्य पता होना चाहिए और जो उनको गाइड कर रहा है वो उनको बता पाए कि उनका सामर्थ्य क्या है, यही शायद एक बेहतर तरीका है बच्चे को सही करियर चूज कराने की दिशा में। ये बात हो गई करियर के ऊपर। एक आपसे जुड़ी हुई बात हम पूछना और चाहेंगे कि आपके हर किसी की अपनी जिंदगी की कुछ वैल्यूज होती हैं जिसको इंसान कभी नहीं तोड़ता है और उसको लगता है कि वो वैल्यूज ही उसको जीने के लिए इंस्पायर करती है, वही प्रेरणा होती है। आपकी जिंदगी की क्या वैल्यूज हैं, आपकी जिंदगी के क्या फाउंडेशंस हैं?
2: बड़ा अजीब प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अपनी च्वाइस बता पाना ये हर एक के लिए संभव नहीं है, लेकिन अब आपने पूछा है तो कुछ थोड़ा कम ज्यादा करके हमारा ये लक्ष्य ये रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के काम आ सकते हैं आप तो वो शायद सबसे बड़ा आपका लक्ष्य होगा। और अगर किसी को जरूरतमंद को सपोर्ट कर देना, किसी को रास्ता बता देना, किसी की मुसीबत में जाके खड़े हो जाना, किसी के काम को हल कर देना, ये मेरे जीवन का पहला लक्ष्य रहा है। मैं जब किसी काम को करना शुरू करता था तो उसमें मैं ना दिन देखता था ना रात देखता था, किसी को सपोर्ट करना है देखता था कि इनको जरूरत है, उनको जरूरत के हिसाब से सपोर्ट करता हूँ। और अपने एक लक्ष्य हमारे जीवन का, क्योंकि मैं एक ही चीज मानता हूँ कि दुनिया में हमारे जैसे बहुत लोग हैं और हमें जब भगवान ने सब कुछ दिया है तो अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, कोई नीडी व्यक्ति ऐसा है जिसको वास्तव में जरूरत है और उसके काम अगर हम आ सकते हैं तो शायद वो मुझको जो कुछ भी मिला है वो शायद उसी के आशीर्वाद से मिला है, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं किसी के काम आ सकूं।
1: क्या बात है। तो किसी के काम आना ये बहुत बड़ी बात है, और शायद वो गाना भी जो गाया गया है मुकेश के जरिए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
2: बिल्कुल
1: किसी का गम ले सके तो ले उधार, जीना शायद इसी का नाम
2: है। का नाम है,
1: और कहीं ना कहीं ये आपकी सोच का एक पैटर्न दर्शाता है कि आप भी इसी सोच को फॉलो करते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा है और एक बहुत बड़ा बल्कि हिस्सा है। सर आज आप हमारे बीच में आए, आपकी हमने पहले तो लाइफ के बारे में जाना, फिर आपके काम के बारे में जाना, फिर आपकी वैल्यूज के बारे में जाना, और ना जाने कितनी सारी बीच में बातें होती रही जिसका आपने एक अपने अलग अंदाज में ही रिप्लाई किया था, शायद जिसके लिए लोग आपके फैन हैं या जिसके लिए बच्चे आपको इतना मानते हैं, वही सरलता वही सहजता आज इस टॉक शो के दौरान भी आपसे बातचीत के दौरान देखने को मिली, वो चीजें आपने शो किया। जाने से पहले हर गेस्ट से एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सर आप बैठे हैं देवी पाटन मंडल और गोंडा के पहले रेडियोस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में। आने वाले टाइम में गोंडा शहर के लिए या जो भी लिसनर्स इसको सुनते हैं, आने वाले टाइम में ये क्या वैल्यू ऐड कर रहा होगा लोगों के लिए?
2: आने वाले समय में बहुत सफलताएं मिलेंगी, और हमने तो अगर केवल हम नारी ज्ञानस्थली की ही बात करें तो हमने तो जब शुरुआत हुई थी तब से हम इस संस्था को जानते हैं। हमको आज भी याद है कि इसकी संस्थापिका डॉक्टर श्रीमती कृष्णा सिन्हा जो कृष्णा सिन्हा जो आज भी हमारे बीच में नहीं है, हमको उनका परिश्रम आज भी याद है। जिस समय उन्होंने संस्था की स्थापना किया तो उन्होंने लोगों से सहयोग भी लिया, ये घमंड नहीं दिखाया कि हमारे पास है हम कर लेंगे। और आज भी हमको उनका याद है कि एक वाक्य था उनका कि बूंद बूंद से घड़ा भरना, और उसमें उनका ये कहना था कि अगर आप जितना भी दें वो तो अलग चीज है, नहीं तो आप एक रुपया दान दे दें। तो वो इस तरीके से सपोर्ट लेना, वो आज भी हमारे दिमाग में उनका सेंटेंस घूमता है। और मुझको लगा कि किस तरीके से दो तीन बच्चों को लेकर के उन्होंने वहाँ अपने घर के सामने स्कूल को कॉलेज शुरू किया था, और आज कॉलेज में हमें लगता है कि देवीपाटन मंडल में अगर नारी ज्ञानस्थली का नाम आता है तो एक अच्छे कॉलेज के रूप में नाम आता है कि जहाँ पर नकल भी नहीं है, पढ़ाई है कायदे से, बच्चे पूरे साल आपको मिलेंगे, और जो सबसे बड़ी बात है स्टाफ भी अच्छा है। और रहा सफलता का सवाल, तो अगर हम परिश्रम करेंगे तो हमको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने बहुत पुरानी

0: कभी व्यर्थ नहीं जाता है और वो सेंटेंस हमारे दिमाग में एकदम बैठ गया तो हमने कोई बात नहीं, नहीं कुछ मिलता कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो उस भावना को लेकर के मैंने जो वहाँ 6 महीने काम किया, मुझे याद है फरवरी में, 4 फरवरी से काम शुरू किया था और अगस्त में हमारा सिलेक्शन बलरामपुर में हो गया। शायद वही सेंटेंस आज भी हमारे दिमाग में घूमता है और बच्चों से जब भी कोई बात होती, जब बच्चा कोई राय मांगता है या कोई ऐसी बात होती, उसको मैं कहता हूँ ये सेंटेंस हमेशा याद रखना, अगर आपने परिश्रम किया है तो परिश्रम कभी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये मैं सोच के हमेशा जिंदगी चलती रही यही सोच करके, और सफलताओं ने भी पीछा नहीं छोड़ा, सफलताएं मिलती चली गई, आगे बढ़ता चला गया।
1: बिल्कुल सर, और इसी के साथ हम बहुत सारी आपको विशेष देंगे कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, तो आपका आशीर्वचन हम पे हमेशा बना रहे, ऐसी हम कामना भी करते हैं आपसे।
0: मैं अपने पूरे श्रोताओं को और खास तौर से नारी ज्ञान स्थली के पूरे स्टाफ को, अदनान भाई को विशेष रूप से, कि जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा पाया। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी इतना है कि अल्लाह, वो एक भगवान का भेजा हुआ बंदा हूं और इस बंदे से जो भी अच्छा हो पाएगा मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा। जब तक जीवन है तब तक इसी प्रकार से आप लोगों से मिलता जुलता रहूंगा। पुनः मैं एक बार सभी श्रोताओं का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी आपने सुना डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर को, जो कि रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर HOD एजुकेशन LBSPG कॉलेज गोंडा के, पूर्व प्राचार्य MS ITM गोंडा के, साथ ही साथ प्रोग्राम ऑफिसर रह चुके हैं LBS गोंडा, नोडल ऑफिसर LBS गोंडा और रेड क्रॉस के प्रोग्राम ऑफिसर भी रह चुके हैं सर। और सर की बात से अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो क्या शख्सियत है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि एक शख्स होते हैं, एक होते हैं शख्सियत। तो आज हमने जो जिनसे मिलाया आपको, वो दरअसल एक पूरी शख्सियत है और उनके लफ्जों ने ही आपको बता दिया कि उनका जीवन कैसा है। जिसे कहते हैं ना कि सादा जीवन और उच्च विचार, बस कोई उसी तरह की विचारधारा उनको उनको देखने में लगती है, उनको देखने में मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक बार फिर से हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सर। और अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। कल फिर से मुलाकात होगी किसी नए गेस्ट के साथ, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को जानेंगे, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो इसलिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है, वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था, फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: अरे सुना?
5: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है।

0: है तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
9: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल, सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
8: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
10: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: प्यार तो आ जाता है, लेकिन प्यार आने के बाद तकरार भी बहुत जल्दी हो जाती है। और ये तकरार जो है वो क्या करती है ना, हमारे बीच में दूरियां पैदा कर देती है। और इन्हीं दूरियों को दूर करने के लिए ही तो आपके डॉक्टर लव आपके पास आ जाते हैं। और सभी का स्वागत है आरजे बीना वाले शो गोंडा मैसेज मसाला में। आज ना सिर्फ बातें होंगी बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा, यानी कि आपकी जो समस्या है उसको जड़ से निकाल के हम फेंकेंगे और उसकी जड़ में भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब कुछ डाल देंगे, जिससे कि ये समस्या परेशानी दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोचे भी ना। तो फिलहाल आप लोग को बता दूं कि डॉक्टर लव काफ़ी सारे मरीजों को डील कर रहे हैं सामने फेस टू फेस, और कुछ ही देर में वो आपके साथ लाइव होंगे बिना किसी देरी के। लेकिन आपको तब तक के लिए कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराल रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सफर।
1: इस गाने को सुन के लग रहा है कि कोई इंसान वादे तो कर लेता है पर वादे करने के बाद निभा नहीं पाता, फिर उसे डॉक्टर लव के शरण में आना पड़ता है। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? बाकी सारे गोंडा वालों, आप लोग को बता दूं कि आपका नंबर 6393131469 लाइव हो चुका है और आप कॉल करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। फिलहाल जिसको अपना पर्चा पहले लगाना है वो चैट रूम में अपनी समस्याएं लिख के पहले ही भेज दे, जिससे आपके मतलब कहते हैं ना कम्युनिकेशन में किसी प्रकार का विलंब ना हो। जी हाँ, तो विलंब से बचने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, किसी भी तरह की देरी ना हो, इसके लिए आप लोग लाइव होने के लिए लाइव हो जाइए। मतलब लाइव होने के लिए लाइव मतलब कि क्वेश्चन आपका आगे आंसर जल्दी से मिल जाए, इसलिए आप लाइव क्वेश्चन भेज दीजिए हमारे पास और बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 9.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप कुछ खास उम्दा और मजेदार सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आरजी बीना वाला शो गोंडा मैसेज मसाला सुन रहे हैं।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

मुझसे मेरा कोई प्लान पूछे तो मेरा तो प्लान आज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ गप्पे मारने का है और डॉक्टर लव से अपनी जो छुट्टी हुई पगार है वो मांगने का है, क्योंकि इन्होंने मुझे 10 दिन की छुट्टी कर दी थी और इस वजह से मेरी पगार जो है ना वो कट गई है। कहते हैं जहाँ दिल की बीमारी का इलाज दवाइयों से नहीं बल्कि हंसी और शायरी के प्यार से की सलाह से होता है, वहाँ पर मेरी तनख्वाह क्यों काटी जा रही मुझे नहीं पता। तो अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी घंटी बज रही है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, मोहब्बत का नेटवर्क सिग्नल हिल रहा है और आपको लग रहा है कि आपको भी सिग्नल पे चढ़ना पड़ेगा, आए दिन यार सब लोग टावर पे चढ़े बैठे रहते हैं। अभी जल्दी गोंडा में एक औरत सिग्नल पे, मतलब सिग्नल कह रही हूँ, टावर पे चढ़ी हुई थी और बहुत मस्त तरीके से भाई कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ी हुई थी। फिलहाल समस्या का समाधान देखिए कैसे मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के पास जिगरा बहुत तगड़ा है, मैं तो ना चढ़ पाती भैया। पहले तो मैं एक दो बार चढ़ती, उसके बाद मेरा तो दिल मतलब बैठ जाता और उसके बाद सोचती भी ना चढ़ने के बारे में। आप बताइए क्या आपको अपनी कोई ज़रूरत पूरी करवानी हो तो आप भी टावर पे चढ़ना पसंद करेंगे? वैसे अगर आपको चढ़ना हो तो आप कहाँ चढ़ेंगे, टावर पे चढ़ेंगे या आप छत पे चढ़ेंगे या पानी की टंकी पे भी लोग चढ़ने लगे हैं आजकल। लेकिन क्या बताएं, लोगों के अंदर बड़ा मतलब गट्स हैं भाई, अगर कूदना ही है तो ये सब जगह जाके क्यों खड़े हो जाते हो? लोगों को बताने से अच्छा है कि जाओ बढ़िया किसी तार तलैया में जाके कूद जाओ, इतना ही डिप्रेशन है। बाकी मेरे हिसाब से तो जाके बात कर लो, जाके DM आवास या जहाँ से आपको अटेंशन चाहिए वहाँ जाके सीधे बात करो, धरना प्रदर्शन करो। लेकिन क्या करूँ, मुझे लगता है कि कभी कभी सुनवाई नहीं होती तो हमें ऐसे टेढ़े, वो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है ना, कुछ ऐसा ही। तो चलिए कोई बात नहीं, और मुझे एक कविता याद आ रही है, सोच रही हूँ आप लोग को सुना दूँ। कविता बहुत ही ज्यादा बिंदास है, ध्यान से सुनिएगा। प्यार हुआ तो ऐसे हुआ, गौर फरमाइएगा कि प्यार हुआ तो ऐसे हुआ, दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई। पहले तो माँ की सुनता था, अब उसकी भी माँ की सुननी पड़ती है। सुबह सुबह मोबाइल देखा, उसका मैसेज नहीं आया था, दिल ने कहा कुछ गड़बड़ है भाई, बाद में पता चला कि फ़ोन साइलेंट पर लगाया था। वो बोली तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं बोला जान से ज़्यादा करता हूँ, फिर बोली चलो मेरी शॉपिंग करा दो, तब समझ आया सवाल कितना खतरनाक था। पहले पेट्रोल के दाम से डरता था, अब गिफ्ट के दाम सताते हैं, इश्क में पड़ते ही जनाब सैलरी आने से पहले ही उड़ जाते हैं। दोस्त बोले भाई बदल गया है तू, मैं बोला क्या करूं यारो, पहले क्रिकेट के स्कोर याद रहते थे, अब उसकी जन्मतिथि, पसंदीदा रंग, उसकी बिल्ली का नाम, यही याद रहता है। कुछ ऐसा हाल है प्यार में पड़े हुए आशिक का। आप बताइए इनमें से कौन सी वाली जो लाइन है वो आप पे सूट ज़्यादा करती है? पर मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो उसके लिए आप याद ही क्यों करें, मोबाइल में अपना बढ़िया रिमाइंडर लगा के रखें, ऐसे भी क्या घबराने वाली बात है। तो आप चाहें तो मेरी जो सलाह है उसको समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो करने के साथ साथ आप मतलब अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। कहते हैं ना अप्लाई द रूल एंड देन गेट द रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन रिज़ल्ट मिलने के पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और फिर आप लोग को ले चलते हैं प्यार की नगरिया में, और उस नगरिया के जो कहते हैं ना कि ओनर या कह सकते हैं MLA हमारे डॉक्टर लव है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, अगर आपने नहीं सुना तो सुन के बताइए आपको कैसा लगा। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला RJ पीने वाला विद योर फेवरेट डॉक्टर लव।

0: अब ये गाना गाने से बात नहीं बनेगी कि हमको तो सिर्फ तुमसे प्यार है, क्योंकि आजकल ज़माना बदल चुका है, माहौल बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं, और जब जज्बात बदलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर 63-93-31-64-29 याद आता है, और एक नाम याद आता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
3: जी एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
0: और आपके बारे में मैंने सबको बता दिया।
3: क्या बता दिया मतलब?
0: कि आपने मेरी पगार काटी है।
3: पगार काटी है? पगार काटेंगे जब घूसखोरी शुरू हो गई है, मतलब नंबर दिया जा रहा है पेशेंट को जो है 100 रुपये लेकर के, कह रहा ठीक है तुम्हारा ही लगा देंगे पर्चा पहले।
0: डॉक्टर साहब जैसे क्या होता है ना, एक तो इमरजेंसी वाला मामला होता है।
3: नहीं, इमरजेंसी वाला मामला होता है तो उसका पर्चा अलग कटता है।
0: अरे तो कोई खास हो, जान पहचान का हो?
3: नहीं, जान पहचान का बात ठीक है, लेकिन हमको तो जानकारी होनी चाहिए।
0: अरे भाई वो हमसे आके बोली कि एक समय की बात थी
3: जी,
0: मैं और डॉक्टर लव बचपन में साथ में पढ़ा करते थे।
3: साथ में पढ़ा करते थे
0: और डॉक्टर लव इनकी पेंसिल छीन लिया करते थे।
3: अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, पेंसिल।
0: तो बोली पेंसिल छीनने के बदले क्या हम पर्चा पहले नहीं लगवा सकते हैं? आज तक हमने पेंसिल के लिए कभी कुछ नहीं कहा। हम घर पे मारे पीटे भी जाते थे कि तुम्हारी एक पेंसिल एक दिन भी नहीं चलती है।
3: हुँ?
0: एक दिन में 4 पेंसिल यूज करती हो, किस हिसाब से?
3: नहीं तो वो भी तो मतलब जो है वो कटर ले ली थी, तो 2-3 शार्पनर उन्होंने मतलब चुरा लिए।
0: कटर की बात छोड़ दीजिए, कटर कटर होता है, एक कटर में एक साल चल सकता है, लेकिन पिल्सिन पिल्सिन होती है।
3: हाँ, पेंसिल पेंसिल होती है, कटर कटर होता है।
0: वो ऐसे पेंसिल नहीं, पिल्सिन बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द, बड़े भावनात्मक।
3: हाँ, मतलब क्या मतलब वो बचपन वाला ना,
0: पिल्सिन
3: पिल्सिन।
0: हाँ,
3: हाँ, तो पिल
0: एन और एल का अदला बदली हो गई थी।
3: एन और एल का अदला बदली हो गई,
0: पिल सिन।
3: अच्छा, क्या बात है यार, क्या नया शब्द।
0: बिल्कुल,
3: आज मतलब हिंदी साहित्य अपने आप पर गौरव महसूस कर रहा होगा।
0: बिल्कुल,
3: कि हमारी कंपाउंडर साहिबा ने हिंदी के एक नए शब्द का आविष्कार कर दिया।
0: नहीं, हिंदी का नहीं है, शब्द तो अंग्रेजी का ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है।
3: अच्छा तो, अच्छा तो हिंदी में क्या कहेंगे पेंसिल को?
0: पेंसिल को कुछ कहते हैं हिंदी को? पेंसिल में क्या बोलते हैं? बा,
3: बा, बा, बा, हम आपसे पूछे
0: पेंसिल को क्या कहते हैं? पेंसिल ट्रेन को तो लौहपत गामी नहीं बोलते हैं।
3: अच्छा ये बताइए, चाक को हिंदी में क्या कहते हैं?
0: चाक,
3: CHAK के चाक, वही जिससे लिखा जाता
0: है।
3: नहीं नहीं, चाक को हिंदी में क्या कहेंगे?
0: चाक, देखिए हम जानते हैं चाक घाव को दिल के बोलते हैं। दिल के घाव को बोलते हैं चाक।
3: वो चाक नहीं होता है, उस पर आ की मात्रा नहीं लगी होती है, जिससे लिखते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं?
0: चाक।
3: हाँ, चाक।
0: चाक तो शायद फारसी शब्द है।
3: नहीं, चाक इंग्लिश शब्द है भाई, CHAL के।
0: हाँ, देखिए कुछ शब्द हमने हिंदी में भी अपने, जैसे हमने कैटेगरी बना दी।
3: हाँ,
0: कुछ देशद विशेद विदेशद।
3: हाँ,
0: तो हमने चाक को चाक की तरह ही ले लिया, हमने चाक। हाँ, का हिंदी वर्जन नहीं निकाला।
3: हिंदी वर्जन नहीं निकाला, नहीं है सही बात, लेकिन चाक को हिंदी में कहते हैं सुधा खंड।
0: सुधा खंड,
3: सुधा मतलब अमृत, खंड मतलब टुकड़ा,
0: अमृत का टुकड़ा। तो खा ले इंसान, मर जाए।
3: नहीं, इंसान इकलौता ऐसा प्राणी है धरती पर जो अपनी तर्जनी को अंगूठे से मिला सकता है। 84 लाख योनियों में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसकी तर्जनी और अंगूठा मिल जाए। यानी जब इंसान ने चाक पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना,
0: मटर पकड़ना,
3: कूची
0: पकड़ना
3: सीखा, तब वो असलियत में इंसान बन पाया।
0: हाँ, ये जो साइकोलॉजी में भी बताते हैं कि बच्चा जब ये सब पकड़ना सीखता है वो कहीं ना कहीं वो कौन सा कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था में होता है।
3: हाँ, मतलब ये चीज बहुत खाली इंसान के पास है। और कोई नहीं, वनमानुसार वो काम कर सकता है जो हम कर सकते हैं, बस एक काम नहीं कर सकता, ये इंग्लिश से थम
0: लेकिन अगर सिखाया जाए तो कर लेगा,
3: नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उसको। अब आपने तो ऐसा लगता है जैसे कड़ाही
0: देंगे। तो चाक के बारे में ये सुना था, एक ठू गजल बचपन में सुनी थी, चाक जिगर के सी लेते हैं,
3: क्या बात है,
0: जैसे भी हो जी लेते हैं। हमारे एक ठू आरजे मनु आते हैं तो वो गजलें सुनाते हैं तो हम सुन लिया करते हैं।
3: क्या बात, क्या बात,
0: साथ ही में चाक जिगर के सी लेते हैं,
3: सी लेते हैं, अच्छा मतलब।
0: हाँ तो ये आपसे जानने के वाली बात है कि अगर जिगर के चाक हों तो आपसे सिलवाना हो तो कितना पैसा लगेगा?
3: हमारे पास चले आएंगे तो हम पेट्रोल से नहला देंगे, हमारे पास एक स्पेशल पदार्थ है।
0: अच्छा,
3: फिर वो एकदम जान लीजिए कि एकदम सॉलिड हो जाएगा, पत्थर के समान, मतलब एकदम पत्थर हो जाएगा, फिर उस पर किसी का असर ही नहीं पड़ेगा।
0: वाह,
3: फिर जो चाक करने वाला है वो चाक हो जाएगा।
0: वाह, क्या बात है,
3: खोज की है, मतलब अनुसंधान।
0: रेजिन, रेजिन, आपने रेजिन के बारे में पढ़ा है?
3: हाँ?
0: आपने लाल किले के बारे में सुना है?
3: सुना है,
0: देखा है?
3: देखा है,
0: मतलब करीब से देखा है?
3: करीब से देखा है,
0: छू के देखा है?
3: छू के देखा है।
0: तो लाल किला जो है उस पे कभी पेंटिंग सेंटिंग नहीं होती है?
3: नहीं होती है,
0: उस पे रेजिन लगाई गई है।
3: हाँ,
0: रेजिन ने उसको इतना मजबूत और इतना टाइट बना दिया है कि उसके ऊपर ना तो मॉइस्चर टिकता है ना पे धूप का असर है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही आपके पास
3: कुछ बिल्कुल वही वो कॉन्सेप्ट उन्होंने अंग्रेजों ने हमसे ही लिया था।
0: एक सूरत से हमारे लिसनर है जिनका नाम है रवि,
3: रवि,
0: रवि का कहना है कि वो जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं
3: जी,
0: वो हर बात पे सिर्फ ठीक है कहती है।
3: अच्छा,
0: मतलब उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है।
3: ओहो, नहीं क्यों, ठीक है मिला तो,
0: मतलब प्रतिक्रिया मतलब कि वो कोई सवालात कोई मतलब उसको कोई जैसा लगता है इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं ऐसा तो नहीं मेरी प्रेमिका के अंदर मेरे लिए कोई इंटरेस्ट कम हो रहा हो?
3: मामला गंभीर तो जान पड़ रहा है
0: आपको। रवि जी पूछ रहे थे आपसे,
3: मतलब हम उनसे पूछे थे
0: आपके आने के पूर्व उनसे मेरी बात हुई
3: तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया।
0: जी बड़ा गंभीर प्रश्न है, लोगों को मिलता जुलता होगा और ऐसा मुझे लगता है बहुतों के साथ होता होगा।
3: ठीक है ठीक है, मतलब कुछ ना बोलो। अच्छा, तो
0: कॉल की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है, मतलब पहले क्या था दिन में 4-10 कॉल आते थे, अब सुबह शाम एक आता है,
3: एक-एक आता है, मतलब मोहब्बत धीरे धीरे जो अब उनको शादी कर लेनी चाहिए
0: प्रेमिका से।
3: अब अल्लो प्रेम किसी से शादी किसी से जैसे ही इंसान प्यार में पड़ा हो, कोई भी इंसान इस दुनिया का कोई भी इंसान प्यार में पड़ा हो वो शादी कर ले, शादी करते ही प्यार का
0: आपने मैं वापस आऊंगा फिल्म नहीं देखी
3: नहीं, शादी करते ही प्यार का बुखार उतर जाता है ये समझ लीजिए, मतलब इधर जो है वह अपने शादी की और इस पैरास्टामॉल खाया।
0: प्यार को सही समझे या गलत?
3: प्यार वो बात नहीं, जैसे जो कंकड़ हमारे एक मित्र थे उन्होंने जो है वो अपनी पत्नी के साथ झीलों में फेंके थे, आजकल वो दालों में मिल रहे हैं। और त्याग तो उनका इतना बड़ा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने पत्नी और पुत्र को जब उनके सो गए थे तब उन्होंने घर छोड़ा था सोते हुए, और वो इंतज़ार करते हैं कि कब मेरी पत्नी सोए और तब मैं घर पर पहुँचूँ।
0: हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हैं। मुकेश जी का भी दिल एक बार टूटा था, मुझे लग रहा है आजकल जुड़ गया
3: है।
0: आप लोग दिल का दर्द हराने आए हैं, आप लोग तो आगे दिशा में जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिल का दर्द हराने ही जा रहे हैं,
3: दिल का दर्द और दिल का हाल सुनने
0: के मिला के। रवि जी मैं तो यही कहूंगी हमारे तरफ से आप
3: शादी कर लीजिए और आपका प्यार प्यार का बुखार उतर जाएगा।
0: शादी करके फंस गया यार अच्छा खासा
3: था। यही यही हर पुरुष का दर्द यही है। हमने अपनी पत्नी से डींग हांकते हुए काम ने कहा देखो तुमसे मैंने देखे बिना शादी कर ली। उसने हमको जवाब दिया और हिम्मत मेरी देखिए कि तुमको देखने के बाद भी मना नहीं किया।
0: एक हमारे पास मतलब थोड़ा कम उम्र का बच्चा फोन करता है।
3: हाँ,
0: कक्षा 9 में पढ़ता है।
3: अच्छा,
0: कक्षा 9 में पढ़ता है।
3: हाँ,
0: उनका कहना है कि मैम मुझे एक लड़की मतलब एक लड़की पे क्रश है।
3: क्रश है मतलब कुचल दिया उसने?
0: नहीं, आजकल क्रश होता है लोगों
3: में। अच्छा अच्छा, क्रश होता है।
0: क्रश है लेकिन वो लड़की इनको भैया कहती है, 8th क्लास में पढ़ती है, जूनियर है।
3: तो बहुत अच्छी बात है,
0: भैया भैया कहती है। हाँ? इनको अच्छा नहीं लगता है, ये लोग हरदम म्यूजिक की क्लास में जाके वंदे मातरम गाते हैं, मतलब इन्होंने जानबूझ के म्यूजिक ले लिया, गा नहीं पाते हैं, खाली लिपसिंग करने जाते हैं क्योंकि अगर गा देंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो क्या किया जाए?
3: मतलब भैया कहती है तो बहुत अच्छी बात है।
0: नहीं तो ये चाहते हैं भैया ना कहे ना।
3: नहीं तो भैया का फुल फॉर्म जानिए ना।
0: वो चाह रहे हैं कि जैसे भी गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुले तो क्या ये एक ठो गुलाब और एक ठो चॉकलेट दे दें?
3: नहीं पहले ये सिर्फ जाकर के उसको भैया का फुल फॉर्म बता दें।
0: ओहो क्या बात क्या
3: हाँ। तो भैया का फुल फॉर्म कहीं नोट कर लीजिए आप।
0: हाँ बता दीजिए सब लोग नोट करिए फटाफट से।
3: अगर कोई कलम उठाइए। अगर कोई भी लड़की आपको भैया कहती है तो आप निराश मत हों। आप भैया का फुल फॉर्म जानिए। भैया का फुल फॉर्म होता है बड़ा हैंडसम अट्रैक्टिव इंटेलिजेंट यार अपना।
0: वाह वाह क्या बात है क्या बात है।
3: तो अगर कोई आपको भैया कह रहा है जिसको आप नहीं सुनना चाहते हैं कि
0: अगर आपको कोई भैया कहे तो मुस्कुराइए
3: मुस्कुराइए और उससे पूछिए कि आप भैया का फुल फॉर्म जानती हैं नहीं तो हमसे सुनिए और इसके बाद मुस्कुराइए। क्या लगता है आपको? भाई फुल फॉर्म जानना जरूरी है। जैसे वाइफ का फुल फॉर्म विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, तो ऐसे भैया का भी फुल फॉर्म
0: अच्छा?
3: है आ? और क्या आपने नहीं सुना?
0: नहीं नहीं मैं सुन भी चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ।
3: हाँ सुन भी चुके हैं सुन भी चुके हैं।
0: तो चलिए प्रेम की दुनिया में ले चलते हैं जिसका भी मतलब प्यार का सेट मामला नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपका प्यार आपको धोखा देने की फिराक में, तब तक उससे शादी कर लीजिए।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल संदेह।
0: और तब तक ये गाना भी एंजॉय करिए।

0: Music.
1: डॉक्टर लव
2: जी,
1: मतलब आपने क्या मचा रखा है, मतलब अपने मरीजों को यहाँ तक बुला लिया है, ये क्या मतलब? कोई आके, अभी आप लोग को मैं बता दूं कि एक मरीज आया और यहाँ आके गुरु जी के पैर में लेट गया, बोल रहा है कि डॉक्टर लव ना होते तो मेरा परिवार बिखर जाता। क्यों? अब आप उनकी कहानी भी सुन लीजिए। अब इसको सुनने के बाद आप सोचेंगे कि डॉक्टर लव क्या हैं। खुद तो रंगीले हैं ही, लेकिन इसी के साथ साथ मतलब इन्होंने क्या कर डाला है, मतलब इन्होंने अपने जो कहते हैं ना शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कैसे किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से कर दिया है। तो समझिए, बातों को समझिए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, उस लड़के का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो लड़का आया था डॉक्टर लव
2: जी,
1: फिर उसको आपने क्या किया, बढ़ावा दिया। किस चीज को लेके आपने उसको बढ़ावा दिया कि तुम दो शादी कर लो। भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं कि अपनी जो पत्नी को तलाक दे देता हूँ, इनसे कहा उन्होंने। लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पत्नी को अगर तलाक दे दोगे तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। अब तुम सीधे तौर पे क्या करो, अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे क्या करो, शादी कर लो और कह दो कि ये जो है ये मेरे पुराने जन्म की पत्नी है। फिलहाल उसके घर में किसी तरह का कोई कलेश तो नहीं है, लेकिन मुझे उसकी पत्नी के लिए बुरा लग रहा है।
2: बुरा लग रहा है?
1: बिल्कुल लगेगा सर, आपने उसकी सीधे तौर पे दूसरी शादी करा दी।
2: हाँ तो सीधे तौर
1: पे, हाँ, आपने 30-32 कर रखी है, वो बात दूसरी है। आपका मामला दूसरा है, आपका घर द्वार, आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, आपको तो लोग दान में दे जाते हैं एक मकान, एक रजिस्ट्री करा के आपके नाम। तो हर इंसान इतना मतलब नहीं रईस हो सकता है, आपने फंसा दिया उसको इनडायरेक्टली।
2: नहीं फंसा नहीं दिया, वो लड़की जो है बैंक में नौकरी करती है।
1: अच्छा, कहीं आपने अपने से शादी करने का जुगाड़ तो नहीं लगाया था?
2: नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत सात्विक विचार का व्यक्ति हूँ।
1: ओह, देख के तो तामसिक लग रहा
2: है। कहा जाता है कि इंसान जैसा खुद होता है उसको सामने वाला वैसा ही नजर आता है।
1: नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, ऐसा मतलब क्या बताऊं। एक हमारे श्रोता है जो आपके बहुत बड़े दीवाने, उन्होंने लिख के भेजा आपके लिए कुछ।
2: जी, लिख के भेज दिया है।
1: प्यार हुआ तो ऐसा हुआ, दिन का चैन रात की नींद उड़ गई।
2: आहा, क्या बात है, साथ साथ।
1: प्यार हुआ तो ऐसा हुआ कि दिन का चैन रात की नींद उड़ गई। पहले तो आराम से खाता पीता था, अब तो पिज्जा बर्गर से मेरी जेब लुट गई।
2: आह, क्या क्या क्या लिखा है।
1: वो बोली तुम मुझसे प्यार कितना करते हो, मैं बोला जान से ज्यादा। वो बोली जान से ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस अपना एटीएम थमा दो।
2: क्या, वाह वाह, ये नए युग की शायरी, आप एकदम लेटेस्ट वर्जन है।
1: पहले पेट्रोल के दाम से डरता था, अब गिफ्ट के दाम से डरता हूँ। इश्क में पड़ते ही जनाब, सैलरी आते ही उड़ने की बात से डरता हूँ।
2: क्या क्या बात, सैलरी आती।
1: दोस्त कहते हैं तू मेरा पहले वाला दोस्त नहीं रहा।
2: हाँ।
1: दोस्त कहते हैं तू मेरा पहले वाला दोस्त नहीं रहा, तू आईपीएल का पूरा महीना बीत गया, तू पता नहीं किस दुनिया में रहा।
2: अच्छा, आईपीएल का महीना बीत गया, क्या क्या,
1: तू किस दुनिया में रहा। तो मैंने जवाब दिया अब तो सिर्फ उसकी बर्थडे डेट ही याद रखता हूँ। पहली एनिवर्सरी, पहला लेटर, पहला मैसेज, यही सब याद करता रहता हूँ।
2: क्या बात है, मतलब पहले की बात ही कुछ दूसरी है।
1: मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो हरदम याद दिलाती रहती है, हमारी ये पहली डेट वाली एनिवर्सरी है, ये पहली हमारी चॉकलेट एनिवर्सरी है, मुझे चॉकलेट दी थी। ये हमारी घूमने वाली एनिवर्सरी है, ये हमारी टैडी एनिवर्सरी, तुमने मुझे टैडी खरीदवाया था, ये सब मनना पे।
2: अच्छा मतलब, और ये नहीं पता था कि यहाँ दोनों लोग पकड़ गए थे तो पापा ने पीटा था, तो वो बीटिंग एनिवर्सरी।
1: इस बारे में उन्होंने कविता में जिक्र किया।
2: अच्छा, कविता में जिक्र नहीं किया, लेकिन एक आध बार मार भी खाए होंगे।
1: वैसे ये बताइए, आपने आज अपने जितने श्रोता हैं, जो आपके मरीज हैं, उन लोग को अपने वहाँ बुला लिया था लग रहा है।
2: हम उसको भी लग रहा है कि मतलब आज शनिवार
1: सारे के सारे वहीं चले गए थे क्या आज इलाज कराने?
2: इलाज
1: क्योंकि आज दर्दे दिल जो हमारे दर्दे जिगर हैं वो सब दिखाई नहीं दे।
2: हाँ, दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दर्दे तमन्ना।
1: मुझे तो लग रहा है कि अब इन लोगों ने भी अब जन्म बदल बदल के प्यार करना शुरू कर दिया
2: है। हाँ।
1: और इन मतलब, लोग के लिए मुझे गाना भी बजाने का मन कर रहा है,
2: हमारी ही ट्रेनिंग।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है।
2: जी,
1: सच्चे प्यार की क्या क्या निशानियाँ हैं?
2: सच्चे प्यार की क्या क्या निशानियाँ हैं?
1: एक गाना आपने बचपन में सुना होगा आपने, वो था मतलब पहली निशानी मैं हूँ जिसकी दीवानी। एक तो ये उन्होंने अपने मतलब प्रेमी की निशानियाँ गिनाई, जिससे प्रेम करती हूँ उसकी निशानी। लेकिन सच्चे प्यार की क्या निशानी हो सकती है?
2: सच्चे प्यार की निशानी हमको ये लगता है कि अगर प्यार सच्चा है तो हर वक्त आँखों में उसी की तस्वीर रहेगी।
1: ऐसा कैसे
2: कुछ
1: और दिखाई नहीं देगा
2: उसका, उसके सिवा कुछ और दिखाई नहीं देगा। सिर्फ वही, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो।
1: और अगर कोई इंसान कहे कि हमने जिंदगी में प्यार नहीं किया, जैसे मेरी दादी से मैंने एक बार पूछा, दादी तुम बाबा से प्यार करती थी? तो दादी मुझे पहले तो गरियाई बहन की जितनी गालियाँ होती।
2: जी जी जी।
1: फिर उसके बाद में बोली कि प्यार, ये प्यार का होता है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि दादी ने शायद प्यार किया है, उन्होंने प्यार के मामले पे एकदम चुप्पी साध दी और 500 गालियाँ चिपका दी।
2: असलियत में जब आप ऐसे लोगों से पूछेंगे कि प्यार किया, तो वो असलियत में पता नहीं, उन्हें समर्पण होता था। अब मोहब्बत थोड़े होती थी,
1: सरेंडर कह सकते हैं।
2: हाँ, सरेंडर भी होता था। हाँ। एकदम सरेंडर हो गए।
1: अभी हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है मैं वापस आऊंगा। मैंने रिव्यू किया था कल, आपने सुना था? 78 साल तक वो अपने प्यार का इंतजार करता है।
2: 78 ईयर्स
1: जी,
2: मतलब ये नई फिल्म आई है
1: जी, आप देखेंगे तो आपको प्यार से प्यार हो जाएगा। आपका मन कहेगा कि मैं वापस से 16 साल का बन जाऊं और ऐसे ही प्यार करके मैं भी इंतजार में हो जाऊं।
2: मतलब ये गजब का इंतजार है, मतलब
1: बहुत गजब का इंतजार, बहुत गजब का पेशेंस एक इंसान की झलक देखने के लिए। ये बेसिकली हमारे इतिहास का एक छोटा सा जो पार्ट है उसको दिखाते हुए फिल्म को करंट सिचुएशन में दिखाया जा रहा है। पैरेलल चलती है स्टोरी, पास्ट प्रेजेंट दोनों। ये भारत पाकिस्तान के बीच में जब वो हुआ था बंटवारा
2: हुआ था,
1: एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों अलग अलग धर्म के होते हैं। ऑफ कोर्स अलग धर्म के थे तभी तो बंटवारे से उनके प्यार को अफेक्ट हुआ। सेम धर्म के होते या तो इंडिया ही आ जाते या तो पाकिस्तान चले जाते। लड़की मुस्लिम थी, लड़का पंजाबी था, और इस चक्कर में उसे यहाँ आना पड़ा, बहुत मार काट हुई थी उस समय। मतलब अगर मतलब हम लोग उस समय होते तो हम लोग क्या करते?
2: हाँ भाई, वो इतिहास की बहुत बड़ी ब्लंडर है, मतलब क्या बताया जाए।
1: क्या इसको एक सरल तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता था? वो रेडक्लिफ लाइन थी ना।
2: हाँ,
1: मतलब उस रेखा को मैं समझती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में सोचती थी कैसे लाइन खींच दी गई, खोद खोद कैसे मेड़ बना के, जैसे गांव में मेड़ बनाते हैं। पर अब समझ में आता है इस रेखा ने क्या क्या नहीं किया, कितना खून बहाया।
2: हाँ, तो त्रासदी तो ही है।
1: जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रहे, जिसको भारत में रहना है, क्यों जो जहाँ रहता है वो वहाँ क्यों नहीं रह सकता?
2: हाँ देखिए, वो एक जॉन एलिया, वो यहाँ से गए भी पाकिस्तान, लेकिन उनके दिल में हमेशा अमरोहा बसा रहा। तो मतलब वो लोग एक वो है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, सुना होगा आपने।
1: हमने तो जब
2: कलियां मांगी कांटों का हाल मिला।
1: बिल्कुल, तो चलिए हम थोड़ा इमोशनल नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो आए हैं सबके सेंटीमेंट्स को बहाने, खुद ही सेंटीमेंट बनाने लगेंगे तब तो लोग कहेंगे कि हो चुका कल्याण। तो चलिए हम सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, जिसको सुन के आप भी हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे दौड़ना शुरू कर देंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप भी ख्वाब देखें और ख्वाबों को हर जन्म में प्यार के साथ पूरा करें। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम रब ने बना दी जोड़ी।

0: तो डॉक्टर लव ने अपने पसंदीदा गाने को अपनी पसंदीदा पत्नी के लिए डेडिकेट कर दिया है। अब कौन सी है इनकी पसंदीदा पत्नी है तो भगवान जाने,
1: भगवान जाने।
0: हम तो कतई नहीं जानते।
1: आप कतई नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते।
0: जुगल जी आ गए हैं, नयन जी आ गए हैं, क्या हाल है जुगल जी और नयन जी? और देखिए कॉल आ चुका है और इस कॉल को कनेक्ट करते हुए बड़ी खुशी होगी मुझे। हेलो,
2: नमस्कार।
0: शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
2: रईस बोल रहा हूँ मैम।
0: ओ रईस जी, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम।
2: मैं एकदम ठीक। सलाम आपको भी। बहुत दिन से आपकी आवाज नहीं सुन रहे हम लोग।
0: मेरी आवाज, मैं तो वापस आप लोग के बीच चीख चीख के बोल रही हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रही है तो आप लोग के दिल में कोई रंजिश
2: होगी ना आपकी? दिल में होगी ना आपकी,
0: दिल की आपकी कोई रंजिश होगी?
2: अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है।
0: तो चलिए डॉक्टर लव से अपनी समस्या का जरा समाधान आप भी ले लीजिए। डॉक्टर लव, आप
2: कोई समस्या? गुरु जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: आप ठीक है साहब?
1: जी जी जी, आपकी दुआएं।
2: आवाज आपकी कुछ बैठी हुई
1: नहीं, बैठी नहीं, आवाज एकदम खड़ी
2: है। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब खुद बीमार हैं।
1: नहीं नहीं, आवाज हमारी एकदम खड़ी है।
2: अच्छा,
1: हाँ बैठी नहीं
2: है, प्रॉब्लम हो रही है।
1: हाँ हो सकता है।
2: आप दोनों लोग ठीक ठाक हैं?
1: हाँ हम दोनों लोग ठीक ठाक हैं।
2: अच्छा, नहीं मीना जी आपके प्रोग्राम में वाले में नहीं थे, तो कुछ मिसिंग था।
1: हाँ मिसिंग था
2: है ना?
1: तो हमने कहा था ये मिसिंग बस एक शनिवार रहेगा भाई।
0: तो ये बताइए रईस जी, आपके जीवन में तो कुछ मिसिंग नहीं है, प्रेम की कमी तो नहीं है?
2: नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूं। फर्स्ट
0: आपको पता है डॉक्टर लव ने आजकल एक ठो मेडिसिन लॉन्च की है।
2: मेडिसिन?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन एक दवाई लॉन्च की है।
2: कोई आविष्कार किया क्या?
0: जी जी जी जी, इन्होंने औषधियों का प्रयोग करते हुए एक दवा बनाई है जो ये अक्सर अपने खास मरीजों को देते हैं।
1: जी
2: अच्छा, उस खास मरीज में कहीं हम तो नहीं है?
0: अब ये तो आप जानिए, क्योंकि ये मुझे नाम बताते नहीं है, अपने खास मरीजों को देते हैं। कहते हैं जिसके जीवन में प्रेम की कमी होती है या उनको लगता है कि हाँ इनको ये दवा देनी चाहिए तो ये दे देते हैं। वही मैं जानना चाह रही थी, आपको दिए तो नहीं है कहीं?
2: नहीं नहीं, मुझको दवाई की जरूरत नहीं ना, मैडम आपकी दुआ की जरूरत है।
0: ओहो, दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। और आपकी मतलब आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद मैं आपकी आवाज सुन रही
2: हूं। हम आपको सच बताएं, आपकी आवाज सुन के जो भी लिखना जो सुन रहा है वो बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश है। क्योंकि 20 लाख कितने दिन छुट्टी थी आपकी?
0: मेरी छुट्टी तो थी 10-15 दिनों की बस।
2: बस वही तो तकलीफ है, आपको है नहीं इसमें।
0: फिलहाल वापस मैं आप लोग के बीच हूँ और बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली हूँ आने वाले कुछ सालों तक।
2: जब आप मंडे वाले प्रोग्राम में गाना गाती थी ना आराधना का,
0: जी जी,
2: कोरा कागज था ये मन मेरा, बहुत अच्छा लगता था हम लोग को।
0: चलिए सोमवार जरूर आपके लिए सुनाऊंगी स्पेशल।
2: हाँ तो मंडे को मैंने फोन भी किया, लेट हो गया था थोड़ा।
0: कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा टाइम से करिएगा, मतलब 45 के पहले कर दीजिएगा, 45 पे भी कर देंगे तो भी मैं रिसीव कर लूंगी।
2: ओके शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रईस जी।
2: थैंक यू।
0: डॉक्टर लव, आपने इनको दवा तो नहीं दी है?
1: नहीं,
0: इसको बता देती कि अपने बाकी मरीजों को दिए हैं आप, अभी तो लड़ाई हो जाती है आपकी। चलिए अगला कॉल देखते हैं किसका। हेलो हेलो, कॉल हो चुका है डिस्कनेक्ट। चलिए अगले कॉल का इंतजार करते हैं और अभी देखते हैं किसकी आवाज है। हेलो
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग अनु जी, कैसी हैं आप? स्वागत है आपकी आवाज का।
3: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप और सर बताएं कैसे हैं आप दोनों?
0: मैं तो खराब हूँ क्योंकि मेरी पगार कट गई है।
3: क्या हुआ?
0: मेरी पगार, मेरी सैलरी काट दी है डॉक्टर लव ने।
3: ये तो बहुत गलत किया सर ने। अरे सर, मैम का मतलब सैलरी वैलरी मत काटो।
1: अच्छा ठीक है, आपने कह दिया, लेकिन ये कहिए घूस न लें आप।
3: हाँ, घूस नहीं लेंगी।
0: अरे हमने घूस लिया था।
3: और सर एक बात और, सर एक बात और, अगर मान लो मैम थोड़ा इधर उधर कर देती है तो ज्यादा सारा मतलब ढेर सारा मरीज भी तो लेकर आती है।
0: इंसेंटिव के नाम पे मुझे कुछ नहीं मिलता है।
1: इंसेंटिव के नाम पे 10% हर महीना बढ़ता है। नहीं बिल्कुल बनता है, कह दीजिए बेमानी नहीं, मरीज जो
0: तो
1: जिस नंबर पे आएगा।
0: आज कोई सवाल है तुम्हारे पास या फिर मैं भी बता दूं कि तुमको भी कोई दवा चाहिए तो ले सकती हो, इनके पास बहुत सारे।
3: पहली बात तो आप दोनों की आवाज मतलब अच्छे से मुझको नहीं मिल रही, बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, फिर भी मैं ऐसे ही बात करती जा रही हूँ, जो भी समझ में आएगा उसका जवाब दूंगी, सवाल का जो नहीं समझ में आएगा।
0: पहले तो आप अपना मुझे प्रश्न बताइए, डॉक्टर लव से कोई प्रश्न करना चाहती है कि नहीं?
3: मेरा प्रश्न ये है कि आप दोनों को मैंने सुबह ही बुलाया था और अभी तक आप दोनों नहीं आए, तो फिर मैंने कहा अरे अभी पता करूं क्या हो गया।
0: अच्छा ये बताओ अनु, तुम्हारे यहाँ गर्मी है या ठंडी? मेरे यहाँ इधर बहुत बर्फ पड़ रही है और बर्फ पड़ने की वजह से मतलब हम लोग की आवाज एकदम जाम हो चुकी है,
1: एकदम तीन तीन कंबल ओढ़े हैं हम लोग।
3: मैम मैं भी गोंडा की ही हूँ, कहीं अलग की नहीं हूँ। गोंडा का पूरे मतलब पूरे गोंडा का एक ही मौसम है।
0: अरे नहीं, यहाँ हम लोग के मतलब बर्फ पड़ रही है, मत पूछो हाल क्या है।
1: हाँ, मतलब
3: मैम बस इधर ही बर्फबारी हो रही है।
0: बिल्कुल,
3: बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम है।
0: और क्या, गरम गरम बस चाय पीने का मन करता है और साथ में गरम गरम पकौड़े बने हों वो भी अनु के हाथ के।
3: आ जा मैं तुरंत ही बना के खिला दूंगी। एक मिनट भी नहीं लगेगा मैं मुझको बनाते हुए, और मुझको बनाने आते हैं पकौड़े।
0: क्यों पकौड़े बना के पहले से रखी रहती हूँ क्या?
3: और मैम वही तो, क्या मैम
0: पकौड़े बना के पहले से रखी रहती हूँ, माइक्रोवेव करके दे देती हूँ।
3: अरे नहीं मैम, सारे सामान घर पे उपलब्ध है, बस तुरंत सामग्री मिला के उसे तैयार करके और बनाना ही तलना ही तो रहेगा।
0: मैगी वाले 5 मिनट में कहते हैं, मैगी 5 मिनट में तो बनती नहीं है। आप मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, 1 मिनट में पकौड़ी कैसे बनानी थी, मैं तो नहीं बना पाती हूँ।
3: अच्छा मैम ये है मतलब
0: मैं टाइमर लगा के
3: नहीं लाना है।
0: मैं टाइमर लगा दूंगी, मैं टाइमर लगा के बनवाऊंगी पकौड़ी, याद रखना।
3: टाइमर लगा के फिर बनवा लेना,
0: 1 मिनट सारी सामग्री
3: मैं तैयार कर दूंगी ना, उसके बाद जब कढ़ाई में डालूंगी इसको तलने के लिए, फिर आप टाइमर लगा देना।
1: हाँ ये बात सही है,
0: ये तो बेमानी है,
3: थोड़ी सी बस चीटिंग हो जाएगी। चीटिंग क्या है ना, बनाने के लिए तो बोले 1 मिनट में बनाएंगे, उनकी सामग्री वगैरह वो सब मिलाने के लिए थोड़ी ना बोला 1 मिनट में सब कुछ मतलब एकदम सब कम्प्लीट करके रख देंगे।
0: अब जो भी कहो मैं मान लेती
3: हूं। और मैम बता है, मैं ना दिल से आप दोनों को सुबह ही निमंत्रण दे चुकी थी,
0: तो दिल का निमंत्रण दिल को ही मिला, हम लोग नहीं
1: पाए।
3: और आप लोग अभी तक नहीं आए तो हमने सोचा थी आवाज देकर बुला लूं आपको।
0: आवाज देकर?
1: हाँ आवाज देकर नहीं, उधर से एरोप्लेन भेज दीजिए, हम लोग इधर से चले आते हैं।
3: क्या है सर?
1: अरे हेलीकॉप्टर जो आपके पास है उसको भेज दीजिए।
3: अरे गोंडा में ही तो लैंड है, बस आप जाइए 5 मिनट में बैठ जाइए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: गोंडा से नहीं आया है।
1: अच्छा मतलब अभी गोंडा में ही है आपका हेलीकॉप्टर?
3: अभी शहर नहीं, हाँ शहर नहीं है, मंदिर के पास से।
1: अच्छा तो ठीक है, हम लोग उसी
0: मुझे। और मैं बताऊँ अनु, अब मैं पकौड़ी खाने के लिए मुझे दौड़ के आना पड़ेगा, मुझे बस थोड़ा सा समय
1: उड़ के आना पड़ेगा, हम लोग उड़ के पहुँच रहे हैं,
0: उड़ के, क्योंकि इतनी ठंडी और ठंडी में कोई पकौड़ी पूछ ले, क्या बात, क्या
1: क्या बात है, मतलब
0: दिल के अरमा।
3: मैम आपको ना ठंडी में गर्मा गर्म पकौड़ी खिलाऊंगी ठंडी के लिए कि ठंड ना लगे, और ठंडी में कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगी जी, और ज्यादा भी ठंडी महसूस हो जाए। पकौड़ी खाने के बाद।
0: ये बात तो सही है, डॉक्टर लोग अक्सर कहते हैं ठंडी को ठंडी काटती है, बात तो सही।
3: हाँ। फिर आप दोनों जल्दी से आ जाओ, आप दोनों का इंतजार है।
0: बिल्कुल, और आपने यहाँ फोन डिस्कनेक्ट किया और हम वहाँ तुरंत पहुँचे, पलक झपकते, जैसे आपकी पकौड़ी बनेगी वैसे हम तुरंत सामने,
1: तुरंत सामने
3: तो खत्म होने के बाद मैम।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम लोग प्रकट हो जाएंगे,
3: क्योंकि बाकी लोग भी नाराज ना हो, उनसे बात भी हो जाए, उनके सवाल भी हो जाए, उनका इलाज भी हो जाए, फिर उसके बाद आप दोनों आ जाना।
0: बिल्कुल सही आपने कहा, आपकी भावनाओं को मैं समझती हूँ।
3: ओके मैम फिर बाय,
0: थैंक यू सो मच अनु। तो अनु की बातों में तो काफी दम था, और 1 मिनट में पकौड़ी खाने के लिए हम लोग को भी ये जो कहते हैं ना कि जो चैलेंज है,
1: चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा।
0: और जुगल जी हमारे साथ हैं, इम्तियाज जी हमारे साथ हैं। इम्तियाज जी कहते हैं, जो पति काला हो तो उसको गोरी पत्नियां क्यों मिलती हैं? अच्छा। बहुत जेन्युइन सवाल।
1: अच्छा
0: अक्सर गोरे पतियों को नहीं क्या है काले पतियों को गोरी पत्नी
1: गोरी पत्नी मिल जाती है।
0: हाउ दिस इज पॉसिबल?
1: नहीं मतलब ये तो अच्छी बात है, मतलब अच्छा
0: आपकी जनरेशन गोरी हो जाएगी है? आपकी जनरेशन
1: गोरी हो जाएगी
0: हाँ। क्या बात है, ये बात किसी तरह के किसी संदेह की नहीं है, ये बात अच्छी है,
1: अच्छी
0: इस पे मुस्कुराइए, ऐसे संदेह जताएंगे तो आने वाले समय में काले पतियों को काली पत्नियां मिल जाएंगी
1: जी।
0: सर जी, शादी के 2 साल बाद पत्नियां एक सवाल क्यों पूछती हैं, मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना, ऐसा बोलती हैं।
1: अच्छा भाई, इन्हीं से बोला होगा।
0: क्या बात है, आपकी पत्नी बड़ी दलेर अच्छी बात है, मतलब सपोर्टिव है,
1: सपोर्ट बहुत सपोर्ट,
0: क्या सपोर्ट है,
1: क्या सपोर्ट है।
0: जुगल जी लिखते हैं, डांट खा कर आए हैं इसलिए आवाज बैठी बैठी है डॉक्टर साहब की।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: हाँ, डांट का पकौड़ा बना था क्या। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं जिसको एंजॉय कर सकते हैं हम लोग। लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब समय भी हो चुका है आप लोगों से दूरी बनाने का, दूरी मतलब कि बहुत दूर नहीं जाएंगे हम लोग, आपके पास ही रहेंगे, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए इस शाम को विदा करेंगे और अगले शनिवार तक आपकी समस्या का समाधान करने के साथ साथ डॉक्टर लव बहुत सारी मेडिसिन बनाने के राह पे निकल चुके हैं। कहते हैं ना कि इन्होंने सर पर कफन बांध लिया है कि ये किसी भी प्रेमी को उसके प्यार से जुदा नहीं होने देंगे। तो चलिए इनके प्यार, इनकी जो कसम है उसको निभाने के लिए हम लोग भी दुआएं करेंगे। डॉक्टर लव, बहुत अच्छी सोच है आपकी, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए और हम लोग को भी मतलब कुछ दवाइयाँ,
1: बिल्कुल निसंदेह,
0: तो हमारे जीवन से भी प्यार कभी कम ना हो। और इसी के साथ हम और आप लोगों से विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसे मसाला, आरजे बीना वाला, विद योर फेवरेट आरजे बीना एंड
1: डॉक्टर लव।
0: तो आप कुछ बेहतर सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं 93.6 FM जो है गोंडा शहर की धड़कन।
4: अंगना में लगवाए कुएं से पानी ना भरवाए कुएं से।

ये वक्त हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड था और हम शायद पहले ऐसे इंडियन थे जिसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परमिशन उसकी अपनी माँ ने दी थी और हमारी देखा देखी छोटे ने भी लव मैरिज कर ली।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल,
9: सारेगामा कार्बो डिजिटल ऑडियो
1: प्लेट और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
10: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
11: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
10: सच में? क्या खास है वहाँ?

इन योर शो परमाईशी विद योर आर्टिस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में? बहुत खास, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी और बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरपूर बात और जज्बात मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को मींस जिन लोगों ने अपनी सैटरडे नाइट स्पेशल की फरमाइशी की गठरी को नई खोली है, किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर को एक बार मैं होना। सो दोस्तों, मैं होना मींस आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आ चुकी है आपकी फरमाइशी की महफिल में। तो किसका है इंतजार, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए एंड गेस व्हाट, लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, नाम आपके और आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो कैसे हैं आप सब, और आज है शनिवार और शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती, मैं जागू मेरे बिन तू कैसे सो जाती जाती, हाँ जाता, हाँ जाता, व्हाटएवर इज दिस। लेकिन सैटरडे नाइट को बाय अलग ही एनर्जी होती है, भले ही हमारी संडे को छुट्टी होती हो, भले ही हमारी सैटरडे को भी छुट्टी होती हो, लेकिन जो मजा हमारी शाम शनिवार में है वो मजा किसी और दिन में होता ही नहीं दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, बबीता गोंडा से, सबलु सावंत बोरीवली मुंबई से, एक्स कुमार एमपी रीवा से, विजय पाली आदोला लोवा लखीमपुर खीरी से, लवली सिंह स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो, सुरेश कुमार जी चौक से, नहीं बजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, कमल नयन गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, मुकेश यादव गोंडा से, तीरथ प्रसाद सोनी और अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आपके अपने शो में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश मींस पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की। जग्गू दादा को मींस जुगल किशोर वर्मा जी को सुनना है एमपी से गाना तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, न तूने जाना और न मैंने जाना और न मुझे जानना है। सो हम एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा जी, स्टे ट्यून्ड।

ये बंधन अनजाना। हमने एंजॉय किया है ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर जो कि है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों हमारी प्यारी सी बबीता जी की। और बबीता जी हैं गोंडा से। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली बबीता जी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ बबीता जी जो की है गोंडा से, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही स्वीट सी बबीता जी। और उनको सुनना है फरमाइशी गीत में अपना गाना, आज तुझसे जो कहना है कहने दे और तेरा दिल मेरे पास रहने दे। जब हम किसी से ये कहना चाहते हैं ना कि तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तब कोई नहीं अपना दिल आपके पास रहने देगा। जब हम ये कहेंगे ना कि हमें आपका दिल बिल्कुल भी नहीं चाहिए या फिर हमें अपना दिल आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, तब लोग यही कहेंगे कि प्लीज रख लो ना, प्लीज दिल दे दो ना। ये दुनिया हमेशा उल्टी चलती है। इंजॉय करते हैं ये।

और मेरा दिल मेरे पास सिर्फ मेरे पास रहने दे। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी बबीता जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश तो हमारे पास में थी दोस्तों सबलू सावंत जी की मुंबई से, लेकिन उन्होंने सेम गाने की फरमाइश कर दी थी जो जग्गू दादा ने किया था। सो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबलू सावंत जी कि आप अपनी फरमाइशी गीत को फटाफट से चेंज कर दीजिए और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली वाली फरमाइश। सो हमारे पास में नेक्स्ट सॉन्ग है इट्स कुमार का एमपी रीवा से, और इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना कि मेरी वाली डिंग डेंग डिंग डेंग डिंग डेंग डिंग डेंग डिंग डेंग करती है। अरे अलार्म वॉच बना लो अगर आपकी वाली डिंग डेंग करती है, क्योंकि इससे परफेक्ट वॉच, इससे परफेक्ट अलार्म क्लॉक तो कहीं नहीं मिलेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? स्टे ट्यून्ड।

गाना हमने एंजॉय किया है हमारे माइकल मींस इट्स कुमार की फरमाइश पर जो की है एमपी रिवासी। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत जी की और उनको सुनना है सबलू सावंत जी को मुंबई से सुनना है गाना साजन मेरा उस पार है ओहो और मिलने को दिल बेकरार है। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा 90s का मेलोडियस सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ सबलू सावंत जी की फरमाइश पर थोड़ा अलग अंदाज में। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनिल वर्मा जी सैदापुर से। स्टे ट्यून्ड। और प्रबल मिश्रा गोंडा से आपका भी स्वागत है।

को दिल बेकरार है। हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना सबले सावंत जी की फरमाइश पर। और क्या आप मुंबई से घर वापसी आ रहे हैं? क्या आपसे आपकी सजनी से मिलने के लिए आप एकदम बेसब्र हैं? और क्या अपनी सजनी के लिए आपने ये वाला गाना फरमाइश किया है? मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है विजयपाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से। और विजयपाल यादव जी को ललहुआ लखीमपुर खीरी से सुनना है गाना। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। सो एंजॉय करते हैं साजन मूवी का ये वाला गाना। आहा, सुपर डुपर हिट, हाउ रोमांटिक नगमा। दिल के जज्बात को अगर गाने में सही तरीके से पिरोया गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही नगमा है। सो एंजॉय करते हैं साजन का ये परफेक्ट सॉन्ग विजयपाल जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। साजन मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है लवली सिंह की, और लवली सिंह को सुनना है गाना झूम झूम कहता है मेरा जिया। सो एंजॉय करते हैं लवली सिंह की फरमाइश पर मेरे सजना साथ निभाना मूवी का ये गाना, कविता जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में हमारे लवली सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

इसीलिए पंछी को कभी पिंजरे में रखना ही नहीं चाहिए। अगर आप पंछी को बिना पिंजरे के हमेशा आज़ाद रखेंगे और अपने पास रखेंगे ना, तो वो परिंदा कभी, वो पंछी कभी भी आसमान में नहीं उड़ के जाएगा, बल्कि आपके दिल के पिंजरे में हमेशा कैद रहेगा। इसीलिए कहते हैं कभी किसी रिश्ते को, कभी किसी चीज़ को कैद नहीं करना चाहिए, उसको फुल फ्रीडम देना चाहिए। अगर वो आपका है तो वो आपके पास जरूर रहेगा। से एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना हम तो दीवाने हुए यार और तेरे दीवाने हुए यार। से एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आवाज है अभिजीत जी की और अलका याग्निक जी की, और फरमाइश है अजय मिश्रा की मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से।

यार तेरे दीवाने हुए यार। हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा हमारे मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना तू शायर है और मैं तेरी शायरी। एंजॉय करते हैं साजन का एक बार फिर से सुपर डुपर हिट नगमा अलका याग्निक की आवाज में, लेकिन इस बार मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो एस चौरसिया आर्य नगर से और दीपांशु आर्या। स्टे ट्यून्ड। दीपांशी तिवारी वेलकम इन योर शो। स्टे ट्यून्ड।

0: तू दीवाना मैं तेरी दीवानगी। साजन मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत है आपके अपने फरमाइशी शो में। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना कमरी अलच के रे। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज में, अनुराधा जी की आवाज में मेला मूवी का ये सदाबहार नगमा हमारी चुलबुली से अनुष्का जी की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती।
1: शोरा जैसे भड़के रे दिल मेरा धड़के रे,

So, दोस्तों ये फरमाइश थी अनुष्का की श्रावस्ती से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेश कुमार जी की चौक से, और सुरेश कुमार जी को चौक से सुनना है गाना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। एंजॉय करते हैं सुपर डुपर हिट सदाबहार नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर।

0: तमन्ना है।
1: दोस्तों नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है, जानते हैं किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा की और उनको सुनना है गाना लाल दुपट्टा। इंजॉय करते हैं ये गाना और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ दोस्तों हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, ये बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं करके रखी है उनसे विनम्र अनुरोध है कि फटाफट से जाइए पेट पूजा करिए, फिर विश्राम का वक्त होगा सीधे 9 बजे और फिर हम आएंगे फरमाइशी की महफिल में और सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, सुकून सुकून सुकून बिखेरेंगे हमारी फरमाइशी की महफिल में। एंजॉय करते हैं कृष्णा वर्मा की फरमाइश और कृष्णा वर्मा है दुकरनाथ गोंडा से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: We have been able to achieve that in the first.
7: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
6: They are all designed in India now.
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह

0: स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपने आरजे सिंपल नॉट से पर आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.67 गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की। प्रबल मिश्रा को गोंडा से सुनना है गाना, करती हूँ मैं तो प्यार सिर्फ संडे को, और तुम करना मेरा इंतजार सिर्फ संडे को। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी प्यारी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.67 गोंडा शहर की।

मंडे को मुझे बड़ा काम है, पल भी ना आराम है, और मंगल बुध को मैं क्या कहूँ, मुश्किल बड़ी गुलफाम है। जुमेरात जुम्मा फिर बाजार जाऊँ, और शनिवार को घर पे देर से आऊँ। ये गाना मैंने बचपन में सुना था, और इस गाने में पूरे हफ्ते के नाम आते हैं ना दोस्तों, इसीलिए ये गाना मैंने पूरा का पूरा रटा था। लिटरली मैंने साइंस की बुक कभी नहीं रटी होगी, हिस्ट्री नहीं रटी होगी, सोशल साइंस नहीं रटी होगी, इनफैक्ट संस्कृत हिंदी आईटी भी नहीं रटी होगी, लेकिन मैंने इस गाने को बहुत ही शिद्दत से रटा था। सो हमने इंजॉय किया है ये वाला गाना प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से, और उनको सुनना है गाना ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, शायद इन्हें पता है कि तुम्हें हम बेहद पसंद करते हैं। सो एंजॉय करते हैं तमन्ना का ये गाना कुमार सानू की मधुर मधुर मधुर आवाज में, हमारे बहुत ही मधुर अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर।

लेकिन आपको पता है क्या, जिसको हम पसंद करते हैं उसको आईने भी अपने आप ही पसंद करने लगती है, क्योंकि पसंद ही हम लोग की ऐसी होती है ना। सो एंजॉय के कुमार सानू की आवाज में ये वाला गाना। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश की तरफ चलने के लिए? सो कुर्सी की पेटी को खोल लीजिएगा और चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आ जाइएगा, क्योंकि हम एंजॉय करने जा रहे हैं मुकेश यादव की फरमाइश जो की है गोंडा से, और मुकेश यादव को गोंडा से सुनना है गाना लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, और हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, जिसको भी देखूं दुनिया भुला दूं मजनू बना दूं ऐसी हूँ लैला। सो एंजॉय करते हैं रईस का ये वाला गाना हमारे मुकेश यादव की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। तो दो चार ठुमके तो लगाने बनते हैं ना दोस्तों। नाउ लेट्स वेक अप।

और हर कोई चाहे तुझसे मिलना। वैसे जो लैला होती है उससे हर कोई अकेला ही मिलना चाहता है, कड़वी बात है लेकिन सच है। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। तो फरमाइश थी मुकेश यादव की गोंडा से, अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपांशु आर्य की, और दीपांशु आर्य को सुनना है गाना जुगनी जुगनी। सो एंजॉय करते हैं दीपांशु आर्य की फरमाइश पर ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड, वंस अगेन हाई एनर्जी हाई बीट से

हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है एस चौरसिया की आर्य नगर से। इंजॉय करते हैं एस चौरसिया की फरमाइश पर। आर्य नगर से आया हुआ ये नगमा, ओ रब्बा कोई तो बताए। सो संगीत मूवी का ये गाना है अनुराधा जी और सुरेश की आवाज में। हमारे एस चौरसिया की फरमाइश पर स्टे ट्यून्ड।

किया है। संगीत का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनुराधा जी और सुरेश जी की आवाज में बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। सो दोस्तों, हमारे पास में जो अगली फरमाइश है वो है आज की आखिरी फरमाइश भी। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की गोंडा से और नागेश्वर धाकड़ की भी। चांदनी को और नागेश्वर को सुनना है गाना जद मेहंदी लग लग जावे रता कट दिया नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारे नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर और चांदनी की फरमाइश पर। लेती हूँ इसी के साथ में अलविदा। सो अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता दोस्तों। क्यों? क्योंकि कल मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बे इंतहा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, एंजॉय करेंगे, लेकिन अभी तक चैट बॉक्स में एक भी मैसेज ऐसा नहीं आया कि अरे मैम आपने तो कहा है कि मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और आप कह रहे हैं कल आप आएंगे, लेकिन कल तो संडे है, संडे मींस पंडे होता है, पंडे मींस हॉलीडे होता है, हॉलीडे मींस ये होता है कि कल आप फरमाइशी की महफिल में अनुपस्थित रहेंगी। सो दोस्तों बोलो ना, इतना भी मतलब वेरी बैड। सो एंजॉय कर लेते हैं ये वाला गाना और मुझे बहुत सारा मिस करना क्योंकि कल है संडे और मेरी कल है छुट्टी। सो बहुत सारा मिस करना, थोड़े से आंसू भी बहा लेना, कुछ गाने भी डेडिकेट कर देना। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और इसी के साथ में लेती हूँ अलविदा दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, बाय, मिलते हैं मंडे को।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में 500 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
14: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
15: मतलब?
14: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
16: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ। नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आदाब आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गन स्लीट 9.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आज तो शनिवार का दिन होता है, ये एक विशेष सेगमेंट है, गजलें हमारी, गीत आपके। तो आज गजलें हम सुनाएंगे और गीत आप सुनाएंगे। जी तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। फिलहाल आइए आपको एक गजल सुना देते हैं, और गजल के बाद फिर एक गजल हमारी, और इसके पश्चात आपके गीत। देखते हैं आज जो हमारे पास लिस्ट है उसमें से कौन हमारे जो श्रोता हैं वो बनेंगे वक्ता। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी गजल की ओर, और आपसे मिलते हैं इस म्यूजिक के, इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गाना स्लीट 9.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए। जी हाँ, आप सभी को संबोधित करते हुए, आप सभी के इस्तकबाल में, आप सभी के अभिनंदन में, वंदन में, नमन में प्रस्तुत है ये प्यारी सी गजल। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रोताओं के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं और रेडियो गाना स्लीट 9.6 एफएम।

0: गए जी हाँ, और फोन आ चुका है किसी का, भाई देखते हैं क्या बात है, प्रश्न करते ही उत्तर आ चुका है। हेलो हेलो हेलो हेलो कॉल स्वतः डिस्कनेक्ट हो गई भाई, एक बार पुनः मिला लीजिए। और जी बिल्कुल दोबारा भी फोन आ चुका है।
1: नमस्कार सर।
0: अरे नमस्कार, अहो गोरखपुर से आवाज है हमको लगता है ये।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी हाँ दादा चरण स्पर्श।
1: अरे बहुत बहुत आप ऊपर जाए, बहुत तरक्की करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको दादा। तो मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल एकदम पब्लिक बैठता है आपके लिए सर।
0: नहीं नहीं मतलब हम गम नहीं देते किसी को।
1: अरे बाबा मैं गम की बात नहीं किया है
0: जी दादा,
1: मैं पहले सेंटेंस है पहले का
0: जी,
1: मैं उसके लिए बोला कि दर्द का पता नहीं था, लेकिन मुझे आप क्यों मिल गए, दर्द के लिए नहीं एहसास दिलाने के लिए।
0: ओहो ये बात है, मतलब हमने आपको दर्द का एहसास दिलाया।
1: नहीं एहसास नहीं दिलाया
0: जी,
1: हकीकत से रूबरू कराया।
0: हकीकत से रूबरू कराया, क्या बात।
1: तो अगर कहिए तो मैं सुनाऊं।
0: जी जी
1: बिल्कुल करूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हम।
1: हाँ सर
0: जी।
1: पूछे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, यो है अपने अपने सपने में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, यो है अपने अपने सपने में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम, चल जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता था, मुझे आप किस लिए मिल गए। नाम चांद हो किस शान

0: कैसे शाम का नचराग हूँ, कैसे बाम का, कैसे बाम का, मैं तो रास्ते कहूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, अकेले जो है मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। धन्यवाद सर।
1: क्या बात है दादा, आपने इस गीत को गाया नहीं है, इस गीत को निभाया है।
0: बहुत सर, कोशिश किया हूँ।
1: बहुत शानदार है, कोशिश तो आपकी लाजवाब रहती है,
0: प्रयास रहता है सर।
1: जी जी बिल्कुल, और आपका प्रयास रंग लाता है, वो दिखाई पड़ता है।
0: थैंक यू सर। लेकिन जो रफी साहब है वहाँ से मैं कहीं भी मतलब कुछ भी नंबर नहीं उनसे पा सकता हूँ।
1: अरे वो खैर, वो तो कायनाती गले के मालिक।
0: जी जी जी
1: जी। अच्छा दादा प्रणाम,
0: खुश रहिए सर, शुभरात्रि।
1: जी अभी शुभरात्रि का, शुभरात्रि 10:30 बजे होती है हमारी।
0: मैं सॉरी गलती कर दिया।
1: अरे नहीं नहीं, ये भाई ये इस कार्यक्रम में गुड नाइट बोलने का हक हमने ले रखा है। नहीं दादा वो मैं हंसी कर रहा हूँ आपसे।
0: अरे कोई बात नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ।
1: ठीक है दादा, चलो स्पर्श।
0: अरे खुश रहिए सर, बहुत बहुत आगे तरक्की कीजिए, बहुत आगे जाइए।
1: जी धन्यवाद।
0: ओके
1: जी। हाँ भाई, हमारे साथ उपस्थित हैं दीपांशी तिवारी जी। गुड इवनिंग मनु सर जी। जी हाँ भाई, शुभ संध्या आपको भी दीपांशी जी। कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। और उसके पश्चात इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ हैं भाई, शुभ संध्या आदाब करते हैं आपको भी। कायनात जी हैं, नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार आपको भी। और नीना जी हैं, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार आपको भी जी। तो एक गज़ल हुई और फिर एक गीत, और फिर एक गज़ल सुनाएंगे आपको, फिर लौटेंगे गीत के लिए। तो जो गीत हम सुनेंगे आपसे वो गीत रहेगा

सम लाजवाब हो, चौदवी का चांद हो। जी हाँ, नीना जी अपने शिष्या को बता दीजिएगा कि गीत की ये फरमाइश है। उम्मीद करेंगे नीना जी का संदेश पहुंच जाएगा नेहा जी तक। और चलिए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल, और गजल के बाद लौटते हैं आपके गीत की ओर। प्रश्न हमने आपकी सभा में रख दिया है, उत्तर आपका।

जी हाँ, पंकज उदास की बहुत ही प्यारी सी आवाज में आपने सुना, एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। साहित्यकार का अपने नजरिया होता है और वो अपने नजरिए से चीजों को देखता है, उन्हें परिभाषित करता है या उनके बारे में अपनी कुछ राय बनाता है। और कहा जाता है संस्कृत में कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, इस दुनिया में जितने लोग हैं उतने प्रकार की उनकी सोच है। और आवश्यक नहीं है कि एक इंसान की सोच दूसरे इंसान की सोच से मिल जाए, और ये भी आवश्यक नहीं है कि ना मिले। फिलहाल भाई अब चलते हैं,

0: जी हाँ, तो प्रश्न आपके सामने यह है, गजलें हमारी बज रही हैं और गीत आपके। मैं चला जाऊंगा। और जी हाँ, हमारे पास फोन आ चुका है, देखते हैं कौन है मेरे साथ भाई। हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: अरे नमस्कार सुरेश कुमार जी, दर्श कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है सर।
0: अच्छा, तो आज आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलो। क्या क्या गीत है?

मोहब्बत के सुनायो तो चलो मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो सुबह लो तो चलो आखिर तेरी दुनिया से मैं करूं

0: आग जला जाऊंगा और गए वक्त भी मायूस नहीं आऊंगा, फिर न आने की कसम आज मैं खा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दुआ सुबह लूं तो चलूं आखिर। आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, मेरी चाहत तेरी उल्फत से तुझे बैर न था।
1: क्या बात है,
0: मैं हूँ अब गैर, यकीन दिल को दिला दूँ तो चलूँ, मैं चला जाऊंगा, तो सुबह लूँ तो चलूँ आखिरी।
1: वास्तव में आपका नाम दर्द कुमार रखकर हमने बहुत सही किया। क्या दर्द है आपकी गीत में?
0: कोई नहीं है दोष,
1: मैं चला जाऊंगा दोष को बाहर नहीं चलूं। क्या कितनी खूबसूरती के साथ निभाया आपने इस गीत को।
0: चलो छोटा सा और है जो
1: जी
0: मौका है तो सुना दे।
1: हाँ हाँ सुना दीजिए सुना दीजिए।
0: लाल रंग
1: आए हाय
0: कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम

रंग कब मुझे छोड़ेगा, इनकी कसम डाल दी पीऊंगा किस तरह, ये न सोचा यार मैं जीऊंगा किस तरह, इनकी कसम डाल दी पीऊंगा किस तरह, ये न सोचा यार मैं जीऊंगा किस तरह, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम

0: कब मुझे छोड़गा, चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, चला जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा ये शहर, न तो यहाँ पीने को मिले अमृत न मिले जहर, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा।
1: क्या बात है भाई, हमारी तरफ से शानदार क्लैपिंग आपके लिए और अनूप मिश्रा जी, क्या बात है। सो चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी। और लिखा है कि बहुत खूब सुरेश जी, दर्द की इम्तिहा कर दी आपने आज, वाह क्या बात है।
2: थैंक यू अनूप भाई,
1: बहुत बहुत प्यारा,
2: बहुत बहुत थैंक
1: यू, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ आप देखते हैं भाई कोई दूसरे श्रोता है जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और शैलेंद्र कुमार जी के जुड़ने से पहले उनका फोन कट गया। जी हाँ सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। शुभ संध्या सर जी, जी आपको भी शुभ संध्या। और जी तो भाई हम अनूप जी को बहुत दिन हो गया और सुना नहीं, अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। और हेलो हेलो
3: जी, नमस्कार सर
1: जी, नमस्कार
3: जी, मैं शैलेंद्र कुमार आरुष बात कर रहा हूँ।
1: शैलेंद्र कुमार जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं काशी से बात कर रहा हूँ, बनारस से।
1: बनारस से बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम आपको पहली बार सुन रहे हैं।
3: जी आपका रेगुलर श्रोता हूँ मैं।
1: अच्छा,
3: और आपकी आवाज रोज मेरे कानों में जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये प्रोग्राम लेके आते हैं, हम रेगुलर सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
1: अरे वाह, नियमित रूप से मतलब धन्य है, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, इसके लिए भाई हम आपके आभारी हैं।
3: जी सर, और बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं क्योंकि आजकल तो वेस्टर्न म्यूजिक आ गया है, तो आप देखिए कि किस तरह से म्यूजिक का जो असली रस है वो खत्म हो गया है।
1: जी हाँ, और मैं प्रयत्न यही करता हूँ कि जो हमारी तरफ से गीत बजे वो मन को छूने वाले हों। लोग पूछते हैं कि पुराने गीत और नए गीत में क्या अंतर है, तो मैं एक ही उत्तर देता हूँ कि नए गीतों को सुनकर हमारा तन नाचता है और
3: जी, जी, जी,
1: पुराने गीतों को सुनकर हमारा मन नाचता है।
3: क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत खूब।
1: हाँ तो हम ये सोचते हैं कि गीत वो बजे जो मन को नचा दे।
3: आज आपसे बात हो रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्योंकि ऐसा चेन चल रहा है, ऐसा श्रृंखला ऐसा चल रहा है कि लोग आ रहे हैं, श्रोता और भी जुड़ रहे हैं और अपना अपना कुछ कुछ सुना रहे हैं, तो मैं भी अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ पेश करना चाहूंगा।
1: अरे जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य कि आप हमको बनारस से सुनते हैं, और कुछ भी नहीं हूँ मैं आपकी विद्वता के आगे, और आप सुनते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल हम आपसे सुनना चाहेंगे,
3: तो मैं शुरू करता हूँ सर, इजाजत दीजिए।
1: जी जी बिल्कुल, अरे हम आपसे प्रार्थना करेंगे।
3: चले आओ चले आओ चले आओ अकेले, चले आओ जहाँ हो अकेले है, चले आओ जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले है, चले आओ जहाँ हो तुम्हें
0: करते हैं।

अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दें तुमको कहाँ हो, अकेले हैं ये मौसम ये नजारे ये चांद और ये सितारे, ये मौसम ये नजारे ये चांद और ये सितारे।

0: अकेले हैं चले आओ जाओ कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो अकेले हैं चले आओ जहाँ हो।
1: अरे अरे क्या क्या कितने ठहराव के साथ वो लगता है डिट्टो आपने वो गाना उतार दिया रफी जी का।
0: थैंक यू सर।
1: नहीं नहीं मतलब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो अभी तक आपने इस कार्यक्रम में आप शामिल क्यों नहीं हुए आज पहली बार?
0: नहीं सर, मैं कोशिश करता था लेकिन मेरा कॉल ही नहीं लगता था। आज देखिए मेरा नसीब क्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा कॉल लग गया आपसे, मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, अपने विचार रख पा रहा हूँ आपके सामने, मुझे दो लाइन गाने का मौका मिला, आपसे बात भी हुई।
1: नहीं नहीं मतलब बहुत प्यारा गाया आपने, मतलब जिस ठहराव के साथ ये गीत है उस ठहराव के साथ गाना कठिन काम है, लेकिन आपने बहुत अच्छा मतलब गाया नहीं है बल्कि निभाया है।
0: शुक्रिया सर, धन्यवाद।
1: और उम्मीद करेंगे कि बुधवार को भी हम आपको सुने।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल। किस टाइम, क्या टाइमिंग क्या रहता है सर?
1: बहारे गजल की टाइमिंग एक ही है सर।
0: अच्छा, ओके ओके।
1: 9:30 से लेकर 10:30 सिर्फ शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिन ईश्वर ने चाहा तो हम यही मिलते हैं।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सुनेंगे सर, मैं कॉल ट्राई करूंगा कि मेरा कॉल लगे।
1: जी बिल्कुल, अगर आप ऐसे कभी व्यस्त वर्ग फोन बताता है तो 3-4 बार अगर आप मिला लीजिए तो जैसे ही किसी का फोन लग जाएगा तो आपका फोन स्वतः उठ जाएगा।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: तो हम चाहेंगे कि आपको सुने।
0: जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे सर।
1: और सविता सुनेंगे, सविता जी ने लिखा है भाई वाह क्या गाया आपने।
0: थैंक यू
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: सभी श्रोताओं जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, पूर्णिया एफएम के जितने भी श्रोता हैं, सभी को थैंक यू सो मच। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही बाहर गजल सुनते रहें।
1: जी बाहर गजल सुनते रहें, जी क्या बात है। अच्छा प्रणाम। हेलो
0: जी सर।
1: अच्छा प्रणाम आपको।
0: जी जी जी प्रणाम सर प्रणाम
1: जी, आप आशीर्वाद दीजिए। जी हाँ, क्या मतलब क्या वास्तव में क्या गीत गा दिया। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको कहाँ हो। जिंदगी में कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर इंसान अपने हमदर्द को, अपने हमराज को, अपने साथी को, अपने हमसफर को बुलाना चाहता है कि आप आ जाइए, आपकी प्रतीक्षा है। और कहा जाता है कि मतलब नज़रिए का फ़र्क होता है। आप किसी गणित के विद्यार्थी से पूछते हैं कि 1 और 1 कितना होता है तो वो कहेगा 1 और 1 2 होते हैं। अगर आप किसी राजनीतिक व्यक्ति से पूछिए कि 1 और 1 कितना होता है तो वो कहेंगे कि 1 और 1 11 होते हैं। अगर आप किसी प्रेमी से पूछेंगे कि 1 और 1 कितना होता है तो वो कहेगा 1 और 1 1 होते हैं। और अगर आप किसी सन्यासी से पूछते हैं, संत से पूछते हैं कि 1 और 1 कितना होता है तो वो कहेंगे कि 0 होता है। तो बात केवल 1 और 1 की है, लेकिन हर 1 और 1 को देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण, परसेप्शन अलग अलग है और यही हमको अलग करता है दूसरों से। जी हाँ अनूप मिश्रा जी भाई, आपकी आवाज़ बहुत दिन हो गई हमने सुनी नहीं। अब मैं जानता हूँ कि आप व्यस्त ज़्यादा हैं इस समय, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज शनिवार की इस महफिल में, दिल की महफिल सजी है चले आइए, तो बिल्कुल हम चाहेंगे और हमको लगता है कि आप आ जाएंगे। ये फ़ोन स्वतः कैसे डिस्कनेक्ट हो गया भाई, आप जो भी हैं अगर आप मिला रहे हैं तो एक बार पुनः मिला लीजिए। और ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना, ये भी हमारी इच्छा है सुनने की। यहाँ फोन जो है वो स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया। आपसे अनुरोध है कि एक बार पुनः मिला लें आप, और हम प्रतीक्षा में हैं। तो अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। तो कभी कभी आपके इस कार्यक्रम में बाहर गल में आकर लगता है कि मैं ही नहीं हूँ, बल्कि आप सभी का साथ है, आप सभी का स्नेह है, विश्वास है, प्रेम है, जो इसको सुंदर बनाता है, खूबसूरत बनाता है। जी हाँ, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
2: शुभ संध्या मनु जी।
1: अरे भाई साहब, मतलब प्रणाम आपको, और व्यस्तताएं अच्छी हैं, लेकिन
2: ऐसी भी क्या मसरूफियत की आप अपनों को भूल जाएं।
1: हाँ वही, मतलब यही तो हम भी कह रहे हैं कि ऐसी भी क्या मसरूफियत की आप रेडियो का नस्ल 89.6 FM को भूल जाएं, जिसके सभी सबसे अच्छे श्रोताओं में से आप एक श्रोता है।
2: भूलता कोई किसी को नहीं है, बस थोड़ा सा समय का अभाव, व्यस्तता और वर्कलोड।
1: लेकिन 10 मिनट निकल
2: गए। फिर भी आज मन नहीं माना, सुरेश जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कर आज आपने फोन न किया तो मैं फोन करना बंद कर दूंगा।
1: अच्छा, ये बात है, क्या बात है।
2: तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आज एक गीत मैं आपको सुनाऊंगा गा के
1: जी,
2: और अगर वो सुन रहे हैं तो बिल्कुल सुने।
1: जी बिल्कुल
2: जी। सर सुनो करूं?
1: जी जी निसंदेह।
2: हो लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, लेके हाथों में तीर कमाए। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छांव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छांव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानू के नाम नहीं जानू, कैसे पहचानू के नाम नहीं जानू, जिसे ढूंढे मेरे अरमाए। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक महजबी डोलती है दिल के पास कहीं, कभी कभी वो एक महजबी डोलती है दिल के पास कहीं। है जो वही बातें तो होंगी मुलाकातें, है जो वही बातें तो होंगी मुलाकातें, कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है,
3: आँखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, वाह, जोरदार तालियां आपके लिए। और वास्तव में ये गीत को मैंने पहली बार सुना और बहुत अच्छा लगा।
3: सर ये गाना उसका है, फिर वही दिल लाया हूँ मूवी का।
1: फिर वही दिल लाया हूँ, क्या बात है। और
3: जॉय मुखर्जी साहब हैं इसमें, और गाने इस मूवी के लगभग सारे गीत गाने लायक हैं, सारे गाने अच्छे हैं।
1: हाँ, फिर वही दिल लाया हूँ, और इसको गाया किसने है?
3: मोहम्मद रफी साहब।
1: हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह। लेकिन ये बात कहाँ,
3: लेकिन वो बात कहाँ।
1: बहुत अच्छा लगा हमको।
3: और सर ठीक है आप?
1: जी, आपका आशीर्वाद।
3: ज्ञानस्थली परिवार ठीक है मेरा?
1: जी, आपका ज्ञानस्थली परिवार स्वस्थ है,
3: स्वस्थ व्यस्त मस्त ऑलवेज रहना चाहिए
1: जी।
3: बाकी सर कहें तो चार लाइनें और गुनगुना दूं?
1: जी बिल्कुल।
3: सर ये खिलौना मूवी का टाइटल ट्रैक है, बीच से उठाऊंगा।
1: हाँ, क्या बात है।
3: खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं, मजबूर हूँ लेकिन के मैं चल भी नहीं सकता हूँ, और तुम दौड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे तोड़ जाते हो।
1: थैंक यू सर। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत शानदार। प्रवल मिश्रा ने लिखा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, प्रवल मिश्रा जी भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या आपको भी, और बहुत सारे स्टार्स आपको मिल चुके हैं भाई।
3: चलिए सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोशिश रहेगी कि अब जो है गैप ना हो।
1: जी, गैप ना हो, बिल्कुल
3: जी।
1: अच्छा, प्रणाम।
3: थैंक यू सर, प्रणाम सर।
1: जी हाँ, क्या बात है भाई, प्रवल मिश्रा जी, शुभ संध्या आपको भी। और क्या बात है, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व, मतलब हमारे यहाँ गोंडा में डाक विभाग के सबसे बड़े अधिकारी श्री अशोक त्रिपाठी जी, और यहाँ से प्रयागराज हैं इस समय, लेकिन फिर भी हमारे रेडियो से जुड़े हुए हैं, बाहर गज़ल से जुड़े हुए हैं। ये आपको जब देखता हूँ तो व्यक्तित्व आपका, मतलब आपसे हमें ज्ञान मिलता है, कदमों में आपके जहान मिलता है। हमने ढूंढा पूरी दुनिया में, बड़ी मुश्किल से आपसा इंसान मिलता है। जी हाँ, श्री अशोक त्रिपाठी जी इस समय प्रयागराज में हैं, और अच्छा ये लग रहा है कि अभी भी बहारे गज़ल में जुड़े हुए हैं। यहाँ थे तब भी और वहाँ गए तब भी, यही बड़े आदमी का बड़प्पन होता है। उन्होंने लिखा है कि आपके साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं, और यही तो योग है। ये सिर्फ 21 जून को नहीं होता है, बल्कि हमेशा होता है। आपके साथ दर्द कुमार जी ने बहुत दिल से गाया। क्या बात है भाई, दर्द कुमार जी की तारीफ है, लेकिन ये बात कहाँ। वेरी नाइस जी, हाँ बिल्कुल। तो प्रवल मिश्रा जी हमारे साथ हैं भाई। हाँ, और आज हमने बनारस से सुना कि हमारे साथ शैलेंद्र जी भी हैं, जो हमको सुन रहे हैं लगातार, और घड़ी की सुइयाँ बता रही हैं कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल रविवार को आपसे मिलेंगे ठीक 1 बजे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

रोज की तरह सोना मुठी बाथरूम गई, नहा धोकर पुराना सा सलवार सूट डाला, किचन में गई तो माँ भाभीन होकर खाना बना रही थी। माँ मैं पोछा लगा देती हूँ, उसने कहा तो माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कोई जवाब नहीं, हमेशा की तरह, ये माँ की बीमारी तो बढ़ती जा रही है। सोनम बड़बड़ाई, दरअसल उसकी माँ अनीता को अल्जाइमर की बीमारी थी, जिस वजह से वो अक्सर भूल जाती थी कि उसकी कोई बेटी भी है। पहले ऐसा नहीं था, उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसके पिता की असमय मृत्यु होने पर वो बहुत दुखी और बीमार रहने लगी। तब उसके रिश्तेदारों ने उसे समझा बुझाकर दूसरी शादी कर दी, एक प्रमोद नाम के ट्रक ड्राइवर के साथ, जिसकी पत्नी मर चुकी थी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, फिर प्रमोद ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वो एक नंबर का शराबी था और 12 साल की मासूम सोनम को जरा भी पसंद नहीं करता था। इतनी छोटी सी एज में घर के लगभग सारे काम उसके जिम्मे कर दिए थे, क्योंकि प्रमोद को उसकी माँ की बीमारी का बहाना था। सुबह उठकर सारे घर में झाड़ू पोछा और साफ सफाई में लग जाती थी। अगर माँ की तबीयत ठीक होती तो वो खाना बना देती, वरना सोनम को ही बनाना पड़ता। प्रमोद ने माँ की बीमारी का हवाला देकर उसका स्कूल छुड़वा दिया था। उसकी एक दोस्त भी थी स्वाति, जो उसे समझती थी, लेकिन वो भी उससे मिल नहीं पाती थी क्योंकि उसका घर विपरीत दिशा में था। रोज सुबह उठकर घर का काम करना यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। अचानक सोनम उठ बैठी, लाइट जलाकर देखा तो 12 बज रहे थे। हर रात इसी वक्त उसे पेट में बहुत तेज दर्द उठता था, जो कुछ ही वक्त बाद अपने आप ठीक हो जाता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये दर्द क्यों होता है। कई बार माँ को बताया पर वो कुछ कहती नहीं, बस शून्य में ताकती रहती और कई बार तो उसका नाम बड़बड़ाती रहती। सोनम के कमरे में एक खिड़की थी, जिसको खोलने पर पड़ोस के बंगले का अहाता और गार्डन साफ दिखता था। सोनम बड़ी हसरत से खिड़की के बाहर देखती, शायद कोई उस घर से दिख जाए, कोई तो हो, पर वो घर बंद पड़ा था कई दिनों से। लेकिन आज उसने बाहर झांका तो कुछ हलचल दिखाई दी उस घर में। सोनम खुश होकर देखने लगी। उसने देखा एक औरत और एक लड़का लगभग उसकी उम्र का गार्डन में साफ सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते उस औरत की नजर सोनम की खिड़की पर पड़ी तो सोनम ने हाथ हिलाया, लेकिन उस औरत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये देख सोनम को बड़ी कोफ्त हुई, कैसी पड़ोसी है ये, खड़ूस कहेगी। सोनम खिड़की से हट गई और अपने बाकी के कामों में लग गई। अब उसका रोज का काम बन गया खिड़की से बाहर माँ बेटे को देखकर हाथ हिलाना। उसे हैरानी होती थी कि ये कैसे लोग हैं, बात तक नहीं करना चाहते, क्या वजह हो सकती है। उसके मन की इच्छा एक सुबह पूरी हुई, जब वो कूड़ा फेंकने बाहर निकली तो उसे वो औरत दिख गई। नमस्ते आंटी, क्या आप नए हैं यहाँ पर, उसने एकदम पूछ लिया। उस औरत ने उसकी तरफ देखा और मुड़कर चल दी। अरे आप रुकिए तो सही, मेरा नाम सोनम है, मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। लेकिन वो औरत नहीं रुकी और चली गई। सोनम रुहासी हो गई, कोई नहीं इस दुनिया में जो मुझसे बात करना चाहता है, ना माँ, ना शराबी बाप, ना ही कोई और, मुझे पैदा ही क्यों किया भगवान। कूड़ा फेंक कर सोनम घर में वापस आ गई तो प्रमोद को देखकर सहम गई। ओ आज ये घर पर है, काम करवा करवा के हालत खराब कर देगा। सोनम सिर झुकाकर वहां से अपने कमरे में चली गई। प्रमोद ने कोई आवाज नहीं दी तो वो खुश होकर अंदर चली गई। अंदर जाकर बड़ी देर तक सोनम सिसकती रही, फिर जब मन हल्का हुआ तो सोचने लगी, प्रमोद घर पर है और अभी तक वो चीखा नहीं है, ना ही काम के लिए बुलाया। अजीब बात थी, क्योंकि प्रमोद घर पर हो तो उसे बैठने का कोई मौका नहीं देता था। खैर शायद भूल गया होगा कि मैं भी घर पर हूँ। अब उसे भूख लग गई थी, किचन गई तो देखा माँ और प्रमोद खाना खा रहे थे। सोनम का दिल कचोट गया, मेरे बिना ही माँ खाने लगी, शायद भूल गई होंगी आज मुझे भी। उसने बेमन से प्लेट लिया और अपने खाने को डाल लिया उसमें। आज तो उसके मनपसंद के राजमा चावल बने थे, थोड़ा और ले लूं, ये सोचकर राजमा लेने लगी तो करछी गिर गई। वो डर के मारे सुन हो गई, प्रमोद के चिल्लाने की आवाज आई, मैं जाकर देखता हूँ। सोनम जल्दी थाली लेकर अपने किचन से निकल गई और छिप कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। प्रमोद किचन में आया और करछी उठाकर रख दी, साथ ही कुछ बड़बड़ाया। सोनम हैरान परेशान अपने कमरे में चली गई और खाना खाने बैठ गए। लगता है प्रमोद सुधर गया, वो अब मुझे परेशान नहीं करेगा। खाना खाकर थाली वहीं रख दी, अभी नहीं बाद में जाऊंगी, ये सोचकर बाथरूम जाकर कपड़े धोने बैठ गई। आज तो कपड़े बहुत कम हैं, जल्दी धुल जाएंगे। कपड़े धोकर निकली तो खिड़की के पास खड़े होकर प्रमोद को देखा, जो कि अपने ट्रक में जा रहा था। ये देखकर राहत महसूस की,
सामने वाले घर से लड़का अपनी बालकनी पर खड़ा था। जब सोनम ने हाथ हिलाया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये लोग कहीं भूत ऊत तो नहीं है, ये सोचकर सोनम हंस पड़ी। उसकी दिनचर्या में उनको देखना शामिल हो गया था। ऐसे ही इधर उधर घूमते दिन बीत गया और रात आ गई। सोनम किचन में गई तो खाना बना हुआ था और उसकी माँ उदास बैठी थी। माँ, क्या मैं खाना खा लूं? बड़ी भूख लगी है। माँ ने इधर उधर देखा फिर सिर हिलाकर रह गई। ये माँ भी जाने मुझे कब पहचानेगी। सोनम बिना खाए कमरे में आ गई। पढ़ाई तो छूट चुकी थी, सो होमवर्क भी नहीं था करने के लिए। उसने पुराना स्कूल बैग संभाल कर रखा हुआ था, उसे लेकर पुरानी यादें ताजा करने लगी। कुछ देर बाद उसको ठंडी लगी तो देखा खिड़की खुली है। बंद करने के लिए उठी तो सामने वाले घर में रोशनी देखकर ठिठक गई। वही औरत उसकी तरफ देख रही थी उलझनपूर्ण तरीके से। क्या प्रॉब्लम है इसको? हो, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? सोनम खिड़की से हट गई और बिस्तर पर लेट गई। आज नींद नहीं आ रही थी उसे। काफी देर करवटे बदलने के बाद वो सो गई। एक अंधेरी सुरंग जिसमें वो दौड़ रही थी किसी से बचते हुए, लेकिन सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। पीछा करने वाला काफी करीब आ गया और पास, और फिर आह! सोनम उठ बैठी। वही दर्द फिर से शुरू हो गया। वही टाइम 12 बजे। सोनम दर्द से दोहरी हो गई। पता नहीं और कितनी देर बाद उसे नींद आए, लेकिन आंख खुली तो सूरज निकल आया था। आश्चर्य, फिर से प्रमोद के चीखने की आवाज नहीं आई उसके लेट उठने पर भी। खुशी खुशी सोनम कमरे से निकली और बाथरूम फ्रेश होने के लिए चली गई। नहा धोकर निकली और माँ के कमरे में चली गई। माँ वहां नहीं थी, शायद प्रमोद डॉक्टर के पास दिखाने ले गया होगा। आज मौका मिला है, थोड़ा आस पड़ोस घूम लेती हूँ। जल्दी जल्दी बालों का पॉनीटेल बनाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। स्वाति का घर बहुत दूर है, वहां जाऊं और जल्लाद वापिस आ गया तो? नहीं, मैं बस थोड़ा घूम कर आऊंगी। ये सोचते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो लॉक था। अब तो बड़ी हो गई हूँ मैं, पहले लॉक करके जाते थे लेकिन घर का पिछला दरवाजा अंदर से खुलता था। अगर जरूरत पड़ती तो सोनम इसी दरवाजे से प्रमोद को चकमा दे देती थी। आज भी उसने वही ट्रिक अपनाई और बाहर निकल आई। ये आंटी कहाँ जा रही हैं? आज एक बार फिर से पूछ लो तो क्या बिगड़ जाएगा। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? उसने पूछ लिया और वो औरत ठिठक गई। हेलो आंटी, क्या मैं किसी भूत से बातें कर रही हूँ? उसके मुंह से निकल गया तो वो मुस्कुराई। भूत से तुम नहीं, मैं बात कर रही हूँ, उसने उसी मुस्कान से उत्तर दिया। क्या क्या मतलब इस बात का? सोनम ने घबरा कर कहा। मतलब ये कि भूरी आंखों वाली लड़की तुम मर चुकी हो। सोनम की आंखें हैरत से फटने वाली थी जब उसने ये सब सुना। मैं भूत हूं? हाँ, ये क्या मजाक है? कौन है आप? सोनम ने तेजी से पूछा। वो औरत रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम चंद्रिका है और मैं भूतों को देख सकती हूँ। तुम जिंदा नहीं हो, ये तुम्हारी आत्मा है। सोनम पेट पकड़ कर हंसने लगी। मैं भूत हूँ? मेरी मम्मी पापा भी भूत हैं? नहीं, वो जिंदा है, केवल तुम ही मृत हो। आई एम सॉरी, पर ये सच है, चंद्रिका ने गंभीरता से कहा तो सोनम को डर लगने लगा। तुम झूठ बोल रही हो, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और क्या चाहिए तुमको सबूत? बस एक बात बता दो, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कुछ दिनों से बात कर रहे हैं क्या? बात क्यों नहीं करेंगे, क्या बात हुई? मेरी माँ को भूलने की बीमारी है, कई बार उन्हें याद नहीं रहता कि उनकी कोई बेटी भी है। पापा मेरे सौतेले हैं, वो मुझसे कम बोलते हैं, उन्हें बस काम से मतलब है, भन्ना कर सोनम बोली। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो फिर सोचो, चंद्रिका सहानुभूति से बोली। सोनम को पिछले एक हफ्ते से कुछ तो अजीब लग रहा था। प्रमोद उसे आवाज नहीं लगाता था, वो सामने हो तो भी कुछ नहीं कहता ना डांटता, और माँ जैसे उसके सामने जाने पर इधर उधर देखने लगती। पहले ऐसा नहीं था, हर रात पेट में असहनीय दर्द, ये सब क्या था? मुझे नहीं पता अगर मैं भूत हूँ तो मैं चलती क्यों हूँ, उड़ती क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम मर चुकी हो, इसलिए चलती हो। ऐसा करो, जो सामने तुम्हारे खिड़की है उस तक जाओ लेकिन उड़कर। चंद्रिका ने जैसे ही कुछ सोचकर कहा, लेकिन मुझे उड़ना कहाँ आता है? सोनम ने मुंह बनाया। तुम बस सोचो कि उड़ना है और बस हो जाएगा। सोनम ने आंखें बंद की और मन में कहा, उड़ो। फिर आंखें खोली तो वो देखा वो तो वही थी। एक बार फिर उसने अपने मन में उड़ने की सोची और आश्चर्य, वो तो हवा में उड़ने लगी। उड़ते उड़ते अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंची और अंदर प्रवेश कर गई। क्या मैं मर गई हूं? सोनम रोते रोते खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। चंद्रिका अभी तक वहीं खड़ी थी।
लेकिन मुझे क्यों नहीं पता कि मैं मर गई हूं? गहन उदासी से उसने पूछा। कई बार ड्रामा इतना हो जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो मर चुका है। इसका वास्तविक कारण तो मैं भी नहीं बता सकती, पर होता है, इतना पता है। आप इतना सब कुछ कैसे जानती हो? वो लड़का आपका क्या लगता है? वो मेरा बेटा अभय है। जब ये मेरी कोख में था तो इसके पापा मुझे लेकर डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो हमें छोड़ गया। मैं घायल थी, इसके जन्म के बाद कोमा में चली गई। तब मुझे विजन्स आने लगे, बहुत सारी अतृप्त आत्माएं दिखने लगी। वो कहती थी, अभी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मौत नहीं हो सकती। इतना कहने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। सोनम भौचक्की होकर सुन रही थी। चंद्रिका फिर बोली, मुझे होश आ गया है। अपने पति की दुखद मृत्यु के गम से अभी उबर नहीं पाई थी कि जगह जगह मृत आत्माएं दिखने लगी, सब कुछ न कुछ मदद चाहती थी। मैं घबरा गई और पारिवारिक पंडित की सहायता से अभिमंत्रित धागा अपने बेटे के गले में बंधवा लिया। इससे वो आत्मा उसके आसपास नहीं भटकती थी, पर उनके होने का आभास हर वक्त होता था। मैं कारोबार की बागडोर अपने देवर को देकर यहाँ आ गई रहने, अपने बेटे के साथ में। इसे यही विद्यालय में डाल दूंगी, यहाँ का शांत वातावरण मुझे अच्छा लगा। पर जब तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे आवाजें लगा रही थी तो ऐसा लगता था कि कोई बच्ची दूर से आवाजें लगा रही हो। मैंने जब अपना धागा खोला तो तुम दिखी, भूरी आंखों वाली, उलझे बालों वाली लड़की, जिसे पता नहीं था कि वो मर चुकी है। मैंने पहले तो इग्नोर किया, मगर तुम रोज मुझे आवाजें लगाती रही। आज मैंने सोच लिया तुम्हें सच बता ही दूंगी, नहीं तो तुम यहाँ भटकती रहोगी और फिर कभी मुक्त नहीं हो पाओगी। एक मिनट, अगर मैं मर गई हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुक्त क्यों नहीं हुई? सोनम ने जल्दी से कहा। चंद्रिका ने उत्तर दिया, इसका एक ही कारण हो सकता है, तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो और तुम्हारी मृत्यु अप्राकृतिक हो। सोनम ने कुछ सोच कर उत्तर दिया, मेरी कोई खास इच्छा नहीं है, सिवाय इसके कि हर बच्चे की तरह मैं स्कूल में पढ़ना चाहती थी, जो सौतेले बाप के कारण छूट गई। ये तो स्वाभाविक है, पर इसके कारण तुम्हारी मुक्ति अभी तक नहीं हुई, ये कहना जल्दबाजी होगी। ये बताओ कि पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग हुआ हो, कोई धमकी, किसी ने कुछ कहा हो? सोनम फिर सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद नहीं आया तो उसने सिर हिला दिया। ओह, कोई बात नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, तुमसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए कुछ सोच लेना। इतना कहकर चंद्रिका चली गई और पीछे सोनम को विचारों में गुम छोड़ गई। सोनम के पास वक्त ही वक्त था, अपने कमरे में आकर पिछले दिनों की सारी घटनाओं को अपने दिमाग में दोहराने लगी। कहीं कोई क्लू मिल ही नहीं रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो सतर्क हो गई। फिर सिर पर हाथ मारते हुए बोली, था तेरे की, मैं क्यों डर रही हूँ, मुझे भला कौन देखेगा। आने वाला उसका सौतेला पिता प्रमोद था, जो इधर उधर देखते हुए अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है और कमरे में सामान उलटने पलटने लग गया। सोनम हैरान थी, मेरे कमरे में ऐसा क्या है जो ये आदमी ढूंढ रहा है? करीब 15 मिनट तक तलाशी लेने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिला तो पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। सोनम ने कुछ सोचकर अपने स्वर्गीय पापा की तस्वीर को, जो शेल्फ में रखी थी, उसको निहारा और फोटो पर उंगलियां फिराने लगी। पापा, काश आप यहां मेरे साथ होते तो शायद आज मैं जिंदा होती। अचानक फोटो से कुछ निकलकर गिर पड़ा। सोनम ने उसे उठाने की कोशिश की, उठा नहीं पाई क्योंकि उसका शरीर सूक्ष्म था। मायूस होकर सोनम अपने कमरे से बाहर निकली और चंद्रिका के घर का रुख किया। उसने देखा कि चंद्रिका अभय के साथ बैठी बातें कर रही थी। उसके दिल में हूक उठी, जमाने से माँ ने मुझसे ऐसे बात नहीं की। चंद्रिका ने उसे देख लिया, उसने बेटे से कुछ कहा और किचन में चली गई। पीछे सोनम भी उड़कर आ गई। क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चंद्रिका चिढ़कर बोली। तो सोनम ने जल्द ही सारी बातें उसे बता दी। जरूर कोई बात है, वो क्या चीज हो सकती है? तुम्हें ना किसी तरीके से उसे देखना चाहिए। पर कैसे? चंद्रिका ने कहा, मैं तो नहीं हूं, तुम्हारे घर जाऊंगी तो क्या बोलूंगी? कोई जो तुम्हारे घर आता जाता रहा हो, परिचित हो? मेरी फ्रेंड स्वाति, सोनम ने झट से नाम बता दिया। मुझे उसका नाम बता दो, मैं कोशिश करूंगी, चंद्रिका ने आश्वासन दिया। सोनम ने स्वाति का एड्रेस दिया और उसकी स्कूल टाइमिंग भी बता दी। तुम जाओ, अब मैं थोड़ी देर में स्वाति से मिलती हूँ। चंद्रिका ने उसे जाने का इशारा किया तो सोनम चली गई। चंद्रिका थोड़ी देर बाद अपने बेटे अभय को जरूरी काम बोलकर स्वाति से मिलने चल पड़ी। चाहती तो स्कूल के बाहर मिल लेती, लेकिन शक्ल नहीं देखी थी। ये महज इत्तेफाक था कि स्वाति पेपरों के चलते घर पर ही थी।
चंद्रिका ने अपना परिचय सोनम की आंटी के रूप में दिया तो स्वाति चौंक पड़ी। स्वाति सोनम की हमउम्र थी पर उसकी आंखें हल्की नीली थी। चंद्रिका उससे अकेले में बात करने का इशारा किया तो स्वाति चंद्रिका को अपना रूम दिखाने के बहाने ले आई। स्वाति के अनुसार सोनम को पढ़ने में बहुत मन था मगर माँ की बीमारी की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया था। दोनों मिल नहीं पाती थी। एक दो बार वो सोनम के घर भी गई पर प्रमोद ने उसे मिलने नहीं दिया। कुछ दिन पहले उसकी गुमशुदगी का पता चला। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि माँ की बीमारी से दुखी होकर वो घर छोड़कर कहीं आत्महत्या के इरादे से चली गई थी। चंद्रिका ने उससे कहा, सोनम घर छोड़कर कहीं नहीं गई, उसकी आत्मा भटक रही है अपनी मुक्ति के लिए। स्वाति बहुत हैरान हुई और दुखी हुई। जब चंद्रिका ने सोनम के बताए उन राजों को बताया तो उसकी आंखें फैल गई। उसने मदद करने की बात कही और सोनम के घर जाने को कहा। स्वाति ने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। चंद्रिका के बहुत कहने पर बेमन से अनुमति दे ही दी। दोनों सोनम के घर के बाहर खड़ी होकर अंदर जाने का सोच रही थी कि सोनम आ गई। उसने कहा कि प्रमोद घर पर नहीं है, सिर्फ चंद्रिका ही उसे देख सकती थी। दोनों अंदर चली गई। सोनम की माँ बहुत उदासी से बैठी हुई सोनम का नाम बड़बड़ा रही थी। स्वाति ने जब सोनम का नाम लिया तो उसके चेहरे पर पहचान का हल्का सा भाव आया। सोनम के गायब होने से बहुत दुखी थी। स्वाति ने अपनी कोई कॉपी सोनम के पास होने की बात कही तो सोनम की माँ अनीता ने उसे सोनम के कमरे में भेज दिया। सोनम हैरान थी कि उसकी माँ सामान्य लग रही थी और स्वाति को भी आसानी से पहचान लिया। काश मैं जिंदा होती तो माँ मुझे भी इस वक्त पहचान लेती, सोनम ने माँ की आंखों को पोंछते हुए सोचा। ओह, मैं तो कुछ भी नहीं छू सकती। अनीता को यूं लगा जैसे सोनम आसपास है। चंद्रिका ने उससे इधर उधर के कुछ सवाल पूछे। स्वाति उसके रूम में गई और उस वस्तु को उठाकर अपनी जेब में रख करके बाहर आ गई। चंद्रिका से इजाजत लेकर चल पड़ी। बाहर आकर स्वाति ने वो वस्तु चंद्रिका को दे दी, अपने घर चली गई। उसे अपनी सहेली की आत्मा को मुक्ति दिलानी थी और उसके माथे से भागने का कलंक भी मिटाना था। चंद्रिका ने उसका फोन नंबर लिया और जरूरत पड़ने पर मदद की बात कही, जिसे स्वाति ने मान लिया। चंद्रिका ने उस वस्तु को देखा, एक छोटे से लिफाफे में थी और कलर में ब्राउन थी। चंद्रिका नई थी इस इलाके में, किसी को अच्छी तरह से जानती नहीं थी, इसलिए सोनम की खातिर चंद्रिका दोबारा अभय को लेकर गृहनगर चली गई। उसे देख देवर बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने आने का मकसद बताया तो उसने बड़ी खुशी से उस वस्तु की जांच कराई। चंद्रिका को जिसका डर था वही निकला। हाँ, वो ड्रग्स का पैकेट था जिसे प्रमोद बड़ी बेसब्री से ढूंढ रहा था। ये जानकर चंद्रिका ने अभय को देवर के पास छोड़ा और वापस सोनम के पास आ गई। सोनम ने सब जानकर ड्रग्स के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। चंद्रिका ने उसे याद करने को कहा तो सोनम ने बड़ी कोशिश की, जाने क्यों वो कुछ याद नहीं कर पा रही थी। चंद्रिका ने उसे प्रमोद पर नजर रखने को कहा और आत्मा होने के नाते वो ये काम बखूबी कर सकती थी। सोनम बड़ी बेचारी से घर वापिस आई तो शाम हो गई थी। सोनम को रोज खाने की चिंता होती थी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो खाने का उपक्रम करती रहती और स्वाद तक का अनुभव करती रहती, लेकिन अब उसे कोई भूख नहीं महसूस हो रही थी। जब उसे अपनी सच्चाई का पता चला, अजीब विडंबना थी ये जिसमें फंसकर सोनम रह गई थी। कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनकर वो चौकन्नी होकर खिड़की से निकली तो बाहर अंधेरे कोने में प्रमोद किसी से बात कर रहा था, उसकी तरफ पीठ करके। सोनम उत्सुकतावश प्रमोद के पास पहुंची तो उस दूसरे शख्स का चेहरा दिख गया। ये तो बंटी भैया है। सोनम को हैरानी हुई, उसके पड़ोस में रहने वाला बंटी रात को उसके सौतेले पिता के पास क्या कर रहा था। बंटी कॉलेज में पढ़ता था, घर में सिर्फ माँ थी जो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पेट पालती थी। सोनम उनकी बातें सुनना चाहती थी पर बंटी चला गया। प्रमोद भी इधर उधर देखकर वापस आ गया। क्या कारण रहा होगा उन दोनों के मिलने का, सोनम सोचती रही पर कुछ याद नहीं आया। आह, सोनम डर से छटपटाने लग गई। उफ, ये कैसा दर्द है जो मरने के बाद भी हो रहा है। रोज रात इसी वक्त सोनम को पेट में दर्द होता था। पहले सोने का भ्रम होता था, अब तो पता चल गया था कि अपनी हकीकत तो नींद कैसे आती और सपने में वो चाकू लेकर पीछे करने वाला कैसे दिखता। सोनम ने सोने का बड़ा जतन किया पर असफल रही। तभी उसके दिमाग में ख्याल धमाके से फूटा, सपना और वो चाकू वाला। ये बात उसने चंद्रिका आंटी से नहीं बताई, सुबह बोलूंगी, ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली। सुबह होने पर चंद्रिका के घर जाकर उसे सपने वाली बात बताई, जिसे सुनकर चंद्रिका की आंखें चमक उठी। मुझे लगता है उस चाकू और तुम्हारे सपने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुझे भी यही लगता है, पर कैसे पता करूं, सोनम विवशता से बोली। एक रास्ता है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, चंद्रिका अर्थपूर्ण ढंग से बोली। कैसा सांप, कैसी लाठी, साफ साफ बताओ ना आंटी,
बेसब्र होकर सोनम बोली। चंद्रिका ने अपनी योजना बताई तो सोनम की आंखें चमक उठी। जैसे ही प्रमोद शाम को घर आया, उसे कमरे में एक कागज टेबल पर पड़ा हुआ मिला, जिसमें लिखा था, सोनम को सही सलामत देखना चाहते हो तो कल शाम पुराने हॉस्पिटल के पीछे वाली पहाड़ी के नीचे बने कॉटेज में आकर मिलो, पुलिस को इन्फॉर्म किया तो सोनम की लाश मिलेगी। प्रमोद ने जब ये पढ़ा तो उसकी आंखें फैल गई, वो तुरंत घर से बाहर निकल गया। सोनम जो सारा नजारा देख रही थी उसने चंद्रिका को बता दिया। दूसरे दिन का समय सोनम ने बड़ी मुश्किल से काटा। शाम हुई और प्रमोद बताई हुई जगह पर पहुंच गया। सुनसान स्थान होने के कारण लोगों की चुकी आवाजाही वहां पे ना के बराबर थी। वहां प्रमोद ने देखा, वहां सोनम की दोस्त स्वाति घबरा हुई खड़ी थी। तुमने वो खत लिखा था? प्रमोद के हलक से गुर्राहट निकली और वो स्वाति की तरफ बढ़ा। प्लीज अंकल, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सच बताती हूँ। हाँ, मैंने ही खत चुपके से आपके कमरे में रखा, इसके लिए मुझसे किसी ने कहा था। स्वाति ने घबरा कर जल्दी से कहा। किसने कहा था बताओ मुझे, किसने? प्रमोद की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सोनम ने कहा था, स्वाति ने मानो बम फोड़ दिया। प्रमोद से एक मिनट कुछ कहते ना बना, फिर चिल्लाने लगा, सोनम ने कहा था ये सब करने को? हाँ, फूक गटकते हुए स्वाति बोली। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, सच सच बताओ ये सब किसने कहा तुम्हें करने को? स्वाति ये सुनकर झुक पड़ी क्योंकि ये आवाज उसके पीछे से आई। स्वाति ने पीछे मुड़कर देखा तो बंटी खड़ा था, जिसे उसने एकाध बार देखा होगा जब वो सोनम से मिलने आती थी। कौन हो तुम? स्वाति हकला कर बोली। तुम बताओ ये झूठ कहने के लिए तुम्हें किसने उकसाया? बंटी ने झबड़े भींचते हुए कहा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला, सोनम को डर लगता है अपने पापा से, तो उसने सोचा मुझे यहाँ बुलाकर माफी मांग लेगी, अगर नहीं माने तो फिर से कहीं गुम हो जाएगी। क्या अनशन बक रही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। प्रमोद का सब्र भी जवाब दे गया, उसने स्वाति को गले से पकड़ लिया। क्योंकि सोनम को मैंने 10 दिन पहले रात को इसी चाकू से घूप कर मार दिया था, वो जिंदा कैसे हो सकती है? बंटी ने कुत्सित भाव से चाकू दिखाते हुए कहा। क्या तुमने सोनम को मार डाला? हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? स्वाति ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। उसने मुझे ड्रग्स का लेन देन करते हुए देख लिया था, एक रात को बंटी के साथ तस्कर के भेष में एक पुलिस मुखबिर के शक होने पर उसका गला रेत दिया। प्रमोद ने उसके गले पर पकड़ मजबूत करते हुए बोला, लेकिन मेरी तो वो बेटी थी ना, सौतेली ही सही, तो मैंने ये काम बंटी को सौंप दिया। बंटी ने आधी रात को उसका काम तमाम कर दिया, फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया यही घर के पीछे वाले बगीचे में। प्रमोद ने ये सब कहकर गहरी सांस ली। एक बार मुझसे ड्रग्स का पैकेट कहीं गिर गया घर में, जो आज तक नहीं मिला है, शायद उसी का काम था, बड़ा शैतानी दिमाग था उसका, मुझे जेल भिजवाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे इस दुनिया से ही भेज दिया। अब तुम्हारी बारी है, इस उम्र में ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, चलो तैयार हो जाओ अपनी दोस्त से मिलने को। प्रमोद ने बंटी को इशारा किया तो वो चाकू लेकर आगे बढ़ने लगा। स्वाति को मौत सामने दिख रही थी। अचानक वहां का सारा वातावरण बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी, धूल से सारी जगह भर गई। प्रमोद की पकड़ ढीली पड़ी तो स्वाति अपने आप को छुड़ाकर भाग गई। पकड़ो उसे, वरना हम दोनों को फांसी के फंदे पे झूलना पड़ेगा, प्रमोद आंखों को मसलते हुए बोला। बंटी की भी हालत खराब थी, समझ नहीं आ रहा था कि मौसम कैसे अचानक से खराब हो गया। दोनों ही स्वाति को ढूंढ रहे थे कि अचानक सब कुछ साफ हो गया, आंधी तूफान का नामो निशाना रहा। प्रमोद और बंटी की आंखें हैरत से फट पड़ी, सामने पुलिस फौज खड़ी थी। तुम्हें मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और अपनी बेटी सोनम की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर ने उन दोनों को गिरफ्तार करते हुए हथकड़ी पहना दी। उन दोनों को गाड़ी में बैठा दिया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर ने चंद्रिका और स्वाति का शुक्रिया अदा किया जो इस पूरे नाटक की सूत्रधार थी। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें उम्र कैद या फांसी से कम सजा नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद स्वाति ने डबडबाई आंखों से सोनम को पुकारा तो सोनम सामने आ गई। चंद्रिका ने सोनम की तरफ देखकर उसे शुक्रिया कहा। धन्यवाद आंटी, मेरी मौत का सच सामने लाने के लिए, लेकिन एक बात तो मेरी समझ में आई नहीं, मुझे रात को तेज दर्द क्यों होता था? सोनम ने पूछ लिया तो चंद्रिका गंभीर होकर बोली, वो इसलिए कि उस समय बंटी ने तुम्हें चाकू मारा था, रोज तुम उस वाक्य को जीती थी, तुम्हें दर्द भी इसीलिए होता था। धन्यवाद आंटी, जाने से पहले एक बार मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर, और हाँ माँ की फिक्र मत करना, मैंने अपने देवर से कहकर शहर में किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने को कहा है, शायद उनकी बीमारी थोड़ा कंट्रोल हो जाए। यू आर ग्रेट आंटी, सोनम उत्साह से बोली और अपनी माँ के पास पहुँच गई। उसकी माँ को लगा कि सोनम आ गई तो वो उसका नाम पुकारने लगी। सोनम अपनी माँ को देखती हुई दूसरी दुनिया के सफर पर चल दी। चंद्रिका भी मुस्कुरा कर अपने घर चल पड़ी, साथ में स्वाति भी थी। उसे लग रहा था कि आत्माएं उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगी।
मन में ही सोच रही थी कि अपना प्राइवेट आत्मा मुक्ति ऑफिस खोल लूं। खैर आइडिया बुरा नहीं है ना।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले।

0: बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: होठों पे बातें थी पर कह न सके, दिल तो धड़का था पर धड़कन सुन न सके, आंखें कहती रहीं उसकी बेवफाई की कहानी, पर हम थे कि गुम थे उसके प्यार में और सुन न सके।
2: दिल तोड़ दिया तूने, ये भी न सोचा इस दिल पर राज तेरा है, हर ख्वाब तोड़ दिया ये न सोचा ख्वाबों में बसेरा तेरा है। दर्द तो बेहिसाब दिया तूने, दर्द तो बेहिसाब दिया तूने, पर ये न सोचा तू मरहम मेरा है। हम जो जी लेंगे तेरी यादों में, हकीकत का जख्म तेरा है।
1: जी हाँ दोस्तों, शायरियाँ सुन करके तो आपको जरूर से लगा होगा कि कुछ प्यार से हटकर के आज शायरियाँ हैं। ये शायरियाँ बेवफाई की ओर जाती हैं, जब दो दिल में से एक दिल टूटता है और टूट करके बिखर जाता है और दूसरा दिल उसे समेटने के बजाय उसे ताने देता है और उससे दूर हो जाता है। आज का एपिसोड हम आपके साथ लेकर के आए हैं ऐसे ही कुछ नगमों के साथ, ऐसे ही कुछ संगीतकारों के साथ, ऐसे ही कुछ सिंगर्स के साथ में जिनकी आवाज अभी तक आपने सुनी होगी बहुत सारे मेलोडियस सॉन्ग्स को लेकर के, बहुत सारे प्यार भरे सॉन्ग्स को लेकर के, बहुत सारे चुनौतियों के सॉन्ग्स को लेकर के। लेकिन आज हम चलेंगे बेवफाई की ओर। यानी ये होता है ना कि जब हम बेवफाई के सॉन्ग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में एक बात जरूर आती है कि ये गीत गाया होगा उस सिंगर ने जब उसके दिल में कहीं ना कहीं कुछ बेवफाई आई होगी, गीत के साथ, जिंदगी के साथ, जिंदगानी के साथ, या फिर हमारे सामने वाले के साथ। हम जिन्हें भी सुनाना चाहते हैं अपने दिल की कहानी, वो सामने उन पन्नों पे आ जाती है। आज का एपिसोड हम लेकर के आए हैं यानी आपकी आरजे ख्वाई,
2: खासकर इनकी आवाज राज कपूर जी की आवाज के रूप में जानी जाती है, जो अपनी भावपूर्ण और सरल शैली के लिए जाने जाते थे। आरजे ख्वाहिश, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि ये कौन है।
1: मैं थोड़ा सा अगर गेस कर पा रही हूँ तो आज के नहीं, ये हमारे सबके दिलों पर राज करने वाले मुकेश दा की ही बात हो रही है, क्योंकि कपूर साहब की आवाज से अगर मैच कोई कर पाया होगा तो वो मुकेश दा ही है। क्यों?
2: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे ख्वाहिश, ये आपके और हमारे मुकेश दा ही हैं। और आपको पता है उनके गीत आवारा हूँ तथा कहीं दूर जब दिन ढल जाए लोगों के दिलों में आज भी बसा हुआ है। सादगी, दर्द, लोक गीतों का ये बहुत ही बेमिसाल एक मिश्रण है। आपको पता है रजनीकंधा के लिए मुकेश जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था।
1: बिल्कुल, और अगर उनके सम्मान की बात की जाए तो राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान यानी बेस्ट प्लेबैक सिंगर कई फिल्म फेयर अवार्ड से उनको नवाजा गया, और साथ ही साथ में आज भी उन्हें दर्द का बादशाह कहा जाता है। तो आइए इस दर्द के बादशाह से मिलते हैं और उनकी ही आवाज में हम सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत से नगमे।

0: जिन सिंगर्स को, जिन गायकी को अगर बचपन से ही एक गायक बनने का शौक रहा हो, तो उनका शौक महज एक इत्तेफाक नहीं रह जाता है, वो हो जाता है उनके तकदीर का एक लिखा हुआ, जांचा हुआ एक ऐसा पन्ना जिसे हम भी पढ़ रहे हैं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल आरजे गुमसुम, अभी तक तो आप समझ ही गई होंगी कि ये प्यारी सी आवाज जो कि रफी साहब जी के लिए हम बात कर रहे हैं। रफी साहब की आवाज में लचक, मिठास, गहराई तो थी ही, वे हर भाव को उतनी ही सच्चाई से निभाते थे जैसे रोमांटिक दर्द और बेवफाई, भक्ति, देशभक्ति और मस्ती भरे गीत। तो आइए हम जानते हैं कुछ आरजे गुमसुम से रफी साहब के बारे में।
1: सही कहा आपने आरजे ख्वाहिश, मोहम्मद रफी जी ऐसे थे जिनकी आवाज में गजल, भजन, कव्वाली, रोमांटिक गाने सभी शामिल थे। इन्हें शहनशाहित तरन्नुम भी कहा जाता था और उन्होंने गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देवानंद, शमी कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के लिए भी अपनी आवाज दी है।
0: बिल्कुल, जिस तरीके से रफी साहब जी की रोमांटिक, दर्द और बहुत सारी चीजों में आपने उनके सॉन्ग सुने, भक्ति, देशभक्ति, मस्ती भरेगी, ठीक वैसे ही आज गुमसुम आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको रफी साहब जी के बेवफाई वाले सॉन्ग्स। बेवफाई सॉन्ग यानी कि जब हमारा दिल टूटता है, हम किसी से परेशान होते हैं, तो हम सुनना चाहते हैं कुछ ऐसे गीतों को जिसको सुनने के बाद हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। तो ये बहुत ही प्यारा सा सिंगर जो कि हम सभी के बीच में, आज भी उनकी यादें इस तरीके से हैं जैसे कोई चीज अगर हमसे खो भी जाती है लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे जहन में होती है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस प्यारी सी आवाज से दो ऐसे

0: स्वर कोकिला। स्वर कोकिला कही जाने वाली लता जी, जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व में अपना नाम करने वाली हमारी बहुत ही प्यारी सी संगीत गुरु यानी कि लता जी। लता जी ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए एक गाना गाया जिसमें उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत रत्न मिला।
1: 36 से अधिक भाषाओं में 25,000 गीत, 7 दशकों तक लगातार गायन, नायिकाओं से लेकर मातृत्व और भक्ति तक हर उम्र की आवाज बनी हमारी लता दीदी। और आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी उनके सम्मान की बात की जा रही है, बिल्कुल भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, असंख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेडियो प्रोग्राम के लिए अगर हम कहें तो सिर्फ उनके लिए आवाज ना, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आवाज की मलिका नहीं थी, वो मलिका है हमारे दिलों की, हमारी भावनाओं की, हमारी सब चीज। यानी कि अगर हम उदास होते हैं, हम खुश होते हैं, हम कहीं पर भी अगर किसी से कुछ उम्मीद करते हैं, शायद ये सब भी गीत उनकी बहुत ही प्यारी आवाज से निकले हुए हैं। लता जी सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वे भारतीय भावनाओं की आवाज थी। उनका संगीत आज भी दिलों को सुकून देता है और आने वाली पीढ़ियों को एक नई राह दिखाता है। जहाँ तक हमने अभी तक सुने हैं उनके प्यारे से सॉन्ग्स, उनके रोमांटिक सॉन्ग्स, उनके देशभक्ति और बहुत सारी कवालियां भी, लेकिन अगर बेवफाई की बात की जाए तो लता जी ने इस पद में भी बहुत प्यारी सी आवाजें दी हैं। तो आइए लता जी की आवाज में सुनते हैं इस प्यारे से एक नगमे को जिसे बेवफाई का रूप दिया गया।

0: अपनी कपकपाती हुई आवाज के लिए जाने जाते हैं बेहतरीन सिंगर तलक महमूद। दर्द को बहुत ही बेहतरी से निखारने के लिए इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अपनी आवाज में दर्द भरे गीतों को इन्होंने बहुत ही बेहतरी से सजाया।
1: तलत महमूद को अपनी नरम दर्द भरी मखमली आवाज के लिए जाना जाता है। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला गमगीन आवाज का बादशाह भी कहा जाता है। तलत महमूद को संगीत का शौक बचपन से ही था। वे गजल गायकी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने शुरुआत में रेडियो और निजी महफिलों में भी गाना शुरू किया था। उनका पहला रिकॉर्डेड गीत था सब दिन एक समान नहीं होता, जो कि 1991 में जिन्होंने उन्हें इस गाने से अपनी पहचान दिलाई।
0: तो आइए चलते हैं, सुनते हैं तलत महमूद जी का एक दर्द भरा नगमा।

0: तो आइए सुनते हैं हमारे नए और अगले जो कि संगीतकार हैं, वो हैं महेंद्र कपूर जी। महेंद्र कपूर जी ने संगीत की औपचारिक शिक्षा ली और मुंबई में एक गायन प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें एक ऐसी पहचान मिली जो कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आकर के छा ही गए। इस प्रतियोगिता में उन्हें मोहम्मद रफी का दूसरा स्थान मिला, लेकिन उनकी आवाज उनकी प्रतिभा में संगीतकारों का ध्यान खींच लिया।
1: महेंद्र कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। उनकी गीतों में, उनकी बातों में, उनकी आवाज में दर्द बहुत ही खूबसूरती से नजर आता है, क्योंकि अपने गीतों में वो दर्द को ही निखारते हैं और संवारते भी हैं। उनके गीत जब भी हम सुनते हैं, मैं बता दूं, उन्होंने अपने जोश, अपनी हिम्मत और अपनी लगन के दम पर ये नाम और मुकाम बनाया है।
0: महेंद्र कपूर हिंदी फिल्म संगीत के उन चुनिंदा गायकों में से एक हैं, जिनकी आवाज में गंभीरता, जोश और देशभक्ति की विशेष झलक मिलती है। उनके करियर को नई दिशा दी महान संगीतकार रवि जी ने। रवि और महेंद्र कपूर की जोड़ी ने कई यादगार गीत भी गाए, खासकर बी आर चोपड़ा की फिल्मों में। उनके बहुत सारे गीतों में बेवफाई के सॉन्ग्स जैसा कि दर्द भरे गीतों का एक दौर था, जिसमें महेंद्र कपूर जी का हाथ और उनकी आवाज ने काफी हद तक अपने आप को साबित किया। तो आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज में कुछ दर्द भरे नगमे।

0: इनका पहला बड़ा ब्रेक फिल्म पायल की झनकार जो कि 1980 से मिला, लेकिन इनकी पहली पहचान और असली पहचान 1988 में फिल्म आई कयामत से कयामत के गीतों से मिली। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप जान ही गए होंगे कि मैं एक बहुत ही प्यारी सी सिंगर्स का नाम लेना चाह रही हूँ जो कि हैं अलका याग्निक जी। अलका जी ने बचपन से ही ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता में बहुत सारे गीत गाए। बाद में वे मुंबई आई और उनको फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अलका याग्निक को संगीत विरासत में मिली। उनकी माँ एक बहुत ही प्यारी सी सिंगर भी थी, लेकिन उनकी माँ ने बहुत ही कम उम्र में उन्हें शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देना उन्हें शुरू कर दिया था।
1: अलका जी को स्वर भारती पुरस्कार और 250 ट्रॉफीज और 150 गोल्डन डिस्क भी मिले हैं। साथ ही साथ में इन्हें पत्रकार संगठन की ओर से भी कई पुरस्कार दिए गए हैं। अलका जी द्वारा गाया गया गीत तू शायर है मैं तेरी शायरी, पहली बार देखा है साजन की आंखों में प्यार बहुत ही खूबसूरत गीत है। इन गीतों का जादू आज भी लोगों पर वैसे ही छाया हुआ है जैसे कि 90 के दशक में था।
0: बिल्कुल, 1990 का दशक अलका याग्निक का स्वर्णिम दौर माना जाता है। उन्होंने उस समय में लगभग सबसे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी, जैसे माधुरी दीक्षित, जूही चावला, काजोल, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर। तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी आवाज में अलका जी के लिए। मैं और क्या बताऊं, क्योंकि उनकी आवाज जैसे कि सारे गीतों को एक नई पहचान देते थे, चाहे वो एक प्यार भरा गीत हो, कोई भी एक देशभक्ति गाना हो, चाहे वो भक्ति गीत हो, लेकिन बेवफाई और दर्द भरे गाने भी उनकी डायरी में बहुत सारे जाने जाते हैं। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा सुनते हैं जो कि बेवफाई की ओर लेके जाता है।

0: मतलब ये कि जब कोई बेवफाई के दर्द में होता है तो उसे उसी की याद ज्यादा आती है जिसे वो भूलना चाहता है। भले ही उसने दिल को कितना भी तोड़ा हो पर दिल में वही है तो प्यार भी वही होता है। दिल तोड़ दिया तूने ये भी न सोचा कि इस दिल पर राज सिर्फ और सिर्फ तेरा है। तो इसी तरीके से आज के एपिसोड में हमने कई ऐसे सिंगर्स को लिया जिन्होंने अपने अपने जीवन में अपने अपने संगीत के करियर में बहुत सारे ऐसे नगमों को गाया जिन्हें हम आज भी भुला नहीं पाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरजे ख्वाहिश ने। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमने सजाया आपकी रात की इस महफिल को बेवफाई से, लेकिन कहते हैं ना कि बेवफाई भले ही दर्द देती है लेकिन इस बेवफाई का भी अपना ही मजा होता है। जब कोई प्यार में होता है तो उसे प्यार के दोनों ही पहलू बेहद पसंद आते हैं।

0: की वफा और बेवफाई दोनों।
1: बिल्कुल, तो आज की रात के सफर में हम बेवफाई के गीतों को ऐसे छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट बीबीजी के भूले बिसरे गीतों को हम फिर से याद करेंगे एक नए नगमे के साथ में, एक नए सिंगर्स के साथ में, आपकी आज ख्वाहिश और आपकी आज गुमसुम के साथ। शुभ रात्रि।

0: की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मगर मगर
1: क्या?

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।